0: Calculating route. Rerouting. Rerouting.
1: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
0: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
1: क्यों?
0: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
1: अच्छा तो सीधा वही ले चलो,
2: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
0: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
3: आर यू ऑन F1 वीजा एंड लुकिंग फॉर मॉर्गेज ऑप्शंस? या आप H1B पे हैं एंड लुकिंग ऑप्शंस विद 5% और 10% और इवन 3% डाउन? सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4

0: looking for mortgage options? Ya aap H1B pe hain and looking options with 5% or 10% or even 3% down. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
5: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
6: Breaking news! Home loan ya refinance ab aur bhi aasan. MyFamilyHomeLoan.com deta hai transparent pricing. No hidden fees, no surprises. Aur haan, sabse badi khabar, unka AI-powered platform real-time rates compare karta hai taki aapko mile better deals and faster approvals. 15,000 plus Google reviews. Hazaro families ka bharosa. Visit MyFamilyHomeLoan.com or call 469-734-3338. 469-734-3338. MyFamilyHomeLoan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289. Licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
7: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
8: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
7: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
8: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
7: सच में सब संभाल लेंगे?
8: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
9: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
10: Hello, my beautiful friends. कैसे हैं आप सभी लोग? This is Ippy the Hippie, and you guys are listening to An Evening in Dallas only on 104.9 FM Fun Asia Radio. Guys, आपका Tuesday कैसा गया? मेरा Tuesday बहुत अच्छा गया. I was super super exhausted when I was driving away here. तो उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि काश मुझे कोई अभी बेड दे दे, मैं तो यहीं पे नैप ले लूँगी. लेकिन फिर मैंने आया यहाँ पे स्टूडियो में, आते ही मुझे इतनी एनर्जी आ जाती है ना आप लोगों से, जैसे ही टाइम आता है बात करने का, आई एम लाइक ओह माय गॉश, इट इज़ टाइम टू टॉक टू माय फेवरेट पीपल हियर इन DFW एंड आउटसाइड ऑफ DFW ऑल्सो. तो वी आर गोना लिसन टू अ लॉट ऑफ अमेजिंग म्यूजिक एंड वील प्ले आवर गेम्स. गिव अवे भी है. So stay tuned.

आपने चार कदम चले नक्की नहीं आज भाई. इट सेज दैट जस्ट डूइंग योर डेली स्टेप्स इज ग्रेट इनफ टू कीप योर हार्ट फंक्शनिंग फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. जस्ट दिन के आपको उतने 10,000 भी नहीं करने की जरूरत, आप 5 करो, 6 करो, 7 करो, जितने कर सकते हो उतने करो. मेरा आज का कोटा है पता है कितना, आज का मेरे स्टेप्स हो गए 7674 स्टेप्स एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. अभी घर जाते जाते शायद मे बी 8,000 हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैं स्टूडियो में जब गाने बजता है तो मैं वॉक करती रहती हूँ. आई एम क्रेजी लाइक दैट. बट गाइज, हाउ वॉज योर ट्यूजडे टूडे? वॉज अ गुड? मेरा ट्यूजडे तो काफ़ी अच्छा था. आई एम डूइंग कैंप्स अगेन फ्रॉम 9 to 4 एंड देन आई डू प्राइवेट लेसन्स एंड देन आई कम ओवर हियर. तो भाई, हैव यू एवर प्लान्ड कि आपने घर वगैरह खरीदा है? मैंने उस दिन देखा फ्रिस्को में, या नहीं फ्रिस्को नहीं, व्हाट वाज दैट लोकेशन, प्रॉस्पर और सेलिना वगैरह में जो घर बन रहे थे, समहाउ उनकी जो प्राइसेस थे, द प्राइसेस हैव गॉन डाउन अगेन बिकॉज यू नो पीपल आर लीविंग यूएस बिकॉज ऑफ द अनसर्टनिटी ऑफ द वीज़ा सिचुएशंस एंड स्टफ. लेकिन अगर आप की सिचुएशन उतनी अनसर्टेन नहीं है एंड यू हैव द फंड्स टू बाय अ हाउस, देन यू शुड डेफिनेटली रीच आउट टू ड्रीम होम मॉर्गेज. योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक विद ड्रीम होम मॉर्गेज. तो व्हाट डू दे डू? सिंस 1998 ड्रीम होम मॉर्गेज ने हैज हेल्प्ड फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टूवर्ड्स होम ओनरशिप एंड दे हैव पर्सनलाइज मॉर्गेज सोल्यूशन एंड ए स्मूद एंड अ स्ट्रेस फ्री प्रोसेस बिकॉज मॉर्गेज इज अ लिटल ट्रिकी, यू नो आई मीन इट्स हार्ड. सो वाई डोंट यू गिव दम अ कॉल एंड मे बी दे कैन हेल्प यू आउट. दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स. देयर एक्सपीरियंस टीम इज कमिटेड टू फाइंडिंग द राइट लोन ऑप्शन टेलर्ड टू योर नीड्स, वेदर यू आर बाइंग योर फर्स्ट होम, अपग्रेडिंग और रीफाइनेंसिंग, यू नो. सो यू कैन गिव अ कॉल नो मैटर वॉट योर सिचुएशन इज. स्टार्ट योर होम ओनरशिप जर्नी विद कॉन्फिडेंस टूडे. कॉल 972-245-5626 और विजिट dreamhomemortgage.com फॉर मोर डिटेल्स. ड्रीम होम मॉर्गेज, मेकिंग ड्रीम्स इन टू रियालिटी, राइट? तो भाई, अपने सपनों का घर बनाओ. हम भी बनाएंगे कभी, आज तो नहीं कभी और. तब तक के लिए आप ये गाना सुनिए.

ऑलराइट फ्रेंड्स, हम वापस आ चुके हैं। 5 मिनट में हम दोबारा ब्रेक में जाने वाले हैं। लेकिन बाय द वे, आपको पता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर फाइनेंशियल प्लानिंग वाइल यू गाइज आर स्टिल यंग। एक चीज़ जो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखी है, या एक्चुअली टू बी फेयर पेरेंट्स से नहीं सीखी है, उनके मिस्टेक से सीखी है। माई डैड डिड नॉट प्लान हिज फाइनेंशियल फ्यूचर वेल। ओके, तो हमारे काफ़ी इंडियन पेरेंट्स जो हैं, वो बहुत लोग ये करते हैं कि वो लोग अपना फ्यूचर नहीं प्लान करते, अपना रिटायरमेंट उतने प्लान नहीं, उतने अच्छे से प्लान नहीं करते। अगर आप इंडिया में आपके पेरेंट्स हैं तो वही एक वो PF जमा करेंगे, कुछ एक दो LIC करेंगे, बस दे आर एक्सपेक्टिंग कि उसी से पूरी ज़िंदगी कट जाएगी। देन दे लैंड अप गेटिंग डिपेंडेंट ऑन देयर किड्स टू सेंड देम मनी एवरी मंथ। और जो हम एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि हम इंडियन बच्चे हैं, मतलब साउथ एशियन बच्चे हैं, हम भेजते भी हैं, लेकिन यू नो 10 साल बाद 20 साल बाद दुनिया क्या होने वाली है, यू डोंट नो। मे बी योर किड्स मे नॉट टेक केयर ऑफ यू फॉर ऑल यू नो। मे बी दे हैव देयर ओन बर्डन्स टू डील विथ। मे बी यू डोंट वॉन्ट टू बी दैट वर्जन ऑफ योर पेरेंट्स वे यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स एट एन ओल्ड एज। तो इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज एंड स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज इन सच सिचुएशंस। काम कौन आते हैं? माई टाइम एक्विटी। माई टाइम एक्विटी लेड बाय CPA सुधीर पाए हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लानिंग, या फिर रिटायरमेंट, या ग्रोइंग योर इन्वेस्टमेंट्स, माई टाइम एक्विटी ऑफर्स पर्सनलाइज सोल्यूशंस डिजाइंड अराउंड योर गोल्स। विजिट mytimeequity.com और कॉल 4697021272। आई एम टेलिंग यू, इट्स नेवर टू स्टार्ट अर्ली टू स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर रिटायरमेंट। इवन दो यू मे रिटायर एट लाइक 65 एंड यू मे ओनली बी 30, बट यू नो वट, अगर आप 30 साल तक $100, $200 करके जमा करेंगे, इट एड्स अप टू ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। अगर आपको नहीं पता कि कितना अमाउंट ऑफ मनी एड अप होता है विथ ए मॉडेस्ट इन्वेस्टमेंट रेट, then you should ask ChatGPT or Claude or whatever your choice of AI tools is. Or you can ask Sudhir Pai. He will help you. All right. Let's listen to the song and then we'll go into a break and then

0: सुनो, शादी के लिए ज्वेलरी भी देखनी है।
1: हाँ देख लेंगे।
0: तो फिर इंडिया की टिकट कब करवाए?
1: अरे तुम्हें ज्वेलरी देखनी है या रिश्तेदारों को?
2: One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels, वही timeless craftsmanship, वही unmatched elegance और वही stunning bridal collections now on Main Street in Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
4: मामू देखो क्या हो गया।
5: ओ क्या हो गया?
4: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
5: ओए जर्मन का कमाल है।
4: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
5: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623, कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
6: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
8: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
9: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
8: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
6: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL and guaranteed income annuities from highly rated carriers so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
2: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
11: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
12: इट्स लॉसन।
11: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
12: इट्स लॉसन।
11: डैडी व्हाट इज द लॉ?
13: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे, 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
14: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
15: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
14: कैसे?
15: पेज 3 ईटरी?
14: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
15: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
14: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
6: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
16: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. Make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
17: Guys, we are back. It is 7:34 on the clock. Time is literally flying by. मुझे तो लगा मैं अभी 15 मिनट पहले ही आई थी, लेकिन आधा घंटा कैसे गुजर गया जल्दी जल्दी पता भी नहीं चला. और ऐसे ही करते करते टाइम गुजर जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा. विशाल शेखर DFW में आके परफॉर्म करके चले भी गए. एग्जैक्टली. तो बिफोर दे गो अवे, go ahead and go get your tickets. They are performing on Sunday, July 12th at the Curtis Culwell Center, Garland. I don't need to tell you who Vishal Shekhar are. They've given some amazing songs in the last 20 years in Bollywood and they are absolutely amazing. I love their music. But that being said, the tickets are on sale still at kashpatelproductions.com And just for my beautiful listeners, you guys can get a 30% discount by using the code FUNASIA. Exactly. So code daliye FUNASIA and you can get a 30% discount on the tickets on July 12th, that is Sunday, for Vishal and Shekhar concert. Agar aapne nahi suna, then you must go buy your tickets and go check it out. I'm excited for it. I think I'm going to go. Okay? Tab tak ke liye, aap ye gana enjoy kariye, Vishal aur Shekhar ka.

गाइस 5 मिनट में हम ब्रेक में जाने वाले हैं, लेकिन उसमें जाने से पहले दिस मैसेज गोज आउट टू द ब्यूटिफुल नवलीन एंड नव्या कौर. दे जस्ट कॉल मी अप, देयर मॉम जस्ट कॉल मी अप सेइंग कि वो जब भी डैलस आते हैं दे लव लिसनिंग टू फनीशा रेडियो. एंड यू नो व्हाट गाइस, वी लव यू. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर लिसनर्स फ्रॉम आउट ऑफ स्टेट. आई लव दैट. वेल, दिस सॉन्ग गोज आउट टू यू. दिस इज नॉट द एग्जैक्ट रिकॉर्डेड वर्जन ऑफ द सॉन्ग दैट यू हैड रिक्वेस्टेड, बट दिस वन इज एज गुड. दिस इज स्टिल सोनू निगम, बट दिस इज लाइव फ्रॉम MTV अनप्लग्ड. So this one goes out to you, Navneet, Navleen and Navya. Have a great rest of your summer.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
5: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
3: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
5: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
3: ये क्या होता?
5: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
6: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
4: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
3: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
7: हाँ।
3: घर रिलोकेट करनी है?
7: हाँ।
3: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
7: हाँ भाई हाँ।
3: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
8: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
9: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
10: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून।
9: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
10: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपर हिट।
11: माय टाइम इक्विटी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय CPS Sudhir Pai, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट, हाई यील्ड नोट्स एंड अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। फॉर फर्दर डिटेल्स विजिट mytimeequity.com और कॉल Sudhir Pai एट 972-330-2771 और ईमेल wealth@mytimeequity.com टू हेल्प यू अचीव योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव टुडे। टॉक टू Sudhir Pai अबाउट 2025 डिजिटल asset or crypto fund.
12: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
13: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
14: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
15: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
16: Now sir, or price?
15: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
17: It's true, hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family

0: and friends, we are back. You guys are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. And this is your favorite bestie, Ippy the Hippie. And this is my show, An Evening in Dallas. एक घंटा पूरा हो चुका है, सिर्फ एक ही दो घंटे और बाकी है. एक नहीं, सिर्फ दो घंटे और बाकी है. I can't believe time इतनी जल्दी जल्दी आ रहा है, पता भी नहीं चल रहा कैसे जा रहा है. तो guys, आपको पता है कितने बजे हैं? It's 8:09. आज हमें थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि मैंने एक गाना पहले बजा दिया. लेकिन इफ यू फॉलो माई शो एंड इफ यू लिसन टू माई शो रेगुलरली, देन यू नो दैट 8 o'clock is what time? 8 o'clock is our giveaway time. क्योंकि 8 बजे हम giveaway खेलते हैं. आज का मैंने giveaway थोड़ा सा अलग से किया हुआ है. जैसे आपको पता ही है, इस पूरे हफ्ते क्या, आई थिंक पूरे महीने ही होने वाला है. एक नहीं, दो नहीं, तीन giveaway होने वाले हैं पूरे जुलाई के महीने में. कौन से तीन giveaway हैं? One is from the Fun Pizza Kitchen, Yum Yum Pizza, and the second one is from India Bazaar in Fort Worth, and the third giveaway is from Red Hot Chili Pepper. तो अगर आपको इसमें से किसी भी giveaway question का answer पता है तो जरूर मुझे call करिए and let me know at 972-235-5555. मैंने question अभी तक announce नहीं किया तो अभी मत dial करना, रुको भाई, पहले giveaway का question तो सुन लो. वैसे बड़ा आसान है आज का. तो आज हम दो musical giveaways खेलेंगे, एक copy, दोनों copycat style, और एक हमारा एक ट्रिविया क्वेश्चन होगा विच इज कॉल्ड कंप्लीट द डायलॉग. इसमें मैं टेस्ट करूंगी आपकी बॉलीवुड नॉलेज, ठीक है. तो चलो, फर्स्ट गिव अवे इज फ्रॉम फन पिज्जा किचन. तो खेले क्या है? वेल, यू नो व्हाट फन पिज्जा किचन इज. दिस इज फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को. अगर आपने उनका अचारी पनीर पिज्जा नहीं ट्राई किया या तंदूरी चिकन पिज्जा नहीं ट्राई किया, देन यू गाइज आर सीरियसली मिसिंग आउट. दे हैव दिस crazy cheesy pizzas with a desi twist where flavor meets fire. ठीक है, तो without further ado, what can you win? You can win a $10 gift card from the Fun Pizza Kitchen and which you can go redeem at the restaurant. Whether you like bold or beautifully balanced, there is a slice waiting for you at the Fun Pizza Kitchen. Yum yum yum. Make sure it is only redeemable at the Frisco location. That's one. And number two, guys, please make sure आपने पिछले एक महीने में Fun Asia की तरफ से और कोई giveaway नहीं जीता है. Okay, we have to be fair, we have to make sure that everybody gets a chance to win. क्योंकि कभी भी मैं question पूछती हूँ, मुझे तो 10-10 कॉलें आ जाती है, एक के बाद एक के बाद एक. तो we need to make sure everybody gets the chance. Okay, all right, खेले without further ado. तो आज का हमारा क्वेश्चन है, आई विल प्ले यू ए पीस ऑफ म्यूजिक एंड दिस इज नॉट ए कॉपी, डायरेक्ट कॉपी. आई मीन टेक्निकली इट इज अ डायरेक्ट कॉपी क्योंकि धुन तो पूरी कॉपी ही है, लेकिन इस धुन के ऊपर कोई गाना नहीं बना है. बट दिस धुन बिकेम लाइक द अंडरलाइनिंग थीम सॉन्ग ऑफ दिस रियली रियली रियली पॉपुलर बॉलीवुड मूवी. नाउ it's the theme song, okay, and if you are a Bollywood fan then you will figure it out in like instantly, theek hai. Aur agar aap mera show sun rahe hain pichle ek ghante mein, maine pichle 15 minute mein us movie ka ek gana bhi bajaya tha, which was actually a request. So it's very easy and it is related to the Roshan family. To music composition of the whole movie and the song is done by Rajesh Roshan. Okay, so all you have to do is tell me what is the movie that I'm talking about. Theek hai, so here we go. Tell me the movie jiska theme song ye piece of music eventually ban gaya. And we have our first caller. Hi, you're on Fun Asia Radio. Thank you for calling.
1: Hi, is it Kaho Na Pyar Hai?
0: Yes, it is Kaho Na Pyar Hai. Congratulations. Tell me your name.
1: It's Meenakshi.
0: Meenakshi, congratulations. Woo, ye aapke liye taaliyan.
1: Thank you.
0: Meenakshi, okay, great. I'm going to play a song in the background. You stay on the line. ठीक है, और तब तक मैं गाना बजाती हूँ बैकग्राउंड में, आप लाइन पे रहिए, देन आई विल टेक योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू रिडीम योर गिफ्ट कार्ड. ओके
1: श्योर.
0: ओके गाइस, तब तक के लिए आप ये गाना एंजॉय करिए.

गाइज, अभी ये गाना सुनते हुए ना, दैट वाज कबीर सिंह की मूवी का, कबीर सिंह वाज द मूवीज नेम एंड द सॉन्ग वाज कॉल्ड बेख्याली. तो मैं ना उसका वीडियो देख रही थी, एंड आई मीन बॉलीवुड में ना ऐसी बहुत सारी मूवीज बनी है जिसमें मतलब नॉट लड़के बट लड़कियां भी प्यार में इतना ज्यादा पागल हो जाते हैं दैट दे डोंट हैव ए सेंस ऑफ वॉट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट. दे लूज देम सेल्व, इतना पागल हो गए कि देवदास ही बन गए. मतलब देवदास खुद भी एक मूवी थी वैसे तो. इतना पागल हो गए कि देवदास जैसी हालत हो गई, शराब पी रहे करके. यू हैव कम लॉस्ट कंप्लीट कंट्रोल ऑफ योर सेल्फ. आई मीन येस्टरडे वी वर टॉकिंग अबाउट अवॉइडेंट अटैचमेंट एंड एंक्शियस अटैचमेंट. फ्रेंड्स, दैट इज ए कंप्लीट एग्जाम्पल ऑफ एंक्शियस अटैचमेंट, कि आपको प्यार, आई डोंट नो इफ यू आर, वेन आई लुक एट दोज सिचुएशंस और दोज काइंड ऑफ पीपल, कि यू हैव कम्प्लीटली लॉस्ट योर ओन सेंस ऑफ आइडेंटिटी जस्ट बिकॉज आपको आपका प्यार नहीं मिला. देन उसमें मुझे ये समझ, मतलब ये आई इट कम्पेल्स मी टू थिंक कि भाई आपके पास अपनी कोई सेंस ऑफ आइडेंटिटी नहीं थी, कि आप अपने आप को किसी और पर्सन के अंदर ही ढूंढते थे, कि आपका खुद का कोई पर्पस नहीं था, कि आप किसी और पर्पस, किसी और प्यार में ही अपने आप को ढूंढ रहे हो, कि जब वो प्यार चला गया यू हैव लॉस्ट कंप्लीट सेंस ऑफ वॉट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट रियालिटी. आप शराब पी रहे हो, यू हैव लॉस्ट कंप्लीट सेंस ऑफ कंट्रोल, यू डोंट नो, अब काम नहीं कर रहे हो ढंग से, खाना नहीं खा रहे हो, वगैरह वगैरह. आई नो ट्रॉमा इज वन थिंग, लेकिन दैट इज नॉट अ हेल्थी सिचुएशन टू बी इन. वी ऑल नीड आर इंडिविजुअल पर्पसेस, एंड देन यू कैन शेयर योर सेल्फ हू एवर यू आर विद अनदर पर्सन वेन यू फाइंड दैट. लेकिन अगर आपको अपने बारे में ही नहीं पता, तो आप दूसरों के साथ जब शेयर करोगे, यू आर ट्राइंग टू कंप्लीट योर सेल्फ, जो कि हमें खुद से होना चाहिए. वी शुड बी कंप्लीटिंग आर सेल्फ फ्रॉम इनसाइड इंस्टेड ऑफ गोइंग लुकिंग फॉर इट एक्सटर्नली आउटसाइड. दैट इज माई परस्पेक्टिव. ऑफकोर्स आप लोग कुछ अग्री करोगे, नहीं करोगे, एंड दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यू हैव द राइट टू योर ओपिनियन, बट दिस इज वॉट आई पर्सनली थिंक. ओके, सो लेट्स लिसन टू द सॉन्ग एंड कम बैक एंड टॉक सम मोर.

गाइस अभी हम गाना सुन रहे थे. नहीं, अभी नहीं, जो हम कंटिन्यू करेंगे इसके बाद. लेकिन बिफोर दैट, बिफोर गोइंग इन टू द सॉन्ग, वी वर टॉकिंग अबाउट प्यार, क्योंकि वो गाना आ गया एंड आई इट गॉट मी थिंकिंग अबाउट लव एंड रिलेशनशिप्स, बिकॉज दैट इज़ माई फेवरेट टॉपिक टू टॉक अबाउट. तो वहाँ पे आई लेफ्ट एन ओपन डिस्कशन कि भाई, इन माई ओपिनियन, इफ़ यू लूज़ योर सेल्फ कम्प्लीटली इन योर प्यार मोहब्बत एंड यू डोंट हैव अ सेंस ऑफ पर्पज, देन इन माई ओपिनियन दैट्स नॉट द मोस्ट हेल्थीएस्ट थिंग, बिकॉज वी शुड कम्प्लीट आर सेल्व्स विद इन बिफोर वी गो आउट सीकिंग फॉर समवन एल्स टू कम्प्लीट इट, बिकॉज आपकी खुशी आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दूसरों की नहीं है. दैट वॉज बेसिकली वेयर आई वॉज कमिंग फ्रॉम. आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम आदि एंड आदि सेड कि भाई ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ही डिसअग्रीज एंड आई रिस्पेक्ट दैट टोटली आदि. सो ही सेज दैट प्यार बहुत टाइप के होते हैं, जो आपके लिए पेरेंट्स वाला प्यार होता है वो तो भाई दैट इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम इनसाइड, वो तो पेरेंट्स का प्यार अलग होता है, उसमें थोड़ा सा पागलपन भी होता है एंड आई टोटली गेट इट. पेरेंट्स का प्यार आई एम नॉट इवन इंक्लूडिंग इन दिस डिस्कशन. दिस इज़ द प्यार बिटवीन लाइक अ कपल, यू नो, यू मीट अ लव्ड इन लव इंटरेस्ट, जो हमारे बॉलीवुड में दिखाते हैं, यू नो, पेरेंट्स के अलावा, सिबलिंग्स के अलावा, दोस्तों के अलावा, दैट रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, ओके, जो शादी करेंगे बाद में या नहीं भी करेंगे, जो भी, डजेंट मैटर. एंड देन ही ऑल्सो सेड दैट कि अकॉर्डिंग टू हिम, किसी के प्यार में अपने आप को पूरी तरह से खोना, दैट इज़ अ ब्यूटिफुल फीलिंग एंड दैट इज समथिंग दैट ही रिस्पेक्ट्स अ लॉट एंड ही डजेंट थिंक दैट इट्स अ बैड थिंग. ही थिंक्स इट्स अ ग्रेट थिंग बिकॉज इट शोज हाउ मच यू रियली लव द अदर पर्सन एंड दैट हाउ मच यू कैन रियली गिव टू द अदर पर्सन. वेल, यू नो वॉट आदि, आई ऑल्सो रिस्पेक्ट दैट. यू नो वॉट दैट शोज मी? इट शोज मी दैट यू आर ए जेम ऑफ अ पर्सन, बिकॉज यू आर मे बी ए रोमांटिक एट हार्ट एंड मे बी समबडी हैज़ ऑलरेडी, यू नो, ग्रैब्ड यू और बैग्ड यू और जो भी है, टाइड द नॉट विथ यू. एंड आई थिंक शी और ही, हूएवर, इट डजेंट मैटर, दे आर अ लकी पर्सन बिकॉज दे हैव गॉट अ रोमांटिक लाइक यू. सो आदि, वेरी नाइस, यूर अ ग्रेट पर्सन. बट दैट ऑल्सो बींग सेड, मुझे ये भी लगता है कि कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हु आर एंक्शसली अटैच्ड, जो इस तरह के रोमांटिक प्यार से ज़्यादा इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, इतना ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि दे इट बिकम्स एट टाइम्स एन इमोशनल बर्डन. एंड मे बी दैट मे बी कमिंग फ्रॉम माई ओपिनियन एज एन अवॉइडेंट, बिकॉज आई मीन आई थिंक ओवर द ईयर्स आफ्टर माई फेल्ड रिलेशनशिप्स ऑफ सो मेनी ईयर्स, आई कंसिडर माई सेल्फ टू बी एन अवॉइडेंट एट दिस पॉइंट. बट डजेंट मैटर, मेरी बात छोड़िए, आप अपनी बात करिए यार, गाना सुनिए.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
2: कुछ भी नहीं. Oura Debt Relief will do it for us.
1: क्या मतलब?
2: Oura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
1: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
2: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
1: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
3: Don't let debt ruin your life. Visit oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
4: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है. चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग, फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
5: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट frisco-precisionsports.com और कॉल 4693331099.
4: Mention Funasia and get 50% off on tryout session.
6: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame, and clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Funasia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
7: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
8: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव.
9: Visit psychicramnath.com. Call 469-347-4401. Plano, McKinney, Irving और Garland में उपलब्ध.
10: Astrology readings of our guidance only and results may vary.
11: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग. द टेक्सास सुपर किंग्स आर हियर एंड द एक्शन इज एब्सोल्युटली हीटिंग अप. डोंट मिस अ सिंगल थ्रिलिंग मोमेंट. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
12: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
13: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.

प्यार की आग में पिघलने का मौका सबको थोड़ी ना मिलता है. अगर आपको मिल गया है देन आई थिंक यू आर वन ऑफ द लकी वंस, बिकॉज इट इज अ ब्यूटीफुल फीलिंग. यस, लेकिन उसमें सेंस ऑफ कंट्रोल या सेंस ऑफ टुगेदरनेस खोना भी सही नहीं है. आई लव दैट. मुझे, मैंने जो आपको क्वेश्चन पूछा, मुझे इतनी सारी कॉल्स आई. आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम सुमित हु वॉज एक्चुअली saying and trying to understand what Adi was saying, and then he was saying, like, while he agrees with what Adi was saying, Sumit also said, you know, you need to have that thin sense of balance. It's a really fine line between becoming madly and passionately in love and giving everything and becoming crazy. You know, there's a difference between the two. अगर आप अपना सेल्फ कंट्रोल खो के, अगर आप अपना बैलेंस मेंटेन करके चल सकते हो इन योर प्यार, इन योर रिलेशनशिप, देर इज नथिंग लाइक दैट फीलिंग. इट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग. लाइक फॉर एग्जाम्पल, यू गेट अप एंड यू गो टू वर्क एवरी डे, यू गिव टाइम टू द रेस्ट ऑफ योर फैमिली. ऐसा भी नहीं, कोई लोग प्यार में ना अपनी फैमिली वगैरह को भी भूल जाता है, घर बार छोड़ देते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. दैट्स ऑल्सो ओके टू एन एक्सटेंड, लेकिन यू नो इट्स योर फैमिली आफ्टर ऑल. तो दैट फीलिंग. या फिर कई लोग अपने दोस्त भूल जाते हैं, यू नो, क्योंकि नए रिलेशनशिप में आ गए, सो यू स्टार्ट इग्नोरिंग योर फ्रेंड्स. या फिर कुछ लोग अपना जॉब छोड़ देते हैं. सम पीपल स्लैक ऑफ इन देयर स्टडीज. सम पीपल प्यार में इतना पागल हो जाते हैं कि उनको अपनी फाइनेंसिस की भी चिंता नहीं है. वो प्यार में पैसे उड़ाए जा रहे हैं, उड़ाए जा रहे हैं, एंड देन फॉर ऑल यू नो बाई द एंड ऑफ इट यू आर काइंड ऑफ ब्रोक. सो दैट इज़ द थिंग दैट आई वॉज सेइंग. That is not a good, healthy space to be in my opinion. अगर आप प्यार करे हो, प्यार करो, लेकिन डोंट बी सो क्रेजी इन प्यार कि आप अपनी पूरी जिंदगी छोड़ दो, कि दारू वारू पीना छोड़ दो, शुरू कर दो. आई मीन दारू पीना शुरू कर दो. यू हैव लॉस्ट योर फैमिली, यू हैव लॉस्ट योर वर्क. ऑल डे यू आर सिटिंग एंड मोपिंग ओवर दिस वन पर्सन हु डज नॉट इवन रिस्पेक्ट यू एंड हैज मूव्ड ऑन, एंड यू आर जस्ट सिटिंग एंड क्राइंग ऑल डे, मेकिंग योर लाइफ खराब, अफेक्टिंग योर वर्क, अफेक्टिंग योर हेल्थ. That is madness, in my opinion. Okay, thank you so much for sharing that opinion, Sumit, and that was so great. Thank you also for sharing, Adi. Guys, we are going to play our second giveaway in just 2 minutes. लेकिन उसके पहले मैं बता तो दूं कि हमारा giveaway है क्या. आज का हमारा सेकंड गिव अवे है फ्रॉम रेड हॉट चिली पेपर, जिसमें आप जीत सकते हैं ड्राई चिली चिकन, चिली बेबी कॉर्न या फिर डैलसस बेस्ट बटर चिकन. एंड दिस इज ओनली वैलिड एट रेड हॉट चिली पेपर्स रिचर्डसन, मिकिनी और एलन लोकेशन. यू कैन नॉट गो टू द फ्रिस्को लोकेशन, सो डोंट गो टू द फ्रिस्को लोकेशन. फिर वहां से आपको वापस भेज देंगे. तो अगर आपने ये गेम खेला है, देन यू नो आई प्ले अ सॉन्ग फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड. यू हैव टू टेल मी द बॉलीवुड कॉपी ऑफ दैट सॉन्ग. सुपर सिंपल. माय फोन नंबर इज 972-235-5555. एंड लेट्स गो अहेड एंड लेट्स सी. एंड मेक श्योर कि आपने पिछले एक महीने में कोई भी फनीशा की तरफ से गिव अवे नहीं जीता है, बिकॉज वी वॉन्ट एवरी वन टू गेट अ फेयर चांस. सो दिस इज एक्चुअली अ रियली सिंपल वन, लेकिन शायद थोड़ा मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि गाइज थोड़ा पुराना है. इट्स फ्रॉम लाइक 20 years अगो. सो मेक श्योर दैट यू नो यू लिसन टू द क्वेश्चन केयरफुली. तो आई विल प्ले यू दिस इंग्लिश सॉन्ग. इट्स अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग, यू मस्ट हैव हर्ड इट. और उसका जो हिंदी कॉपी है, इट इज़ फ्रॉम आई एम नॉट गोना टेल यू द मूवी, नहीं तो गाना भी पता चल जाएगा. मूवी का नाम और गाने का नाम सेम है. And it is one of Preeti Zinta's older movies, okay? So here we go.

0: tukaram. Na na na na na na na na. I don't know what she's singing. Kism siyara lai maskara. आगे मुझे नहीं पता वो कौन से शब्द हैं क्योंकि मैंने उतने ध्यान से सुना नहीं है क्योंकि मैं सारे दिन गाने ही सुनती रहती हूँ. And this is a fairly new song. तो आगे बढ़ते हुए खेलते हैं हमारा लास्ट गिव अवे. यू गाइस, दिस गिव अवे इज फ्रॉम इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ. इंडिया बाजार इज वन ऑफ माय फेवरेट ग्रोसरी स्टोर्स. आई लव दैट स्टोर. जब मुझे और कुछ नहीं पता था यहाँ पे, मैं जब फर्स्ट टाइम यूएस आई इन 2018, और कुछ नहीं पता था, पर मुझे इंडिया बाजार जरूर पता था क्योंकि मुझे किसी ने बताया कि भाई आपको इंडियन मसाले चाहिए, आप वहीं पर जाना. तो मैं वहीं पर जाती हूँ उसके बाद से. तो गाइज, मेरा नंबर है 9722355555. यू कैन कॉल मी एंड tell me the answer to the question jo maine abhi tak bola hi nahi hai. Lekin pehle ye to main bol do that India Bazaar is now open in Fort Worth, your one stop destination for authentic Indian groceries and fresh produce, spices, snacks and all your desi needs essentials. India Bazaar located at 5142 Quadrant Way in Frisco. Okay, so for people living in Frisco, Keller, Fort Worth, Hearst, Hazlitt, I think even South Lake for that matter. अगर आप उस एरिया के आसपास हैं, then that's where you need to go. ठीक है? तो this game is very simple. This is not the copycat game. This is called complete the dialogue game. तो उसमें क्या है? I'm gonna say like a half line from like a really, really, really iconic dialogue, जो I'm sure आप सभी को पता होगा. ऐसे कितने सारे बॉलीवुड के डायलॉग्स हैं. ठीक है, दे आर सो आइकॉनिक, वी यूज इट इन आर डेली लाइव्स. ऐसे ही मैं और मेरी मम्मी तो डायलॉग खेलते रहते हैं सारे दिन बैठ के. तो मैं उसका आधा डायलॉग बोलूंगी, आपको मुझे उसका पूरा डायलॉग कंप्लीट करके बताना है. ठीक है, दिस डायलॉग इज फ्रॉम द मूवी दीवार. तो हियर वी गो, माई नंबर इज 9722355555. तो डायलॉग ऐसे है और मुझे पूरे एक्सप्रेशन के साथ बताना पड़ेगा, बाय द वे. सो हियर वी गो. आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, एंड देन कंप्लीट द डायलॉग. आगे पूरा बोलना पड़ेगा करेक्ट के साथ. ठीक है, कॉल मी एंड टेल मी. आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, इन अमिताभ बच्चन की आवाज. आप, अरे आ गया कॉल. हाय, कैन यू हियर मी? यू आर ऑन द लाइन.
1: हाय.
0: हाय, ओके, फर्स्ट टेल मी योर नेम. And then tell, complete the dialogue for me and पूरे अमिताभ बच्चन की आवाज में बोलना पड़ेगा. ठीक है,
1: ठीक है, ठीक है.
0: चलो अपना नाम बताओ.
1: गाड़ी है, बंगला है. आज ही मेरा नाम सौरभ है.
0: सौरभ जी, अच्छा, अब आप डायलॉग बोलिए पूरा.
1: आज मेरे ना पास गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है.
0: मेरे पास माँ, ऑलमोस्ट करेक्ट. एक छोटी सी लाइन बीच में रह गई, उसमें एक चीज और बोलता है वो. बंगला है, गाड़ी है, एक चीज और है उसके पास, वो क्या है? बीच की एक,
1: पैसा.
0: एक पैसा नहीं है. ओ, कोई बात नहीं, गुड ट्राई. हम दूसरे कॉलर के पास जाएंगे. थैंक यू फॉर ट्राइंग सौरभ.
1: आज ओके, थैंक यू.
0: एंड वी हैव आवर नेक्स्ट कॉलर. आपका नाम बताइए पहले तो, और रेडियो भी बंद कर दीजिए.
2: थैंक यू फॉर ट्राइंग सौरभ.
1: आज ओके, थैंक यू.
0: Hi, can you turn off the radio in the background? Hello?
3: Hello?
0: Hello? Hi, can you turn off the radio in the background? Because I can hear myself and it's like feeding back.
3: Yeah, can you hear me now?
0: Yes, okay. Complete the dialogue. Pura dialogue bolna padega.
3: Yes.
0: So go for it. First, tell me your name.
3: My name is Rutvij.
0: Rutvij, okay, Rutvij, go for it.
3: Yeah, so the dialogue is, aaj mere paas bangla hai, gaadi hai, bangla hai, gaadi hai, property hai.
0: Nahi. Property toh I'm sure hogi hi, lekin wo word nahi usne use kiya. Usne jo exact word use kiya tha, wo kuch aur hai. But thank you for trying. We'll go to the next caller. Thank you. Hi, you're on air. First of all, tell me your name.
4: Hello.
0: हाँ, आप पहले मेरा रेडियो का वॉल्यूम कम कर दीजिए पीछे, ठीक है?
4: जी जी जी.
0: हाँ जी, आप पूरा डायलॉग बोलिए. गो फॉर इट. पहले अपना नाम बताइए.
4: मेरा नाम शताब्दी है.
0: शताब्दी जी, गो फॉर इट.
4: जी, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है.
0: यू नो व्हाट, उसमें एक गड़बड़ आपने कर दी, लेकिन आई विल गिव इट टू यू बिकॉज क्या है तुम्हारे पास नहीं बोला, उसने बोला है तुम्हारे पास क्या है, बट वर्ड्स आपके सही थे, आपने वो बीच वाला फ्रेज भी ऐड कर दिया. तो हम थोड़ा अमिताभ बच्चन की आवाज में बोले थोड़ा इसको, एक बार और ट्राई कर दीजिए. आई विल गिव यू द गिव अवे, लेकिन एक बार और अमिताभ बच्चन की आवाज में ऐसे भारी करके बोलिए. ठीक है,
4: ठीक है, कोशिश करती हूँ.
0: गो फॉर इट.
4: आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है?
0: मेरे पास माँ है. अरे वाह, शानदार प्रदर्शन, तालियां. शताब्दी, प्लीज स्टे ऑन द लाइन, मैं आपका इन्फॉर्मेशन लूंगी. कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग द गिव अवे. आप जीत चुके हैं फोर्ट वर्थ इंडिया बाजार की तरफ से एक बड़ा सा गिफ्ट हैम्पर, ग्रोसरी हैम्पर, जो आप वहां पे रिडीम कर सकते हैं. स्टे ऑन द लाइन, मैं गाना बजाती हूँ, देन आई टेक योर इन्फॉर्मेशन. ओके
4: ओके
0: गाइज, एंजॉय द सॉन्ग. दिस इज ए यू नो अनवाइंड मिक्स फ्रॉम द सॉन्ग कह दू तुम्हें, फ्रॉम द मूवी दीवार.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
4: लिया.
3: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
4: नहीं आया.
3: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनाडा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
5: Visit www.senadainc.com today.
6: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
7: Dallas, are you ready? Java Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
13: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
12: सच में सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
14: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वेनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर.
15: Guys, we are back and you guys are all listening to Hippie the Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM. And this is my show, An Evening in Dallas. Guys, I love it. आप जब मुझे call करके बोलते हैं ना कि hey, आपने Fort Worth, India Bazaar Fort Worth की जगह आपने India Bazaar Frisco बोल दिया. I love it, क्योंकि कई बार ना देखो भाई, मैं 14 घंटे काम करती हूँ, लिटरली आई एम नॉट इवन किडिंग. मैं सुबह घर से 8:30 बजे निकलती हूँ और मुझे घर पहुँचते 10:45 हो जाता है. सो आई एम लिटरली आउट ऑल डे. तो उसके बीच में अगर मेरे मुंह से कभी फोर्ट वर्थ की जगह फ्रिस्को निकल गया, दोनों फर से शुरू होते हैं, फर से बहुत सारे दूसरे भी शब्द शुरू होते हैं पर हम वो नहीं बोलते हैं, हम सिर्फ फोर्ट वर्थ और फ्रिस्को बोलते हैं.

तो उसके बीच में अगर मेरे मुंह से कभी फोर्ट वर्थ की जगह फ्रिस्को निकल गया, दोनों फ, फ से शुरू होता है, फ से बहुत सारे दूसरे भी शब्द शुरू होते हैं, पर हम वो नहीं बोलते हैं, हम सिर्फ फोर्ट वर्थ और फ्रिस्को बोलते हैं. तो आई एम रियली सॉरी, आई मेंट इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग मी, आई रियली अप्रिशिएट इट. सो दैट वेज आई कैन फिक्स इट एंड आई कैन मेक श्योर देर इज नो कन्फ्यूजन. एब्सोल्युटली. आगे हम सिर्फ 1 ही घंटा बचा है हमारे या मेरे इस शो का, जिसमें मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार मज़ेदार सॉन्ग्स बजाऊंगी एंड वी आर गोना हैव सो मच फन. आज मैंने डोनट भी खा लिया है थैंक्स टू माय टीम, जिन्होंने बाहर एक डोनट के बॉक्स में 2 डोनट बचे हुए थे, वो मेरी किस्मत में था वो 1 डोनट, तो मैंने वो खा लिया. तो आई हैव सो मच एनर्जी, आई एम ऑन अ शुगर हाई राइट नाउ. तो इसीलिए मैं आपको गाना बजाती हूँ एंड देन वी कम बैक एंड चैट सम मोर.

गाइज वी आर बैक एंड दिस इज फन एशिया रेडियो 104.9 FM. 4 मिनट में, 3.5 मिनट में ब्रेक में जाने वाले हैं. लेकिन जाने से पहले, हैव यू एवर बीन स्टक इन सम काइंड ऑफ एन एक्सीडेंट वेयर यू एब्सोल्युटली नो इट इज नॉट योर फॉल्ट बट स्टिल यू आर सफरिंग फॉर इट? वेल, इन दोज केसेज यू नीड टू कॉल अप समवन हु इज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन एंड हु नोज हाउ टू हैंडल इंश्योरेंस कंपनीज एंड ऑल दीज like complicated situations. You need to call Omar Khwaja. आप पुलिस को फोन करो ना करो, आई एम श्योर पुलिस को कर लेना, लेकिन उसके बाद Omar Khwaja को जरूर करना फोन, बिकॉज अटर्नी Omar Khwaja, ही विल कम एंड फाइट योर केस एंड ही विल गेट द हेल्प यू गेट द कॉम्पेंसेशन दैट यू डिजर्व. डीलिंग विद इंश्योरेंस कंपनीज इज सो स्ट्रेसफुल बिकॉज द फर्स्ट थिंग दैट दे विल टेल यू इज दैट ओ इट इज योर फॉल्ट, वी विल नॉट पे यू, नो कॉम्पेंसेशन. लेकिन इफ यू नो यू नो, राइट, देन यू नीड टू मेक श्योर समबडी हू विल फाइट फॉर यू. Attorney Omar Khwaja will make sure that you get compensated and you don't pay until you win. So for a free consultation call 469-300-5046 or visit attorneyomar.com. 3 minutes mein hum jaane wale hain break mein, tab tak ke liye aap ye gana suniye.

0: biggest super hits is coming your way.
1: Vishal and Shekhar.
2: Here we go.
0: That's right. Vishal and Shekhar Live. Get ready for an electrifying evening filled with songs you've danced to, celebrated with, and fallen in love listening to. Sunday, July 12th at the Curtis Culville Center in Garland. Tickets on sale now. CashPatelProductions.com. The Super Hit Tour with Vishal and Shekhar.
3: Use code FUNASIA and get 30% discount.
4: Swag se karenge sabka swagat.
5: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to FUNASIA Radio.
6: भाई जिंदगी इतनी तेज भाग रही है, टाइम भी इतना तेज तेज भाग रहा है, ऐसा लग रहा है दौड़ दौड़ भाग भाग सा, वैसी वाली वाइब आ रही है. फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट वी आर रनिंग हियर एंड देयर हसलिंग अवे, लेकिन इट इज ऑलमोस्ट टाइम फॉर मी टू गो यू गाइज. ओनली 30 मोर मिनट्स लेफ्ट एंड आई हैव सो मच एनर्जी टुडे अगेन. पता है क्यों? थैंक्स टू माई टीममेट्स जिन्होंने यू नो सरप्राइज डोनट छोड़ दिया मेरे स्टूडियो के बाहर. एंड आई वाज लाइक यू नो व्हाट, दिस डोनट इज माइन. फाइंडर्स कीपर्स लूजर्स वीपर्स. ऑल्दो आई थिंक दिस वाज द लास्ट वन दैट वाज लेफ्ट एंड बिकॉज आई एम वन ऑफ द लास्ट पीपल दैट कम्स इनटू द स्टूडियो 7 से 10 बजे, आई थिंक मेरी किस्मत में ही था वो. So, let's rewind, let's wind down. Lekin ek nice up-tempo track before we wind down for the night.

एंड गाइस वी आर बैक. थोड़ा टाइम लग गया मुझे नेक्स्ट गाना क्यू करने में, लेकिन आप सुनते रहिए गाइस. ब्रेक में जाने से पहले वी वर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स एंड डेटिंग एंड यू नो हाउ मच कैन यू रियली लव समवन और समवन की आप उसमें अपना पूरा आइडेंटिटी ही खो जाए. आई डोंट थिंक यू शुड टोटली डू दैट. आई थिंक यू शुड स्टिल मेंटेन योर ओन सेल्फ. आई मीन ठीक है, प्यार में पड़ना इज़ क्वाइट अ गुड थिंग, लेकिन भाई अपने आप को टुगेदर भी रखना पड़ेगा. यू नो यू कॉन्ट जस्ट लाइक लूज अ कम्प्लीट सेंस ऑफ आइडेंटिटी. आई थिंक यू शुड स्टिल हैव अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस. आई थिंक यू शुड स्टिल बी लाइक कि नहीं भाई आई लव दिस पर्सन, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस पर्सन के प्यार में, अगर मिल गया तो ठीक है और नहीं मिलेगा तो मैं इतना पागल हो जाऊंगी मैं शराब पी के अपनी पूरी ज़िंदगी बुला दूंगा. कम ऑन गाइज, यू नो यू हैव अ लाइफ, यू हैव सो मैनी मोर थिंग्स टू अचीव. एंड किसी पर्सन के पीछे अपनी पूरी ज़िंदगी ख़राब करना इज़ नॉट रियली वर्थ इट, है ना. वी गॉट टू मूव ऑन, यू गॉट टू मूव ऑन टू समथिंग बिगर, बेटर, टू समवन इवन बेटर इन लाइफ. मे बी फॉर ऑल यू नो द योर सोलमेट इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर. This is a new song from the movie Awarapan 2, Vejunoon. Thank you, Zimran, for telling me all the new songs that come out. Because tumko mere se zyada Bollywood pata hai at this point.

द हिप्पी एंड यू आर लिसनिंग टू फनेशिया रेडियो 104.9 एफएम एंड दिस इज माय शो एंड इवनिंग इन डैलस. इवनिंग से नाइट हो चुकी है. आई एम प्रीटी श्योर मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग रेडी फॉर बेड और डूइंग समथिंग एल्स. इफ नॉट गेटिंग रेडी फॉर बेड, आई डू वांट टू गो टू बेड रियली रियली सून. लेकिन मैं आपके साथ 15 मिनट अराउंड 18 मिनट्स और हूँ. लेकिन जाने से पहले, बाय द वे गाइज, आपने इस साल का अपना टैक्स भरा कि नहीं? यार मेरी जो CPI है ना, इतनी बकवास है ना, अभी तक मेरा टैक्स नहीं भरा है. उसने एक्सटेंशन फाइल करके रखी हुई है, कहती है हाँ मैं करूँगी करूँगी करूँगी. मैं परेशान हो गई हूँ ऐसे लोगों से डील करके करके जो मेरा काम टाल के रखते हैं बिकॉज दे प्रोक्रेस्टिनेट सो मच. और हम लोग जो हैं क्लाइंट्स, हम लोग फंस जाते हैं कि हम लोग इसके बीच में फंसते रहते हैं कि यार भाई टैक्स फाइल कर दे, टैक्स फाइल कर दे. और नहीं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं तो मैं खुद ही कर लेती. लेकिन आई डोंट वांट टू गेट इनटू ऑल ऑफ दैट. लेकिन डोंट बी लाइक मी, गो टू AG FinTags. ओके, AG FinTags इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म्स इन द US. दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल for both individuals and businesses. They are trusted, efficient, and get you ready for the future. Call 469-942-9888 or visit agfintechs.com. File your taxes. Don't be like me, okay? Don't be stupid and hire some random person whose side hustle is to do taxes for other people. That's not her main job. She is a violinist with the Dallas Symphony Opera or Orchestra, something like that, on her side. And then her side hustle is to file taxes. Don't be like me. Don't file a person like that. Filed an actual CPA. Okay.

लास्ट के 10 मिनट बचे हैं एंड आई स्टिल लव दैट यू गाइज आर कॉलिंग मी एंड टेलिंग एंड कनेक्ट विद ऑल माई स्टोरीज एंड शेयरिंग ऑल योर स्टोरीज विद मी. अभी कुछ टाइम पहले मुझे कॉल आई वसीम जी की. वसीम जी हु कॉल्ड मी अप एंड वो मेरी डोनट वाली स्टोरीज सुन के जो मेरे टीम मेम्बर्स छोड़ के गए थे और जो लास्ट डोनट मेरे मेरी किस्मत में था. आई थिंक इट वॉज द कैरमल डोनट बट यू नो वट वी डोंट क्वेश्चन. वी जस्ट इन्जॉय द फूड. फ्री फूड इज ऑलवेज अमेजिंग. इसीलिए आई गिव यू गिव अवेज बिकॉज आई ऑल्सो नो फ्री फूड इज ऑलवेज अमेजिंग राइट. तो वसीम जी कॉल्ड मी अप कुछ टाइम पहले. वो कहते हैं पता है मैं एक टाइम पे जब मैं डोनट खाता हूँ मैं 15 डोनट खा सकता हूँ. मैंने कहा वसीम जी 15 डोनट में ना बहुत चीनी होती है, इतने सारे डोनट मत खाओ लेकिन आप एक आधा कभी खा सकते हैं. तो वसीम जी हैज़ रिक्वेस्टेड ए सॉन्ग फॉर हिज ब्यूटिफुल वाइफ फरीदा जी. फरीदा जी ये गाना आपके लिए. वसीम जी लव्स यू सो मच एंड ये गाना उन्होंने आपके लिए डेडिकेट किया है एकदम प्यार भरा. एंड आई होप यू एंजॉय दिस वन.

Guys, it is 9:54 on the clock. This is the last you will be hearing from me today. लेकिन कल मैं वापस आऊंगी 7 बजे. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, एंड आई होप यू हैव ब्यूटिफुल, प्यारे प्यारे, सुंदर सुंदर से सपने जिसमें आप अपने लव्ड वंस के बारे में सोच रहे हैं. और अगर नहीं सोच रहे हैं तो कोई और भी प्यारी सी प्यारे प्यारे से सपने देखिए. डोंट हैव नाइटमेयर्स, ओके? डोंट लेट द बेड बग्स बाइट. Have an and have a beautiful night. And this is me signing off, Ippy the Hippie. And you guys were listening to An Evening in Dallas only on Funnacious Radio 104.9 FM.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
3: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
4: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Fun Asia.
5: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.
6: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

क्या हाल है टैलिस? 10 बज चुके हैं और ट्यूसडे की रात ऑफिशियली ऑन है, हो चुकी है। वेलकम टू दिल से डैलिस विद स्निग्धा, सिर्फ और सिर्फ फनीशिया 104.9 FM पर। वैसे ट्यूसडे का भी ना बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। मंडे को सब सिंपथी देता है, फ्राइडे को तो फैन क्लब होती है, सैटरडे सेलिब्रिटी है और संडे हम इमोशनल हो जाता है कि वीक शुरू हो गए और बेचारा ट्यूसडे पूरी दुनिया इसको बस कैलेंडर का वॉलपेपर समझ के स्किप कर लेती है। आज तो ऑफिस में या काम पे किसी ने एक क्लासिक डायलॉग तो मारी होगी, यार आज तो मैं जल्दी घर निकलूँगा, और फिर वही इंसान सबसे लास्ट में निकला होता है। दिस माइट बी हैपनिंग इन योर वर्क स्पेस, है ना? आज की रात इसी तरह मस्त बातें होंगी, थोड़ी हंसी मजाक, थोड़ी ऑब्जर्वेशंस और बीच बीच में वो गाने जो ट्यूसडे को भी फ्राइडे जैसा फील कराते हैं। अब मूड बनेगी तो म्यूजिक कंटिन्यू करते हैं। ये रहे आपके पहला गाना फ्रॉम माई शो फ्रॉम 10 PM टू 12 AM फॉर यू गाइस।

वेलकम बैक, ये है दिल से डैलिस विद स्निग्धा और आज एक छोटा सर्वे करते हैं बिना रिजल्ट के. मुझे एक बात बताइए, हम सबके फ्रेंड सर्कल में एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसको हर चीज़ का कॉन्फिडेंस होता है. लेट इट बी वेदर, पक्का कल बारिश होगी, अगर नहीं हुई तो मुझे बताना, आई एम द वन जो सब अच्छे से प्रेडिक्ट करता है. इफ़ इट्स अ क्रिकेट, ये प्लेयर ना सेंचुरी मारेगा. दिस इज़ टू ऑल माई क्रिकेट फैंस जिसको लगता है मुझे ये गेम के बारे में बहुत पता है, तीन बॉल में फिर वो आउट भी हो जाता है. इफ़ यू गो टू सी अ मूवी, उसका पहले ही ये क्राई होता है कि ये तो ब्लॉकबस्टर है. बट इंटरवेल के बाद खुद फ़ोन चलाना शुरू, कॉन्फिडेंस लेवल इतना स्ट्रॉन्ग कि लगता है नासा भी की वेदर भी इसने ही अपडेट करी होगी. और फनी बात पता है, जब प्रिडिक्शन गलत होती है ना तो एक्सप्लेनेशन रेडी होता है, अरे लास्ट मोमेंट पे चेंज हो गया, हाँ हाँ यूनिवर्स ने स्पेशली आपको कंफ्यूज करने के लिए प्लान चेंज किया होगा. और कमिंग टू माय शॉपिंग वाले एक्सपर्ट्स भी कमाल होते हैं, मॉल जाते वक्त बोलेंगे बस एक चीज़ लेनी है, दो घंटे बाद तीन बैग्स, दो कॉफ़ी, एक परफ्यूम, और वो भी एक चीज़ नहीं वहाँ रह गए थे कि इसने लिया ही नहीं. वैसे विंडो शॉपिंग भी एक टैलेंट है, कपड़े देखना फ्री, ट्राई करना फ्री, मिरर में पोज देना फ्री, और फिर बोलना मैं बस देख रहा था, पता नहीं सोचता होता कि ये वेबसाइट सबको दिखता है. चलिए थोड़ा और म्यूज़िक हो जाए, ये अगले गाने आपकी ट्यूसडे को भी और चिल बना देगा क्योंकि सूरज ऑलरेडी डूब चुका है.

ट्यूसडे की रात भी म्यूजिक के साथ ना स्मूथ लगता है। तो अगर हम बात करते हैं हंसी मजाक ऐसे बातें, इट्स नाइट टाइम, तो मैं कुछ ये चीज़ें नहीं बोलूँगी, लाइफ इज़ लाइक दिस, लाइफ इज़ लाइक दैट, आई डोंट वांट टू बोर यू गाइस, इट शुड बी फन, जैसे बातें आपको हंसी आए या कुछ यादें बने। हम सब ना लाइफ में कभी ना कभी ओवर कॉन्फिडेंट शेफ ज़रूर बने होंगे। रेसिपी खोली यूट्यूब पे, वीडियो शुरू हुआ, ईजी रेसिपी इन जस्ट 10 मिनट्स, कितने लोगों ने ऐसा डाला होगा, व्हेन यू आर नॉट इन अ मूड टू कुक, बस 10 मिनट में जल्दी से जल्द कुछ बन जाए और मेरे पेट में कोई निवाला आ जाए। और फिर किचन का रियलिटी शो शुरू होती है, एक बॉल कम पड़ गया, एक स्पून नहीं मिल रहा है, गैस फुल स्पीड पे ऑलरेडी चालू हुई है, रेसिपी में लिखा था कुक अंटिल गोल्डन ब्राउन, गोल्डन ब्राउन कब ब्लैक हो गया किसी को पता ही नहीं। और जब टेस्ट करते हैं तो सबसे पहला सेंटेंस, एक्चुअली रेस्टोरेंट जैसे तो नहीं बना भाई, रेस्टोरेंट का जैसे एक्सपेक्टेशन किसने रखा, बोला था। लेकिन एक बात में मानना ही पड़ेगा कि जब खुद कुछ बना लेते हैं ना, चाहे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही क्यों ना हो, उसकी फीलिंग अलग होती है। वैसे अगर किचन आज अवॉइड करना है तो कोई बात नहीं, म्यूजिक हम हैंडल कर लेते हैं, अगला ट्रैक रेडी है, एंजॉय कीजिए और वॉल्यूम थोड़ा और बढ़ा दीजिए, ट्यूसडे है लेकिन बिल्कुल मूड हम वीकेंड जैसा ही रखेंगे।

Welcome back to Dil Se Dallas with Snigdha on Fun Asia 104.9 FM. और अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हम सबकी लाइफ में है लेकिन कोई ओपनली एक्सेप्ट नहीं करता, फोन बैटरी का ड्रामा। सच सच बताओ, फोन की बैटरी जब 50% होती है बिल्कुल रिलैक्स्ड होते हैं हम। अरे अभी तो बहुत है, 40% पे चलेगा और फिर 30% जब आएगा हमें लगता है थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और वेर इट इज 20%, सडनली फ़ोन हमारी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान बन जाता है। ब्राइटनेस कम, वाईफाई ऑफ कर लेते हैं, ब्लूटूथ भी बंद कर देते हैं, बैकग्राउंड के ऐप सब बंद, और वो बैटरी सेवर मोड में ऐसा लगता है फ़ोन कोई ICU में बैठा हुआ। और सबसे फनी मोमेंट होता है जब घर से निकलते वक्त फ़ोन में 15% होता है ना, हम सोचते हैं बस रास्ते में चार्ज कर लूँगा। रास्ते में क्या, चार्जर का फेयर ही आएगी हमारे लिए। और कार में चार्जर लगा भी दिया तो केबल का एंगल ऐसा होता है कि फ़ोन हिल गया तो चार्जिंग बंद। फिर हम ड्राइवर भी बन जाते हैं, इंजीनियर भी और डिटेक्टिव भी। चार्ज क्यों नहीं हो रहा है, केबल को 3 बार निकाल के लगाना जैसे कोई मैजिक ट्रिक कर रहा हो। और फ़ोन की ऐसी एक और आदत है, जब आपको बिल्कुल ज़रूरी कॉल होती है तभी बैटरी वार्निंग आ जाती है, लेकिन जब आप बस रैंडम वीडियोस देखते रहते हो तब बैटरी फुल कॉन्फिडेंस के साथ चलती रहती है। डोंट यू थिंक हमारे फ़ोन्स भी ना, कभी कभी फ़ोन्स के भी मूड स्विंग्स होते हैं। टेक्नोलॉजी ने लाइफ को ईजी तो बना दिया है लेकिन फ़ोन बैटरी ने हमें पेशेंस ज़रूर सिखा दिया है। चलिए पेशेंस को साइड में रखते हैं और म्यूज़िक के मज़ा लेते हैं और एक ब्यूटीफुल ट्रैक्स आपके लिए।

You're listening to Dil Se Dallas with Snigdha and अब एक ऐसी कैटेगरी के बातें करते हैं जिसके बिना दुनिया ना इनकम्प्लीट है, हमारे गूगल एक्सपर्ट्स के बारे में। आजकल हर घर में एक सेल्फ डिक्लेयर्ड एक्सपर्ट होता ही होता है। किसी को थोड़ा सा हेडेक हुआ नहीं, गूगल पे चेक करो। किसी ने नया रेसिपी बनाया, गूगल बता देगा। किसी ने कार में अजीब आवाज़ सुनी, गूगल के हिसाब से इंजन ख़त्म। मतलब डॉक्टर, मैकेनिक, शेफ, लॉयर, सब कुछ बनने के लिए बस एक इंटरनेट की कनेक्शन की ज़रूरत होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है, सर्च करते वक्त हम सिंपल प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। व्हाई इज़ माय थ्रोट हर्टिंग, फॉर एग्जांपल। दो मिनट बाद रेयर डिजीज़ यू नेवर नो एग्जिस्टेड, गूगल इतने लिस्ट दे देती है हमें कि इट माइट बी दिस, इट माइट बी दिस। और फिर आधा घंटे के बाद हम अपनी हेल्थ की डॉक्यूमेंट्री देख रहे होते, गूगल भी कंफ्यूज्ड होता होगा, भाई तुम सिर्फ एक आंसर लेने आए और इतना रिसर्च क्यों कर रहे हो। और घर में जब कोई चीज़ ख़राब होती है ना, रिमोट नहीं चल रहा है, फ़ैन का बटन कम करना है, डोर की हैंडल लूज़ है, सबसे पहली स्क्रू ड्राइवर नहीं निकालता, हमारे फ़ोन निकलते हैं कि हाउ टू फिक्स। और वीडियो में बंदा बोलता है बस तीन सिंपल स्टेप्स। सिंपल उनके लिए, हमारे लिए तो पहले ये समझना मुश्किल होता है कि स्क्रू ड्राइवर का कौन सा साइड से यूज़ करना है। लेकिन मानना पड़ेगा, इंटरनेट ने हम सबको थोड़ा एडवेंचरस तो बना ही दिया है। पहली छोटी सी प्रॉब्लम के लिए हेल्प चाहिए होती थी, अब हम खुद की एक्सपेरिमेंट करते हैं, कभी सक्सेस, कभी एक लेसन, और कभी फिर प्रोफेशनल को एक कॉल। चलिए अब एक और म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और ये नेक्स्ट सॉन्ग आपकी ट्यूसडे की नाइट को और भी बेटर बना देगा।

0: अब ना एक कन्फेशन टाइम, सच सच बताओ, क्या आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में चीज़ें ऐड करके बस छोड़ दी है? वो कार्ट भी ना एक इमोशनल जर्नी होता है। पहला एक्साइटमेंट, वाह ये तो मुझे चाहिए, फिर थोड़ा कैलकुलेशन, एक्चुअली ज़रूरत है क्या, फिर फैमिली की याद आती है, मैं उनके लिए खरीद लेती हूँ, उनके लिए खरीदता हूँ, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, किड्स, सबकी याद आ जाती है। इसकी आंसर ना मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और फिर कार्ट वही पड़ा रहता है। और इंटरेस्टिंग बात, 3 दिन बाद वो ही शॉपिंग ऐप नोटिफिकेशन भेजती है, योर कार्ट मिसेस यू। हाउ मेनी ऑफ यू लाइक सॉ दिस ऑन योर फोन, योर कार्ट मिसेस यू? मैं तो बार बार देखती हूँ। अब शॉपिंग कार्ट भी इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा होता है हमें। पहले लोग लेटर्स भेजते थे, अब एप्स भी बोलते हैं, हमने नोटिस किया है आप हमें इग्नोर कर रहे हैं। और सेल के टाइम पे तो और भी फनी होती है, हम बोलते हैं मैं बस देखूंगा, और 45 मिनट्स के बाद रिव्यूज़ पढ़ रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, डिफरेंट कलर्स चेक कर रहे हैं, और फिर फाइनल डिसीजन इज कल देखते हैं। कल कभी नहीं आता। लेकिन एक बात है, ऑनलाइन शॉपिंग ने ना पेशेंस और इमेजिनेशंस दोनों बढ़ा दिए। फ़ोटो में प्रोडक्ट देख के इमेज ऐसी करनी पड़ती है कि बाद में लाइफ में कितना सॉर्ट हो जाएगा, और फिर पैकेज आता है और रियलिटी अपना इंस्ट्रक्शन दे ही देता है। चलिए इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच के गैप थोड़ा फिल करते एक और एक अमेजिंग सॉन्ग के साथ बिफोर वी गो ऑन अ शॉर्ट ब्रेक।
1: Swadhi, okay.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू. लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई. डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. द जागो टाइम्स कमीशन, जागो भी जगाओ भी. एक्सक्लूसिव मीडिया पार्टनर फन एशिया.
4: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
5: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
6: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

यार दैट वॉज अ ब्यूटिफुल सॉन्ग जालिमा. वन एवर आई वॉच द सॉन्ग और जब मुझे याद आती है आई लव हीरोइन के कॉस्ट्यूम्स. इसमें इतने अच्छे अच्छे अनारकली और पहनना होता है इसको. इट्स सो ब्यूटिफुल. आई जस्ट लव इट. बॉलीवुड रियली कनेक्ट्स अस सम टाइम्स. लाइक यू नो यार ऐसे ही लेना चाहिए. मोस्ट ऑफ गर्ल्स जब भी हम कुछ देखते हैं लाइक जो हीरोइंस पहनते हैं हमें लगता है ये वाला डिज़ाइन चाहिए मुझे भी ऐसा ही करवाना है. दिस माइट बी रिलेटेबल टू ऑल द गर्ल्स. और अब 11 बज चुके हैं. यू आर लिसनिंग टू दिल से डैलस विद स्निग्धा ओनली ऑन फनी शो 104.9 FM. और अब एक टॉपिक ना जिसमें हम सबकी ओपिनियन ज़रूरी है. एनीवेज आई वाज टॉकिंग अबाउट बॉलीवुड. बॉलीवुड ने हमें इतना कुछ सिखाया है और इतना कुछ गलत सिखाया है. अभी सच सच बताओ मूवीज देखते हैं देखते हैं हम कुछ एक्सपेक्टेशंस तो बना ही लेते हैं कि जैसे बॉलीवुड में कोई भी इम्पॉर्टेंट बात करनी है ना वो नॉर्मल जगह पे नहीं होती. वो एक अच्छे से गार्डन में या बारिश में या फिर ट्रेन स्टेशन पे जब ट्रेन ऑलरेडी चलने वाली होगी. रियल लाइफ में कोई बोले रुको मुझे तुमसे कुछ कहना है हम सब सोचेंगे बैकग्राउंड में म्यूज़िक क्यों नहीं चल रहा है. और एक चीज़ मूवीज़ में हीरो के पास हमेशा परफेक्ट टाइमिंग होती है. हीरो का एंट्री करेगा और एग्जैक्टली उसी सेकंड पे सब कुछ ड्रामा होगा. रियल लाइफ में तो हम अपना नाम इंट्रोड्यूस करते ही ऑकवर्ड हो जाते हैं. और बॉलीवुड ने एक और कोइंसिडेंस कर दिया कि स्लो मोशन में चलने से पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाती है. कभी कभी हमें भी ट्राई करनी चाहिए. रूम में एंटर करना थोड़ा स्लो, हेयर एडजस्ट करना थोड़ा स्लो, एक्सप्रेशन सीरियस रखना और फिर सामने वाले बोलते हैं कि लाइट का बिल भर दिया क्या. बस सारी हीरो वाली फीलिंग वही ख़त्म. और शादी सीन्स तो अलग ही दुनिया है. मूवीज़ में शादी मतलब 500 लोग डांस कर रहे हैं, आउटफिट्स परफेक्ट है, सबकी कोरियोग्राफी याद है. रियल लाइफ वेडिंग में आधे लोग बस ये पूछ रहे होते हैं कि खाना का काउंटर किधर है. इसी इमेजिनेशन के साथ चलिए और एक अमेजिंग सॉन्ग की तरफ. स्टे ट्यून्ड. म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन दिल से डैलस विद स्निग्धा.

वेलकम बैक। कभी कभी लाइफ में कुछ डिबेट्स ऐसी होती है जिनके आंसर शायद नहीं मिलेगा, लेकिन डिस्कशन ज़रूरी होता है। आज की रात की सवाल, क्या चाय और कॉफ़ी के बीच में कंपटीशन कभी ख़त्म हो सकता है? लेट्स टॉक अबाउट चाय एंड कॉफ़ी का कंपटीशन। आई नो लॉट ऑफ अस लव चाय, बट यू एस आके ऐसे लगता है कॉफ़ी के बिना तो दिन ही शुरू नहीं होती। हम हमारे कॉफी और चाय के बातें करेंगे आफ्टर अ नाइस ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर यू गाइस।

सो हम बात कर रहे थे चाय और कॉफी की कंपटीशन कभी खत्म हो सकता है। चाय लवर्स कहते हैं चाय सिर्फ ड्रिंक नहीं है, एक इमोशन है। कॉफी लवर्स बोलते हैं कॉफी के बिना ब्रेन स्टार्ट ही नहीं होता। और ऑनेस्टली दोनों की अपनी अपनी पर्सनालिटी है। चाय वाले लोग थोड़े रिलैक्स मूड में होते हैं, सुबह उठते ही पहला चाय, मूड खराब चाय, गेस्ट आए तो चाय, कुछ भी हो सोल्यूशन इज चाय। कॉफी वाले थोड़े ना प्रोफेशनल मोड में लगते हैं मुझे। लैपटॉप खोला, कॉफी रखी, सडनली लगता है दुनिया का सारा काम हैंडल कर सकते हैं। एक कप कॉफी के बाद कॉन्फिडेंस लेवल, मैं आज सब कंप्लीट कर दूंगा। और 2 घंटे के बाद इनबॉक्स वही, टू डू लिस्ट वही, बस कॉफी खत्म। और एक फनी चीज ये है कि हम ड्रिंक्स के साथ पर्सनैलिटी भी अटैच कर देते हैं। अगर कोई बोले मैं ब्लैक कॉफी पीता हूँ, हम ऑटोमेटिकली सोचते हैं ये बंदा सीरियस होगा। और कोई बोले मैं कटिंग चाय वाला इंसान हूँ, लगता है लाइफ एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। लेकिन रियलिटी ये है, चाय हो या कॉफी, इम्पॉर्टेंट वो मोमेंट है जब आप किसी के साथ बैठकर बात कर रहे हो। कभी कभी एक सिंपल कप के साथ बेस्ट कॉन्वर्जेशन होती है। दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ आवर देसी चाय। कॉफी के साथ भी, यू व्हेन यू वांट टू आस्क आउट अ गर्ल, आप बोलते कि लेट्स गो फॉर अ कॉफी, तो कॉफी भी बात बनाती है। चलिए कॉन्वर्सेशन को म्यूजिक के साथ कंटिन्यू करते हैं। हियर इज द नेक्स्ट ट्रैक।

You're back on Dil Se Dallas with Snigdha on Phanasia 104.9 FM पर. अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जो जनरेशन में हर जनरेशन में होती है, हमारा म्यूज़िक टेस्ट और उसकी एक्सप्लेनेशन. कभी नोटिस किया है हम सब के पास ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जिनको हम डिफेंड करने के लिए रेडी रहते हैं. कोई पूछे ये गाना क्यों पसंद आया, आंसर इज बस वाइब है, वाइब है. कोई नहीं जानता कि क्या है उसमें. और प्लेलिस्ट भी ना पर्सनालिटी रिवील कर देती है. किसी के प्लेलिस्ट में वर्कआउट सॉन्ग्स होते हैं, आप देख के सोचते हो ये बड़ा जिम जाता होगा, बट रियलिटी 2 महीने से मेंबरशिप एक्टिव है पर बंदा नहीं एक्टिव है. किसी के प्लेलिस्ट फुल रोमांटिक सॉन्ग्स के साथ भरी होती है और वो बोलता है नहीं नहीं इमोशनल नहीं हूँ. हाँ बिल्कुल, बस 47 सैड सॉन्ग्स एक्सीडेंटली सेव हो गए होंगे. और सबसे फनी मोमेंट होता है जब कार में किसी और के साथ म्यूजिक चल रहा हो, आप बोलते हो जो तुम्हें पसंद है वो लगा दो, फिर वो एक ऐसा गाना लगा देता है जिसके आपको कोरस ही समझ नहीं आता है. किन के लोगों के साथ ऐसा हुआ है, लेकिन फिर भी हेड नॉट करना पड़ता है क्योंकि हम किसी और के साथ जा रहे हैं, क्योंकि म्यूज़िक में ना एक मैजिक है. कभी एक पुराने गाना एकदम से पुरानी मेमोरी वापस ले आती है, कभी एक नया गाना मूड चेंज कर देती है. और इसी म्यूज़िक के साथ आगे बढ़ते एक और ट्रैक रेडी है आपके लिए सुनने के लिए.

It's 11:46, almost 11:47 PM. हम सबके अंदर ना एक छोटा सा डिटेक्टिव जरूर होता है, बस डिफरेंस ये है कि हम क्राइम्स सॉल्व नहीं करते, हम छोटी छोटी चीज़ों को ही इन्वेस्टिगेट करते हैं, लाइक आवर मम्मीज एग्जाम्पल. किचन में कोई आवाज़, हम तुरंत चेक करने जाते, क्यों पता नहीं, बस जाना ज़रूरी है. या फिर घर में किसी ने बोला मैं तुम्हारी चीज़ नहीं ली, हम हमारी ब्रेन में इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन मोड में चले जाते, अच्छा तो फिर गई कहाँ. और सबसे इंटरेस्टिंग डिटेक्टिव वर्क होता है कि जब कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है, हम सब नॉर्मल रहते हैं, लाइक हम सोचते हैं बिजी होगा, 10 मिनट के बाद शायद फ़ोन नहीं देखा, 30 मिनट के बाद कुछ तो सीन है, और फिर लास्ट सीन चेक करना शुरू. ऑनलाइन था, अब तो इन्वेस्टिगेट एजेंसी एक्टिवेट हो गई होंगी. लेकिन एक बात है, हमारी क्यूरियोसिटी बिना कमाल की चीज़ है. कभी कभी इसी क्यूरियोसिटी की वजह से हमें नए चीज़ें सीखने मिलने पड़ते हैं. कोई नया प्लेस एक्सप्लोर करते हैं, कोई नया सॉन्ग डिस्कवर करते हैं, कोई रैंडम फैक्ट जान लेते हैं जो बाद में किसी कॉन्वर्जेशन में काम आ ही जाता है. वैसे रैंडम फैक्ट्स की बातें करते तो क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो अपनी कार का नाम रखते हैं. और ऑनेस्टली मुझे लगता है कुछ लोग अपने कार्स के साथ ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन रखते हैं, जितना आपके फ़ोन के साथ. फ़ोन गिरा तो ओ नो, कार पे स्क्रैच, ये तो पर्सनल अटैक है. चलिए इमोशंस और मेमोरी को साइड में रखते हैं और म्यूजिक के साथ मूव करते हैं. हम अगला ट्रैक आपके लिए शुरू एंड रेडी है.

that's a wrap on tonight's Dil Se Dallas with Snigdha. Tuesday nights ko thoda special banane ke liye. Thank you for spending time with me. Aaj humne hasi mazak mein wo choti choti baat याद की जो नॉर्मल लगती है, लेकिन एक्चुअली वही मोमेंट्स लाइफ को फन बनाती है. कभी बैटरी का पैनिक, कभी ऑनलाइन शॉपिंग का कंफ्यूजन, कभी बॉलीवुड के इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशंस, कभी म्यूजिक की मेमोरीज. हर चीज़ में एक छोटी सी स्टोरी होती है. तो अगली बार जब कोई रैंडम चीज़ हो और आपके दिमाग में आए, यार ये भी होता है क्या, बस याद रखना सच सच बताओ. हम सब थोड़े अजीब हैं और वही तो सबसे एंटरटेनिंग बात है. मैं स्निग्धा साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट्स फ्रॉम दिल से डैलिस ऑन फनीशा 104.9 FM. टेक केयर, कीप स्माइलिंग और म्यूजिक के साथ रही है. गुड नाइट एंड हियर आर द लास्ट टू ट्रैक्स फ्रॉम माई शो फॉर यू ऑल.

नमी है। एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वहीं रात रुक के। डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, जैसे वर्कआउट किया हो आपने। मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल, फन मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सिंपल बनाना चाहते हैं तो एक गोल्डन ट्रिक याद रखें। Declutter your desk, declutter your mind. सफाई सिर्फ घर की नहीं बल्कि thoughts और दिमाग की भी जरूरी है। So clean space, clean thoughts and clean vibes only. यही है Fun Asia Radio का अंदाज। सुनते रहिए हमें और इस next गाने को।

रात तो वक्त की पाबंद है, ढल जाएगी। देखना ये है कि संगीत की ये सवारी आपको कहाँ तक ले जाएगी। सुरों का सफर, आपका हम सफर। फन एशिया रेडियो 104.9 FM।

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी इज योर रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डालस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इन टू 104.9 एफएम फनीशा रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है। मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का फनीशा रेडियो के साथ।

चाहे कुछ भी ना करे बेटे उसमें भी स्वैग है, अरे घूट में स्वैग है, अरे घूट में स्वैग है।

0: ला दे, हर घूट में स्वैग है। हर घूट में स्वैग है। हर घूट में स्वैग है। हर घूट में स्वैग है।
1: अभी भी एक घूट बाकी है।

0: से छुटेगा और एक ही दिन में हम सबको खत्म कर देगा।
1: ए, बादराव, वाट लागले रे पोराचे।

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग। सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस, बिकॉज फन पिज्जा किचन जस्ट ड्रॉप्ड अ बोल्ड न्यू मेक्सिकन इंस्पायर्ड मेन्यू, एंड ट्रस्ट अस, दिस इज नॉट योर रेगुलर स्लाइस। Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanaa Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: Hi, this is Konkona Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
1: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
2: फिर नजरें मिलाती हूँ

0: और मैं फूल फेंक रहा हूं।
1: तुम?
0: अरे और फिर तुम जाने लगती हो और मजाक कर रहा था ना बिल्ली।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: You're earning well, but are you paying more taxes than you need to? If you are a business owner earning more than $200,000 annually, then this seminar is for you. Join AG FinTax for a free tax planning seminar and discover legal strategies that may help reduce your tax burden through smart planning. On July 10th, 6 p.m. onwards at Fun Pizza Kitchen, Frisco. And there's more. Attendees who register for the seminar will receive special gifts. Seats are limited, so reserve your spot today. AG FinTax. Plan smart, save more.
2: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: डाक टिकट जारी होगी।
1: लाइट्स माइक बॉलीवुड फनेजिया।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hello guys, this is me Kinjal Dave and you are listening and watching Fun Asia Radio.

0: शताब्दी में पक्की है ना महाभारत युद्ध के बाद। अब भोलेनाथ भैंस के रूप में थे जब भीम ने उनको आगे पकड़ लिया। अब उनका सर वो नेपाल में और घड़िया रह गया।
1: जय साहब
2: जय।
0: 7 किलोमीटर हो गया, 7 किलोमीटर।

0: तो दो ही घर अपना इलाका है, चाय पानी मौसम मिलेगा। बस इधर एक मिनट रुकेंगे, चल चल जाएगा रुस्तम, बस बस बस बस दो आराम से। हाँ एक मिनट, एक मिनट पकड़ेगा जरा, बस एक मिनट रुकेंगे यहाँ पे। अरे हम जानते हैं दुकान के मालिक को, बहुत मेहरबान है, पैसे नहीं लेंगे उससे। लीजिए।
1: मुफ्त में कोई मेहरबान नहीं होता, ये लड्डू के बदले ले जाने कौन जायदाद मांग लो तुम।
2: भाई
0: गलत बात है, चलो चलो चलो चलो
1: शिव शिव
0: जय भोलेनाथ। शाम को मिलता हूँ।

0: playing the best tunes in all of Dallas. Fun Asia Radio, 104.9 FM.
1: डैड को लगता है मैं गाने के साथ लिप्स मैच नहीं कर सकता. He's wrong. Watch me.

0: समझे हैं? हाँ?
1: बढ़िया।
2: कितने आदमी थे?
3: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनीशिया सुनता है।

0: दे दीजिए। बताइए कहाँ ले जाए?
1: पीएससी हेडक्वार्टर्स और फिर सीधा सरकारी अस्पताल।
2: कम से कम समय तो निकाला पटना एग्जाम में, वरना इनके पास तो टाइम ही नहीं होता किसी से मिलने के लिए।
1: ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं।

0: कौन है? कोई बड़ी हस्ती?
1: रूटीन ऑफिस वर्क।
0: रूटीन जब बदलता है तो सबसे पहले बीवियों को पता चलता है।
1: नहीं बता सकते यार,
0: मुझ पे भी भरोसा नहीं है।

0: के ऑफिसर्स का नहीं, उनकी बीवियों का बात करना जरूरी है।
1: The Magic 24/7 only on 104.9 FM.

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive media partner Funasia
1: Hi this is Deepika Padukone and you're listening to Funasia Radio

0: We need to show the world our power. अब हम डर के शांत नहीं बैठेंगे, करके शांत बैठेंगे.
1: Happy music, happy people. Only on Fun Asia Radio.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
4: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio,

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: आत्मा जी सटक सटक बम तेरा गुते खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसे, खाने में बस तू बटर खाए। कमोन बेबी किकेट किकेट, काटू तेरी टिकेट टिकेट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट, पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।
1: बड़ो लोग

सा ढंग तेरा, मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा, पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़, I am the baddest motherfucker.

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।

जान लेके किस्मत में बांटे हैं, राहों में काटे हैं।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: Que sera, sera. What will be the future's, not ours, to see. I have plenty more information all headed your way, and this part of our show is brought to you by AG Fintax, one of the fastest growing tax firms here in the United States, and they offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. They are trusted, efficient, and get you ready for the future. You can call them 469-942-9888, 469-942-9888, or visit agfintax.com, agfintax.com, and they will help you get your financial life in order. I'm taking your calls. 972-235-5555 is the number in the studios.
1: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
2: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury Brilliance Celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
3: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
4: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
5: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
6: Dude, life mein kuch aisa karna hai jisme main front page pe rahu.
7: Front page ka to pata nahi, but tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
6: Kaise?
7: Page 3 eatery?
6: No, not another restaurant again.
7: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
6: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
8: पेज 3 ईटरी, ईट सिप गॉसिप रिपीट।
9: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
10: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
11: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame, and clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens, and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings, and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Oora can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
13: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: Ab to karna hi padega, madam.
14: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
16: Arey sun, ye astrologer बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
17: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
18: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी। जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
19: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
20: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
21: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
20: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
21: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
22: द टेक्सास सुपर किंग्स आर हियर एंड द एक्शन इज एब्सोल्युटली हीटिंग अप। डोंट मिस अ सिंगल थ्रिलिंग मोमेंट। Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
23: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday,
22: all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.

0: We are rounding off this hour of the program. I just have a few seconds left, so thought I'll give you the number here in the studios, because I'm taking your calls right now. 972-235-5555, and it is 8 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Suno, shaadi ke liye jewelry bhi dekhni hai.
9: Haan, dekh lenge.
8: To fir India ki ticket kab karwaye?
9: अरे तुम्हें ज्वेलरी देखनी है या रिश्तेदारों को?
10: One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. वही timeless craftsmanship, वही unmatched elegance और वही stunning bridal collections. Now on Main Street in Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
11: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
12: हाँ.
11: घर रिलोकेट करनी है?
12: हाँ.
11: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
12: हाँ भाई हाँ.
11: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
13: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
14: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
15: Excuse me. It's called being loyal.
14: It's called being predictable.
15: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
14: And what's so special at Neon Cactus?
15: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
14: Not bad.
15: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
14: Okay, this I didn't expect from you.
15: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
16: Is शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
17: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव.
18: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
19: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी.
2: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
18: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
2: कहाँ?
3: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइब एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
18: फूडिस्तान इन ऑबरी. Everything desi, one place, one vibe.
5: ये तारा वो तारा हर तारा.
18: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है. तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
12: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
20: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
21: लिया.
20: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
21: नहीं आया.
20: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमैरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
22: Visit www.sanadainc.com today.
23: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.
0: Thank you very much for joining us in this hour of the program. Do receive my very warm welcome to the show. We hit 100 yesterday, right on the button. And we might just do that again today. But yesterday was our first triple-digit temperature day. And today, maybe tomorrow also, or if not 100, at least very, very close to that. But it's going to be cooler over the weekend. And cooler means mid-90s these days. Welcome to the show. Number in the studios, and I'm opening the lines for you all, 972-235-5555.

माइंड तू करे ब्लो, बाकी करे शाइन तू करे ग्लो। जीन्स डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो। बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज तू है सैवेज बेबी तू है रॉ। मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ। Baby let's go right now, देखो मुझे वेट ना इतने कराओ। लक तेरा लीन बात तेरी मीन, टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव।

0: Getting ready to round off my show for this morning. Me Too will be coming on right after me. You'll continue listening to her show. And congratulations to all those who got all these giveaways during my show. You all are so good with your answers and so quick. Thank you all very much for letting me into your cars and helping you drive to your destination. From 7 to 10 every morning, your morning drive time special right here on the Fun Asia Network. For those of you who'd like to reach me directly after the show now, 214-675-1754. 214-675-1754. And it is 10 o'clock.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: सुनो कल बहुत काम है पहले ग्रोसरी फिर पूजा का सामान गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे
4: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
3: कहाँ
5: फूडिस्तान इन ऑबरी फ्रेश ग्रोसरी हलाल मीट पूजा एसेंशियल्स लाइव पानी पूरी फ्रेश गन्ने का जूस बेकरी आइटम्स प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी एंड इनसाइड फूडिस्तान एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डीवाइव एंड अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर
6: फूडिस्तान इन ऑबरी एवरीथिंग देसी वन प्लेस One vibe. Are you tired of the same arguments, reactions, and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents, and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques, and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
8: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
9: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
8: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
11: इन प्लेनो एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स मेंटेनेंस रिपेयर्स ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ कंपटीटर कोर्ट मैच भी कॉल 469-298-3870 पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
7: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा
12: प्लीज डोंट से योर यूजुअल प्लेस अगेन आई एम टायर्ड ऑफ द सेम फूड
13: एक्सक्यूज मी इट्स कॉल्ड बीइंग लॉयल
12: इट्स कॉल्ड बीइंग प्रेडिक्टेबल
13: ओके देन Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
12: And what's so special at Neon Cactus?
13: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
12: Not bad.
13: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
12: Okay, this I didn't expect from you.
13: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
14: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली
15: हाँ बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है
14: सेम टीचर सेम स्कूल फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है
15: डिफरेंस स्कूल का नहीं है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है
6: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
16: जीनी हुकम मेरे आका हम आज पार्टी के मूड में हैं एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो
17: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं
18: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं
17: नो प्रॉब्लम आका लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए
18: और एंटरटेनमेंट
17: मूवी नाइट बेली डांसिंग नाइट्स प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है
18: वाह जीनी ये जगह है या कोई जादू
17: जादू नहीं मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे मिरेकल्स हैपन इन मिराज
19: समझ नहीं आ रही टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ
20: इट्स लॉसन
19: किससे बात करूँ सारी जानकारी कौन देगा
20: इट्स लॉसन
19: डैडी व्हाट इज द लॉ
21: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458 द ट्रैवल एक्सपर्ट्स लॉसन ट्रैवल
0: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
20: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Fun Asia Radio.

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो
1: 104.9 FM. ऑलराइट, फन एशिया रेडियो 104.9 FM पे मेरे शो पे ट्यून इन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. और अभी तक आप सुन रहे थे शबनम मुडगिल को. शबनम जी ब्रिंग्स एन अमेजिंग मॉर्निंग ड्राइव टाइम शो फॉर ऑल ऑफ अस, इसमें कोई शक नहीं है. द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ऑल द सॉन्ग्स दैट शी प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस इज जस्ट अमेजिंग. दैट इज वॉट वी नीड फॉर आर मॉर्निंग एनर्जी, राइट? और इसीलिए यहाँ से जो आगे बढ़ना है मुझे, तो मैंने सोचा आज वही एनर्जेटिक जोन में रहते हैं. और मिड वीक है, द हम्प डे एज दे कॉल इट, राइटली सो, क्योंकि थोड़े सी धक्के की जरूरत होती है आज. दिस इज गपशप गली.

80 स्कोर देयर लेडीज एंड जेंटलमैन. और इंडियन आइडल की मैं बहुत बड़ी यू नो फैन हूँ. और इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट्स की, नॉट द फॉर्मैट एक्चुअली, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं इस बार का सीजन. बट यस, 80

स्कोर देयर लेडीज एंड जेंटलमैन. और इंडियन आइडल की मैं बहुत बड़ी यू नो फैन हूँ, और इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट्स की, नॉट द फॉर्मैट एक्चुअली, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा खींच रहे हैं इस बार का सीजन. बट येस, असीस कौर वॉज देयर एंड इट वॉज सो अमेजिंग टू लिसन टू हर. डिडंट नो दैट शी इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इंडियन आइडल एक्चुअली. अब क्या है ना कि जो हमारा दिन होता है, जो हमारी जो हम गुजरते हैं, वो भी हमारा यू नो ए पार्ट ऑफ इट spills on the air as well. So yes, we would like for all of you to share your day, some experience, anything that is out of the ordinary, please do share with us. क्यों यार, और extraordinary क्यों, जो regular है वो भी तो बहुत अच्छा है यार, वो भी share करें. क्योंकि यहाँ पर लेकर जाने वाली हूँ एक regular गाने पर जो मैं अपने शो पर काफ़ी बार play करती रहती हूँ. The fact being, आर डी बर्मन की बहुत बड़ी fan हूँ, और इसीलिए जब आर डी बर्मन का ये गाना मेरे जहन में आता है तो आई डू नॉट हेजिटेट टू प्ले इट फॉर ऑल ऑफ यू. एंड आई थॉट इट इज आर डी बर्मन, लेट मी चेक, इट हैज़ द फील ऑफ आर डी बर्मन.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: ये तारा वो तारा हर तारा।
2: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
4: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
5: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
6: लिया।
5: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
6: नहीं आया।
5: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
7: Visit www.senadainc.com today.
8: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
9: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
2: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
9: वेट, इतना सब और प्राइस?
2: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
10: मैं हीरो।
11: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
12: Calculating route, rerouting.
11: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है।
12: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
11: क्यों?
12: क्योंकि Fort Worth, Keller, Haslett और Hearst के smart लोग जानते हैं। Daily groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
11: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
7: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
12: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
13: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
14: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
13: सच में? सब संभालेंगे।
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
15: Tracks that put you on the right track.

कुछ चीजों का मजा ना रूबरू होता है, यानी कि आमने सामने जब देखते हो तो मजा आता है. नहीं, ऐसा ही कुछ श्री कृष्णा का हाल है, श्री कृष्णा ज्वेल्स, जहां पर अगर मैं कितना भी आपको बता दूं कि बहुत खूबसूरत डिजाइन है, क्लासिक गोल्ड डिजाइन भी मिलेंगे आपको और डायमंड्स में भी, इंट्रिकेट कुंदन और स्टनिंग पोल की कलेक्शन है, वो तब तक आपको मजा नहीं आ सकता जब तक आप वो खुद अपनी आंखों से देख नहीं लेते हो. सो फॉर द नेक्स्ट वेरी स्पेशल ओकेजन दैट यू वॉन्ट टू ट्रीट yourself for Shri Krishna Jewelers ka naam aapke dimag mein hona hi chahiye. It is their new location on 13145 suite 220 Main Street in Frisco that you have to be at and figure it out for yourself. 1967 se inki craftsmanship ke diwane hai log, to zarur jaiyega and find it out for yourself. Rubaru Shri Krishna Jewels zarur yaad rakhega. Also यहाँ पर ये जो मैं गाना लगाने वाली हूँ ना, ये गाना आप थोड़ा सा और ज़्यादा फील करोगे अगर आप गुल्लक 5 देखते हो, द सीज़न 5. द सीजन्स, द नंबर ऑफ सीज़न एक्चुअली टेल्स द पॉपुलैरिटी ऑफ अ सीरीज़ ऑल्सो. तो आप समझ ही सकते हैं कि गुल्लक अगर आपने नहीं देखा, किसी से मैं तो बात कर रही थी हाल ही में एंड दे हैडन्ट वॉच गुल्लक एट ऑल, और अगर आपने भी नहीं देखा है तो ये एक यू नो मिडिल क्लास फैमिली की एक बहुत ही प्यारी सी कहानी that they show and little things that become an episode and it's beautiful. It's a wonderful experience to watch this one. To agar nahi dekhi to zarur dekhein. It is Gullak, ladies and gentlemen. Usi ka ye bahut pyara sa ek romantic gana aap logon ke liye. This is Gupshup Gali with me,

थैंक यू। इफ़ यू एंजॉय दिस सॉन्ग, जी हाँ, क्रेडिट लेना चाहती हूँ कि मैंने इंट्रोड्यूस किया आपकी जिंदगी में इस गाने को। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू गपशप गली विथ मी टू। दिस पार्ट ऑफ माय शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटैक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द US। तो अगर आपको इनकी मदद चाहिए ना इन टर्म्स ऑफ टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग, जो भी सर्विस आपको चाहिए इनकी, जरूर गेट इन टच विद देम, agfintax.com। और इनकी टीम, अनिल ग्रांधी, मिस्टर अनिल ग्रांधी and his entire team is always a phone call away to give you the service that you are seeking. Chahe wo business advisory and CFO service ki baat ho, ya customized tax and business solutions ki baat ho, expert tax filing services ki baat ho, dynamic bookkeeping ki baat ho, you know, R&D tax credits se lekar estate planning and wealth management tak ki baat ho, company formation ki baat ho ya Indian compliance services ki baat ho, bottom line financial and tax services for the dynamic business owners, ye aapke liye hai. Aur yaad rakhein 4699429888 is that number. Once again, ajfintax.com is the website. And if you are a business owner earning more than $200,000 annually, then a seminar that you can totally be part of, join AG Fintax for a free tax planning seminar and discover legal strategies that may help reduce your tax burden through smart planning. तो सवाल ये उठता है कि ये है कब? July 10th को ये होने वाला है. And remember, it is at Fun Pizza Kitchen, ladies and gentlemen, in Frisco. And attendees who register for the seminar will receive a special gift from them. Seats are limited, तो अपना जो seat है वो जरूर आज ही आप reserve कर लीजिएगा. agfintax.com is the website and you will find out about all the seminar details right there. And once again, July 10th, mark it on your calendars.

That's a different version, a different singer that you just heard. And I'm trying to find out the name of this singer. It is Prashant Pandey. और इनका ये version भी मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत sweet लगा. और मुझे लगता है कि अपने एक mundane दिन को थोड़ा सा special बनाने के लिए कुछ offbeat करना चाहिए हमेशा. To get the day really interesting in your mind. And वो हो सकता है तभी अगर आप कुछ कोशिश करते हो. मेरी तरफ से कोशिश ये रहती है कि कुछ हटके गाने ला आने की कोशिश करती हूँ इस सेगमेंट में, हट की कुछ आवाज या कुछ गाने जैसे कि ये. आई होप यू एंजॉय दिस नेक्स्ट वन एज वेल. दिस इज गपशप गली विद मी टू.

0: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338। myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
1: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
2: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
3: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
4: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
5: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
6: हाँ।
5: घर रिलोकेट करनी है?
6: हाँ।
5: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
6: हाँ भाई हाँ।
5: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
7: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
9: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर?
10: उमर ख्वाजा।
11: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833 गेट उमर और विजिट attorneyumar.com।

0: is coming your way.
1: Vishal and Shekhar.
2: Here we go.
0: That's right. Vishal and Shekhar Live. Get ready for an electrifying evening filled with songs you've danced to, celebrated with, and fallen in love listening to. Sunday, July 12th at the Curtis Culville Center in Garland. Tickets on sale now. CashPatelProductions.com. The Super Hit Tour with Vishal and Shekhar.
3: Use code FUNASIA and get 30% discount.
4: Swag se karenge sabka swagat.
5: डालस की धड़कन 104.9 FM फनेशिया रेडियो.
6: इट इज 8th ऑफ जुलाई लेडीज एंड जेंटलमैन. गपशप गली विथ मीठू पे आपका स्वागत है. घड़ी मिला लीजिए, इट इज 43 मिनट्स पास 10. और इस वक्त हम आपके लिए लेकर आते हैं दिस डे इन सिनेमा हिस्ट्री. और इसमें होता है कि जो फिल्में आज के दिन रिलीज हुई हैं उनके गाने सुनवा देते हैं हम, और थोड़ी बहुत बातें भी कर लेते हैं उस फिल्म के बारे में. और यहाँ पे जो बात करना चाहती हूँ, इट इज टू डू विथ हॉरिबल बॉसेस. जी नहीं, ये कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं बल्कि हॉलीवुड फिल्म है जो आज के दिन रिलीज हुई थी इन द 2011. और ये वो फिल्म है विच इज इन द जॉनरा क्राइम ब्लैक कॉमेडी. मतलब क्राइम भी है, कॉमेडी भी है और डार्क भी है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे जो तीन लीड कैरेक्टर्स हैं ये अपने बॉसेस से इतने परेशान थे, ओवरबेयरिंग जो बॉसेस, उनके अब्यूसिव जो बॉसेस थे, उनका मर्डर का प्लान बनाते हैं. एंड ऑल द कॉमेडी दैट कम्स आउट ऑफ इट, येट इट इज अ क्राइम थ्रिलर फॉर ऑल ऑफ यू टू वॉच ऑल्सो इफ यू हैवंट. क्योंकि ये सेट गॉर्डन की जो ये डायरेक्ट टोरियल थी, ये सुपर हिट थी. तो अगर हॉलीवुड में वो था तो बॉलीवुड में था मर्डर टू. लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट आई वांट टू टेक अ मोमेंट टू टॉक अबाउट, जो आज ही के दिन 2011 में ही रिलीज हुई थी. एंड इट हैड द मर्डर प्लॉट एज वेल. इमरान हाशमी एंड जैकलिन फर्नांडिस इन दिस साइकोलॉजिकल थ्रिलर विच वॉज ऑल्सो ए ब्लॉक बस्टर जस्ट लाइक हॉरिबल बॉसेस इन हॉलीवुड. Let's get you this Murder 2 ka gaana for all of you right here, jo aaj ke din release hui thi.

दिस इज गपशप गली विथ मी टू 8th of July इट इज टूडे और 8 जुलाई को गुजरने में टाइम नहीं लगेगा इसीलिए वी वॉन्ट टू मेक इट वेरी म्यूजिकल फॉर यू एंड ऑल्सो इन्फॉर्मेटिव और इसी के चलते आपको याद दिलाना चाहती हूँ AG फिनटैक्स के तरफ से आपके लिए एक सेमिनार फ्री सेमिनार प्लान किया गया है दिस इज टैक्स प्लानिंग सेमिनार इफ यू वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इट यू नीड टू गो एंड रजिस्टर राइट अवे ऑन agfintax.com इफ यू आर ए बिजनेस ओनर अर्निंग मोर देन $200,000 एनुअली ये सेमिनार समझे सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए है जरूर जाएं जुलाई 10th को है इस फ्राइडे को है एट फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को एंड यस यू कैन डिस्कवर लीगल स्ट्रैटेजीज दैट मे हेल्प रिड्यूस योर टैक्स बर्डन थ्रू स्मार्ट प्लानिंग सो स्मार्ट प्लानिंग के लिए और सही रास्ते के लिए आप जरूर इस फ्री सेमिनार को अटेंड करें एट फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को लेडीज एंड जेंटलमैन एंड अटेंडीज हु रजिस्टर फॉर द सेमिनार इनको एक फ्री गिफ्ट भी मिलेगा फ्री और गिफ्ट साथ में नहीं जाता एक्चुअली आई शुड से ईदर फ्री समथिंग और स्पेशल गिफ्ट आई शुड से राइट तो ठीक है यही बोलती हूँ कि भाई स्पेशल गिफ्ट मिलेगा AG फिनटैक्स के तरफ से थैंक्स टू मिस्टर अनिल गांधी एंड हिज टीम फॉर ब्रिंगिंग दिस फ्री सेमिनार टू द कम्युनिटी सीट्स लिमिटेड हैं और इसीलिए आज ही जाके अपने स्पॉट्स रिजर्व कर लें फिलहाल मैं रिजर्व करने वाली हूँ अपनी एक एक खास मेमोरी जो मेरी रिजर्वड है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ फिल्म का नाम है चमत्कार जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी 1992 इट डिड एवरेज एट द बॉक्स ऑफिस डजंट मैटर कि फिल्म कैसी चली थी मेरे लिए एक मेमोरी है 1992 से दैट इज सो प्रोमिनेंट कि एवरीथिंग एल्स सरपासेस और वो ये है कि हम कोटा गए थे एंड वी वर टू सेलिब्रेट अ यंग एडिशन इन आवर फैमिली यू नो तो हम अपने एक ब्रदर की बेटी हुई थी उनको सेलिब्रेट करने के उसका मेरे ख्याल से फर्स्ट बर्थडे था वो सेलिब्रेट करने के लिए गए थे एंड द बेबी एंड आई थिंक दैट वाज द ईयर दिस मूवी रिलीज और ये गाना जो मैं जो प्ले करने वाली हूँ बहुत चल रहा था उर्मिला मातोंडकर और साथ में शाहरुख खान इन दिस वन एंड शाहरुख खान को बहुत परेशान किया जा रहा था इस गाने में जस्ट FYI तो ये गाना जब भी वी यूज टू प्ले फॉर प्ले नहीं सिंग फॉर दैट बेबी वुड स्टॉप क्राइंग एक्चुअली जब भी वो थोड़ी सी परेशान होती थी या रो रही होती थी तो हम सब ना बच्चे कच्चे मिलके हम उनके लिए वो गाना गाने लगते थे बिच्छू ओ बिच्छू आई डोंट नो शी प्रोबेबली लव द रिदम इन इट और द एक्सप्रेशंस वी हैड ऑन आवर फेसेस आई हैव नो आइडिया लेकिन वो रोते रोते हंस देती थी यार एंड दैट्स द मेमोरी ऑफ चमत्कार दैट आई हैव स्टारिंग ऑल्सो नसीरुद्दीन शाह इन दिस वन

Alright, I have just enough time to play another very beautiful song. Another song actually, I should say. Ye gana popular hote hue bhi mere dil ke utne kareeb nahi, other than the memory that I have from this film about this song that I was just talking about. Lekin ye jo gana hai na, ye mere bahut dil ke kareeb hai, and I'm sure many others as well. So without any further ado, let's take you to this next track. जो आज ही के दिन ये फिल्म रिलीज हुई थी, उसी का ये गाना मैं लेकर आना चाहती हूँ. इट इज 8th of July व्हेन दिस फिल्म रिलीज, एंड आई थिंक इट वाज 1983. आई विल डेफिनेटली कंफर्म एंड गेट बैक टू इट, बट आप एंजॉय करो सदमा फिल्म का ये गाना, जिसके लिए नेशनल अवार्ड मिला था फॉर द तमिल वर्जन ऑफ दिस फिल्म, कमल हासन को मिला था. एंड वॉट ए फिल्म दिस वॉज, और एंड वॉट अ सॉन्ग दिस वन वॉज, रिटन बाय गुलजार साहब एंड of course Ilai Raja at the helm of it, and Suresh Vadkar ki awaaz, a masterpiece that failed to impress the audience at that time. Critically acclaimed it is, but didn't work at the box office.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: I've been researching retirement planning.
7: Oh, really? Where?
6: Google, YouTube, a guy on TikTok.
7: Or you could just talk to WealthTactic.
6: What's the difference?
7: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
8: WealthTactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
9: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
10: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
11: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
12: You're earning well, but are you paying more taxes than you need to? If you are a business owner earning more than $200,000 annually, then this seminar is for you. Join AG FinTax for a free tax planning seminar and discover legal strategies that may help reduce your tax burden through smart planning. On July 10th, 6 p.m. onwards at Fun Pizza Kitchen, Frisco. And there's more. Attendees who register for the seminar will receive special gifts. Seats are limited, so reserve your spot today. AG FinTax. Plan smart, save more.
13: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
14: Matlab?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
14: Ab to karna hi padega, madam.
16: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
18: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
19: Tracks that put you on the right track.

सुचित्रा's request here and सुचित्रा thank you for that contribution. मैंने ये गाना जरूर सुना होगा क्योंकि मैंने ये वेब सीरीज देखी हुई है, थ्रिलर, एक क्राइम थ्रिलर दैट इट वॉज. एंड वेन आई थिंक ऑलमोस्ट कब रिलीज हुआ था ये, कुछ साल पहले ही हुआ था, बट आई एम फॉरगेटिंग द स्टोरी लाइन, एवरीथिंग आई एम फॉरगेटिंग अबाउट दिस वन. बट येस, क्रिएटेड बाय सुधीर मिश्रा, और ये इस सीरीज का गाना था. सीरीज में भी आजकल इतने बढ़िया बढ़िया गाने होते हैं, और सीरीज ही यार कितने अच्छे आजकल बनने लगे हैं. एंड इट जस्ट फिट्स इन आर रूटीन, यू नो, कि एक घंटे का होता है या 45 मिनट्स का एक एक एपिसोड होता है, तो मतलब पूरे फिल्म देखने के लिए आपको बैठना नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत आप वक्त निकाल ही सकते हो टू सॉर्ट ऑफ रिफ्रेश योर सेल्फ विद अ वेब सीरीज इफ यू वॉन्ट ऑफ योर चॉइस. तो इससे बेहतर क्या ही हो सकता है कि आप हमें बताओ यार कि आप क्या वेब सीरीज देख रहे हो आजकल. आई वुड रियली लव टू नो. दिस इज गपशप गली विथ मी टू एंड आई विल टेल यू वॉट आई जस्ट फिनिश्ड. ऑलराइट, तब तक ये गाना फिनिश करते हैं जो दो दिन पहले रिलीज हुआ है एंड 2.2 मिलियन व्यूज ऑन यूट्यूब ऑलरेडी. आई एम वेरी क्यूरियस दिस सचेत परंपरा सॉन्ग दैट यू गोना लिसन टू.

And it is, ladies and gentlemen, this new song composed by Sachet Parampara. और कितने सारे न्यू वेब सीरीज आते रहते हैं. बस जानना चाहती हूँ क्या देख रहे हैं आप लोग आजकल. थोड़ा सजेस्ट करें, हमें भी बताएं कि क्या इन्जॉय कर रहे हो. ये बोलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि देख हम बहुत कुछ रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली जो इन्जॉय कर रहे हैं वो बताइएगा. थोड़ा मतलब लोगों तक बातें पहुँचाते हैं. एंड लेट्स फाइंड आउट वॉट यू आर वॉचिंग राइट नाउ दैट यू आर इन्जॉइंग, यू नो, सो दैट वी कैन ऑल्सो ज्वाइन द बैंडवैगन. वंस अगेन, दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

0: इंजॉय कर रहे हैं वो बताइएगा, थोड़ा मतलब लोगों तक बातें पहुंचाते हैं. एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट यू आर वॉचिंग राइट नाउ दैट यू आर इंजॉयिंग, यू नो, सो दैट वी कैन ऑल्सो ज्वाइन द बैंड वैगन. वंस अगेन, दिस इज गपशप गली विथ मी टू. मैंने अभी हाल ही में फिनिश किया मेड इन इंडिया द टाइटन स्टोरी, एंड वॉट एन अमेजिंग अमेजिंग सीरीज दैट वॉज. मजा आ गया यार देख के सीरीज ये, और 6 एपिसोड्स का. एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दीज सीरीज कि ये खींचते नहीं है, बिल्कुल क्रिस्प रखते हैं, क्योंकि आजकल जनता में पेशेंस नहीं है, वो आगे बढ़ जाएगी अगर आपने लंबा खींचा तो, है ना. तो इसीलिए ये बहुत ही क्रिस्प बनाई है इन्होंने कहानी, एंड आई लव्ड इट एब्सोल्युटली. जिम सारा एट हिज बेस्ट, एंड ऑफकोर्स नसीरुद्दीन शाह एज जीआरडी टाटा, मतलब कमाल कमाल है, मतलब रिजेम्बलेंस है, क्या ही कहा जाए. यू हैव टू वॉच दिस वन. एंड द अदर इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई फाउंड आउट अबाउट द म्यूजिक ऑफ द टाइटन ad that we had heard for the longest time, wo jo Wolfgang Mozart's symphony number 25 in G minor that was being played, jo ki Suresh Mallick jo advertising legend hai unhone create kiya tha 1980s mein, and then AR Rahman also over the period of time kafi transitions hue unme se AR Rahman ka bhi ek version tha. All right, I'm going to take this call on air and find out kya dekh rahe hain aajkal log. Yaar, you are live on air, bataiye.
1: Yeah, I'm looking at the series of Vasudha and Ganga Mai Ki Bikiya.
0: Okay, all right, thank you.
1: So really good movie, and jaane anjaane mil rahe.
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन हियर. 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो, यू लाइव ऑन एयर.
2: हाय
0: हाय.
2: These days we've been watching, we are very dedicated to Indian Idol.
0: हाँ हाँ. Okay, me too.
2: मैं तो सबको सजेस्ट करूँ कि इंडियन आइडल देखो इफ यू आर म्यूजिक फैन.
0: यस, अमेजिंग अमेजिंग सिंगर्स. आई हैव टू से कि वो जो पुराने स्टार्स को लेकर आए ना, पुराने जो कंटेस्टेंट्स को लेकर आए ना, ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हुई, बिकॉज दैट लेड टू यू नो एलिमिनेशन ऑफ कपल ऑफ रियली वेरी टैलेंटेड कंटेस्टेंट्स ऑफ दिस ईयर. तो मुझे ये थोड़ा सा ना ये थोड़ा सा इनसे कंप्लेन है, कभी करूंगी कंप्लेन उनको. All right, thank you so much for your call. And yes, Made in India is also one of the things that you should put on your list, ladies and gentlemen. My very strong recommendation to you. You are listening to Funnyja Radio 104.9 FM. Kuch suggestions humne jo logon ke liye, hopefully it help you, yaar.

वंस अगेन दिस इज गपशप गली विथ मीठो. हमारी गपशप कंटिन्यूड हो रही है अराउंड वेब सीरीज. लेडीज एंड जेंटलमैन, क्या देख रहे हैं आजकल, ये सवाल मेरा आपसे था. मुझे ये गाने के दौरान एक जो कॉल मिला, इट वॉज अबाउट प्रीतम एंड पेड्रो. नाउ सुजाता सेड शी स्टार्टेड वॉचिंग इट एंड शी इज थॉरली इंजॉइंग इट एंड इट इज प्रीतम एंड पेड्रो, जिसमें कि मैं बताती हूँ आपको, अब भी बताती हूँ कौन कौन है इसमें. अरशद वारसी तो आई नो वेरी वेल, लेकिन इसके अलावा कौन है वो मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ. वीर हिरानी, दैट इज़ राजकुमार हिरानी सन, एंड इट इज़ हिज फोरे इनटू द डिजिटल स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड दैट्स राजकुमार हिरानी. और प्रीतम एंड पेड्रो जो कि एक कॉमेडी ड्रामा है, दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ यू टू वॉच. A good choice there, ladies and gentlemen. जब हमें आपसे endorsement मिलती है ना, तो थोड़ा सा confidence ज़्यादा आता है, क्योंकि क्या है ना कि आजकल तो reviews भी खरीदे जा सकते हैं. इसीलिए जो critics review होते हैं ना, I mean all due respect to the ones who truthfully do it, but then there are the ones जो कि पैसे से भी खरीदा जा सकता है. We are aware of that. So that's the sad part. लेकिन yes, there are few other series that are coming very very soon. एक उनमें से अक्षय खन्ना और सनी देओल की जो ये ग्रिटी कोर्टरूम थ्रिलर होने वाली है, नेटफ्लिक्स पे आने वाली है 10th of July को. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट विल बी एक्सलेंट वॉच फॉर द वीकेंड. उसके अलावा एक हाई स्टेक्स बॉक्सिंग ड्रामा एंड मर्डर मिस्ट्री बेस्ड इन हरियाणा, दैट इज गोइंग टू कम वेरी सून. दिव्येंदु शर्मा ये हैं इसके स्टार, मुझे बहुत पसंद है दिव्येंदु शर्मा एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वन एज वेल. फिर एक थ्रिलिंग कॉरपोरेट सक्सेशन ड्रामा जो कि आप देख सकते the Vendetta series, and that is scheduled to release on Netflix also, called Family Business. This is the Indian version, I believe, of that. Correct me if I'm wrong, okay? Iske alawa jo maine aapse kaha na, wo bhi zarur dekhiyega. I mean, it's really good. Made in India, the Titan story, and ye jo hai na, it basically showcases Titan's transformation of that watch from a purely utilitarian object into a celebration fashion accessory. Unke jo ups and downs उनके हुए, जो रोड ब्लॉक्स उनके आए, वो मैसिव डोमेस्टिक सक्सेस के बाद जब दे वांटेड टू फोरे इनटू द यूरोपियन मार्केट, वो किस तरह से फंबल किया और कोलैप्स के ब्रिंक में थे, ऑल ऑफ दैट यू नो. सो इट विल बी वंडरफुल वॉच फॉर ऑल ऑफ यू. इतना ज़्यादा, इतना मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं वो पेड प्रमोशन कर रही हूँ फॉर मेड इन इंडिया द टाइटन स्टोरी. Well, it is good. Talking about Made in India, yaar, wo gana sune kya? Alisha Chinoy ka, Let's Do It, ladies and gentlemen. I had no intention of playing that, but why not, I say. Kya kehte hai? Sune, let's go for it right now, right here on Fun Asia Radio 104.9 FM.

0: एंड दिस इज लेडीज एंड जेंटलमैन गपशप गली विद मी टू ड्रीम होम मॉर्गेज के बारे में जल्दी से बताना चाहती हूँ, फिर एक कॉलर को लाइव ऑन एयर लेना चाहती हूँ. तो अगर आप सुन रहे हैं ना मिस्टर रवि, प्लीज स्टे ऑनलाइन. ओ लेट मी, ओ ही जस्ट ड्रॉप्ड इट. ओके, हो सकता है उन्हीं से बात होगी. रवि आप मेरे साथ हो? बिल्कुल. एक मिनट के लिए आप जस्ट होल्ड करें, बिकॉज आई रियली वॉन्ट पीपल टू नो अबाउट ड्रीम होम मॉर्गेज. आफ्टर ऑल क्लोज टू 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इनके पास, और आपके नए घर के लिए अगर आप वो फाइनेंस जो चाहते हैं वो अगर आप फुलफिल करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ लोन्स एंड एवरीथिंग, रीफाइनेंसिंग, ऑल ऑफ दैट दैट ड्रीम होम मॉर्गेज डज सो एफर्टलेसली फॉर यू, आपके लिए टेलर मेड प्रोग्राम लेकर आते हैं एंड इट्स गोना बी एब्सोल्युटली स्ट्रेस फ्री फॉर यू. तो जरूर याद रखें, लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट एंड देयर एक्सपीरियंस टीम इज कमिटेड टू फाइंडिंग द राइट लोन ऑप्शंस फॉर यू. तो आप अगर फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, रीफाइनेंस फॉर एनीथिंग, ड्रीम होम मॉर्गेज इज द वे टू गो. ड्रीम होम मॉर्गेज डॉट कॉम इज द वेबसाइट. 972-245-5626 इज द नंबर. और हर मंडे को 10:30 बजे मेरे शो पर इन द मॉर्निंग्स यू गेट टू लिसन टू मिस्टर हुसैन पंचवानी फ्रॉम ड्रीम होम मॉर्गेज, और बहुत सारी टिप्स एंड एडवाइसेस लेकर आते हैं. वेल टॉकिंग अबाउट ड्रीम, एक जो एसेंस था मेड इन इंडिया, ये जो वेब सीरीज की बात कर रही थी थोड़ी देर पहले, इट्स बिकम ए कंप्लीट सेगमेंट अबाउट मेड इन इंडिया द टाइटन स्टोरी. बट इंडीड इट इज दैट गुड अ वेब सीरीज दैट इट कैन टेक अप माई सेगमेंट एज वेल. और ड्रीम्स, इम्पॉसिबल ड्रीम्स भी पूरे होते हैं, ये एक एसेंस दैट इट ब्रॉट ऑल्सो. और रवि आपने अपना एक बहुत ही पर्सनल कनेक्शन टू टाटाज जो शेयर किया, आई वॉन्टेड माई लिसनर्स टू ऑल्सो नो दैट, हाउ अमेजिंग.
1: Sure, me too. So, first of all, I completely agree with your review of the Titan series. It is truly amazing and a must watch. Mm-hmm. And as I was telling you, for me, it hit me more personally because before I came to US, I actually worked for Tata's in Bombay for 3.5 years. Mm-hmm. And, you know, when I shared with my management that I was interested in going to US for higher studies. Hmm. They were very supportive of that, and the director of our lab actually facilitated an opportunity for me to try to avail JRD Tata Endowment Loan Scholarship. Wow. Because of which I was able to, you know, go through the whole process, get visa without any issue and all that as well. Hmm. And the fun fact is that for that scholarship, of course, I had to go through an interview, and that interview was held in Bombay House, which is pictured so many times in this series.
0: Yes.
1: So I have personally been there for the interview, and I have fond memories of all that.
0: That connection is just amazing. When you watch the series, I'm sure it was a nostalgic trip for you down the lane, right?
1: Absolutely. Several times eyes were moistened, you know.
0: Teary-eyed you were. How amazing. Yeah. Thank you so much, Ravi. And that connection, I'll always remember that a listener shared on my show. Thank you. And this is what Gupshup is all about. Bringing your stories in. टॉकिंग अबाउट बॉम्बे हाउस, आप देखिएगा आप समझेंगे क्या कह रहे थे गुलाटी साहब हमारे, रवि गुलाटी जो ऑन एयर आए थे. बाकी रही बात गानों की, तो बॉम्बे के इस गाने पे चलें, मौका भी है दस्तूर भी.

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
1: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
2: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
1: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
4: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
5: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
4: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
3: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
6: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
3: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
7: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
8: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
7: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
8: वेट, व्हाट?
3: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
9: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
3: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
10: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal, call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
11: भूख लगी
12: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
13: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
3: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
14: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At ShopCompareInsure.com, we're not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
9: Visit ShopCompareInsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's ShopCompareInsure.com, your 360 insurance solution.
15: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.
16: Tracks that put you on the right track.

डालिस के सारे शेर और शेरनी रेडी हो जाएं क्योंकि DFW हैज रीच दैट 100 डिग्रीज मार्क. कल हम पहुंचे हैं पहली बार इस साल एंड दिस हीट विल कंटिन्यू इन द कमिंग डेज. इससे कोई रिस्पाइट नहीं मिलने वाला है, इसीलिए मैं कह रही हूँ सारे हमारे डालिस के शेर और शेरनियाँ जाग उठें क्योंकि अब लड़ने का मौका है. मौका तो नहीं, लड़ने का वक्त आ चुका है मौसम से. वेल ड्यू टू डे टाइम हीटिंग एंड लेफ्ट ओवर यू नो दोज residual heat from yesterday that we have, क्योंकि याद रखिएगा कि हमारी ये जो सीमेंट जंगल है उसके कारण बहुत सारा हीट जो रिटेन होता है उसके कारण भी गर्मी बढ़ती है. एंड इट इज़ अ प्रूवन फैक्ट. जस्ट FYI लेडीज एंड जेंटलमैन, याद रखिए कि आने वाले दिनों में भी ऐसी गर्मी होने वाली है. लेट्स से टिल सैटरडे आई बिलीव. सैटरडे को फ्यू डिग्रीज कम द टेम्परेचर इज गोइंग टू बी. एंड दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ यू टू नो कि आज भी कुछ रेन चांसेस हैं, बहुत ही स्लाइट रेन चांसेस हैं. एंड दैट्स मेनली लेट्स सी फ्यू एरियाज ईस्ट ऑफ द मेट्रोप्लेक्स दैट माइट हैव द पोटेंशियल ऑफ एन आइसोलेटेड स्टॉर्म टूडे. वेल रेन चांसेस बहुत स्लिम है और बहुत कम लोगों को ही नसीब होगा. हाउएवर एवरी वन विल एक्सपीरियंस द हीट डेफिनेटली, दैट इज गोइंग टू बी यूनैनिमसली फेल्ट. और हाई मॉइस्चर कॉन्टेंट के कारण हमारे जो हीट इंडेक्स है वो होगा 100 से 105 डिग्रीज बाय द आफ्टरनून. द रेगुलर ड्रिल दैट यू हैव टू मेक श्योर यू डू, पानी खूब से पीजिए, सनस्क्रीन लगाइए, बाहर जा रहे हो तो टोपी शोपी पहन के जाइए. मतलब कि जो समर से रिलेटेड सारी जो बंदोबस्त होते हैं ना वो ज़रूर कर लीजिए. आज कल और परसों हमारे लिए काफ़ी गर्म होने वाला है. एंड देन एज आई सेड कि सैटरडे को थोड़ा सा कम एंड संडे को थोड़े से और कम होने वाला है टेम्परेचर. अब वो थोड़े से मैं आई मीन बाय फ्यू डिग्रीज, बट दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस लेडीज एंड जेंटलमैन. स्टॉर्म्स लुक टू रिटर्न दिस वीकेंड थ्रू द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट वीक. सो उसके बारे में बात करेंगे जब हम अगले वीक को शुरू करेंगे. लेकिन समर के साथ एसोसिएटेड होता है क्यूकम्बर. क्यूकम्बर के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ क्योंकि आज है नेशनल क्यूकम्बर्स सैलड डे. तो जम के खाएं क्यूकम्बर और अच्छे अच्छे सैलड्स की रेसिपी दिमाग में अगर हो तो शेयर करें हमारे साथ राइट नाउ राइट हियर, क्योंकि हम भी कुछ शेयर करने वाले हैं. एक वायरल रेसिपी जो मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ. सो गेट रेडी फॉर दैट एज वेल. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

0: दिस इज गपशप गली विद मी टू. बिलीव इट और नॉट, हम जो बातचीत कर रहे हैं ना, इट इज अराउंड क्यूकम्बर नाउ. ये टॉपिक क्यों आया है? ये टॉपिक इसीलिए आया क्योंकि आज है नेशनल क्यूकम्बर सैलड रेसिपी डे. तो मैंने सोचा यार, लेट्स फाइंड आउट सम यूनिक रेसिपीज और हाउ टू इनकॉर्पोरेट क्यूकम्बर इन योर डे टू डे रूटीन. क्योंकि क्यूकम्बर बहुत अच्छा एक फ्रूट होता है. जी हाँ, बोटानिकली इट इज़ अ फ्रूट. बाकी कलिनरी दुनिया में इसे वेजिटेबल के तौर पे भी यूज किया जाता है, बट टेक्निकली स्पीकिंग इट इज़ ए फ्रूट गिवन द फैक्ट दैट इट हैज सीड्स एंड ऑल्सो द फैक्ट दैट इट डिवेलप्स फ्रॉम द फ्लावर ऑफ ए प्लांट. और इसीलिए इसे फ्रूट माना जाता है बोटानिकल दुनिया में. ऑलराइट,
1: पालक पनीर.
0: यहाँ पे कलिनरी दुनिया में वापस आना चाहती हूँ. लेट्स गेट यू ऑन द एयरवेव्स ऑफ फनीशा रेडियो. इफ यू हैव ए यूनिक रेसिपी फॉर क्यूकम्बर, इवन बेटर इफ इट इज अ सैलेड. हाँ जी, आपका नाम?
2: हेलो,
0: हाय शहीना, थैंक यू फॉर होल्डिंग द लाइन. तो शाहिना, जल्दी से हमारे लिसनर्स को बताओ कि तुम्हारी जो रेसिपी है टू इनकॉर्पोरेट क्यूकम्बर इन ऑमलेट.
2: या सो आई हैव आई जस्ट मेक ऑमलेट विद लॉट ऑफ वेरिएशंस, बट दिस वन इज लाइक विद अनियन, टोमेटोज, यू कैन ऐड सिलेंट्रो, हैलोपिनोज, बेसिल, व्हाटएवर यू वांट, एंड देन यू कैन ऐड फेटा चीज एंड ग्रेटेड क्यूकम्बर.
0: That sounds amazing. I'm going to definitely try that, and I'll definitely remember you, Shahina, at that time. Thank you for contributing in our cucumber segment. जी हाँ, समर का वो खास फ्रूट या वेजिटेबल जो भी नाम देना चाहें, जिसमें बहुत सारे गुण हैं. और मैंने वायरल रेसिपीज देखने की कोशिश कर रही थी, एंड आई केम अक्रॉस मिस्टर लोगन द क्यूकम्बर गाय ऑन टिकटॉक, और उनकी एक रेसिपी भी शेयर करेंगे.

फ्रॉम द मूवी धक धक इट वॉज. और ये जो है मनाली हिमाचल प्रदेश में और लेह लद्दाख के रास्तों पर इस फिल्म को जो है शूट किया गया था, अदर देन ऑफ कोर्स न्यू दिल्ली एंड ऑल ऑफ द अदर प्लेसेस. लेकिन ये पहाड़ों की ना एक अपना एक सुकून एक अलग है, और ऐसा सुकून अगर किसी खाने में आपको मिले तो क्या ही बात है ना. तो क्यूकम्बर ब्रिंग्स रियली दैट समर वॉर्म्थ टू ऑल ऑफ अस. और आज जो नेशनल क्यूकम्बर सैलड रेसिपी डे सेलिब्रेट हो रहा है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए ना कुछ एक वायरल रेसिपी. तो मैंने गूगल में डाला मोस्ट वायरल क्यूकम्बर रेसिपी, एंड देयर आई हैड दिस क्यूकम्बर गाय. और इनकी इनकी जो जो टिकटॉक की जो ये इनका जो रेसिपी का रील था, इट हैज़ गॉन इन मिलियंस लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड ही हैज़ कम अप विथ मेनी मेनी क्यूकम्बर सैलड रेसिपीज. इनका नाम है लोगन मुफित. और मुझे लगा यार ये तो मज़ा आ गया, ये तो कुछ पहला मुझे ऐसा वायरल मिला है जो कि मैं लोगों के साथ शेयर करूंगी. इट इज अ न्यू स्टोरी दैट आई विल बी पुटिंग अप ऑन माय शो एंड ऑल ऑफ दैट. दिमाग में बहुत कुछ चला एंड फिर फाइनली पता चला कि यार ये 2 साल पुराना वायरल रील है एक्चुअली. लेकिन यार फॉर द पीपल लाइक मी हु डिडंट नो अबाउट लोगन मुफित, आप जरूर जाके उनकी ये जो उनके स्टाइल है बनाने का क्यूकम्बर सैलड जरूर देखें. रियली इंटरेस्टिंग. कुछ चीजों जो जिसके कारण वो एक्चुअली वायरल हुए थे वो रेसिपी मैं आपको जरूर बताऊंगी. एंड इट इज पर्शियन क्यूकम्बर्स दैट यू हैव टू टेक, 3 to 4 पर्शियन क्यूकम्बर्स, और उनको फिर अच्छे से स्लाइस अप कर लें, थिनली स्लाइस कर लें उन ग्रेटर्स पे, यू नो नॉट ग्रेटर, व्हाट इज इट कॉल्ड, मैंडोलिन और समथिंग, आई डोंट नो, जो भी है हाँ, जो जिस पे आप घिसते हो एंड पतली पतली स्लाइसेस निकलती हैं उसमें आप घिस लें डायरेक्टली इन टू ए डेली क्वाट कंटेनर, ठीक है ना. फिर उसमें आपने डाला 1.5 चम्मच टेबल स्पून, बाय द वे हम 1.5 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून टोस्टेड सेसमी ऑयल, 1 टीस्पून फिश सॉस. नाउ आई एम वरीड अबाउट द पीपल हु आर वेजिटेरियन, व्हाट इफ यू माइनस इट एंड स्टिल कंटिन्यू विद द रेसिपी. फिर उन्होंने डाला है 1 टीस्पून शुगर, 1 पिंच MSG. नाउ MSG पर भी कई लोगों का सवाल है, चलिए वो भी माइनस कर देते हैं. 1 ग्रेटेड गार्लिक क्लोव और साथ में ग्रीन चिलीज और टोस्टेड सेसमी बोला था ना मैंने, हाँ वो भी डाल दीजिए, ठीक है. उसके बाद शेक इट वेल, क्लोज द लिड एंड शेक इट वेल एंड फिर खाइए. Apparently it is delish. मैं ज़रूर ट्राई करने वाली हूँ ये फ़िश सॉस, मैं ज़रूर डालूंगी. MSG not so sure. But yes, I thought I'll share this recipe and the name of this cucumber guy is Logan Moffett.

0: All right, ladies and gentlemen, you are listening to Funisha Radio 104.9 FM. और यहाँ पे ना लड़की से मुझे कड़की की बात याद आई. Just saying, ladies and gentlemen. And I don't like when I go for a health check and ये जो time की कड़की doctors दिखाते हैं ना, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है. मुझे क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्योंकि हम इतने बार कई बार लंबा wait करते हैं to see them and then we get that 5 minutes, 10 minutes का time with them. Not fair at all, right? पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, यहाँ पर इनका नाम मेंशन करना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर आप पूरी तसल्ली से डॉक्टर के साथ इत्मीनान से अपने हेल्थ इश्यूज, हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस को लेकर सारी बातचीत कर सकते हैं. दे आर नॉट गोइंग टू रश इनटू योर अपॉइंटमेंट. तो ज़रूर याद रखें, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स भी मिलते हैं इनके पास. तो ज़रूर याद रखें टू नॉट जस्ट फॉर यू योर फैमिली बट स्प्रेड इट अराउंड, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. ऑल राइट, पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, इनकी जो वेबसाइट है इट इज़ लेट्स सी इफ आई कैन वी कैन पुल आउट द वेबसाइट वेरी वेरी क्विकली. आई कैन टेल यू दिस, 214-666-66259 इज द नंबर टू बुक योर अपॉइंटमेंट्स एंड यू कैन गो टू passionhealthphysicians.com टू फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन. एंड डू रिमेंबर, एनीथिंग टू डू विद एन्जाइटी केयर, फाइब्रो स्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स, वाइटामिन B12 डेफिशिएंसी टेस्टिंग एंड मच मोर अवेलेबल एट पैशन हेल्थ. तो अपनी आप ज़रूर अपॉइंटमेंट सेट कर लें इनके साथ. और लड़की से कड़की के बारे में तो बात होगी, वक्त की कड़की, लेकिन ककड़ी के बारे में भी हमने बहुत बात की. यानी कि जी हाँ, क्यूकम्बर, स्नेक, अमेरिकन स्नेक क्यूकम्बर, दैट इज़ व्हाट इट इज़ नोन एज इन इंग्लिश, राइट. ककड़ी जो कि पतली दुबली से क्यूकम्बर की फैमिली को बिलोंग करती हुई गर्मियों में आती है और ऐसे दिल को ठंडक पहुंचाती है कि आज नेशनल क्यूकम्बर सैलड रेसिपी डे के दिन मन किया कि क्यूकम्बर की बहन ककड़ी को भी याद कर लिया जाए. I'm just so, you know, it is so enjoyable to see all these national days जो पता नहीं कहाँ से pop up हो जाते हैं. जैसे कि आज है National Freezer Pop Day भी. It is National Blueberry Day as well. National Love Your Skin Day, National Ice Cream Sunday Day, and National Chocolate with Almonds Day as well. Listen, we'll dive into this song right after a short commercial break. अभी ब्रेक पे जाने वाली हूँ और हमारी गपशप वाली बातें यहाँ पे चलने वाली हैं with the FIFA Fever segment coming up next for all of you.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
9: कौन सा?
8: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
9: अरे सारे तो सेम है.
8: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
9: ओ हाँ, ये तो अलग है.
10: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज, डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. श्री कृष्णा ज्वेलर्स, क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर. विजिट श्रीकृष्णा.com.
11: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
12: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
11: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
12: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
10: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month. Are you tired of the same arguments, reactions and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
13: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
14: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
13: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
14: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
13: ये क्या होता है?
14: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
15: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
10: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
16: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
17: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
18: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
19: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
18: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
19: Papri chaat se malpua rabri tak, har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge, Harbhai Super Hit.
20: Hello, accident claim? Okay, name of the lawyer?
21: उमर ख्वाजा।
22: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
23: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम। Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
24: डालस की धड़कन 104.9 FM फन एशिया रेडियो।
0: वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, गपशप गली आप सुन रहे हैं मेरे साथ, मेरा नाम है मीठू और आप लोगों के साथ मैं इस आखिरी सेगमेंट में फीफा के बारे में बात करती हूं। और फीफा, वी आर जस्ट 11 डेज अवे टू गेट आर ट्रॉफी विनर और बहुत एक्साइटमेंट है। और इसी एक्साइटमेंट को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों से एक सवाल रहेगा जिसके साथ एक गिव अवे भी है, तो कीप लिसनिंग टू मी। 972-235-5555 नंबर इन द studio. Well, yeah, 11 days away that we are of the World Cup winner, and we are just 3 days away to find out how our evening of 12th of July is going to shape by विशाल शेखर. यू नो, विशाल शेखर का ये जो इवनिंग होने वाला है 12 जुलाई को कर्टिस कलविल सेंटर में, ये कमाल का होगा और ये हमारे लिए अपनी एक म्यूजिकल ट्रॉफी होगी कि हम ये अटेंड कर पा रहे हैं डैलस में बैठे बैठे. कैश पटेल प्रोडक्शंस डॉट कॉम इज द वेबसाइट वेयर यू कैन गो एंड बाय योर टिकट्स. और अगर आप 30% डिस्काउंट चाहते हैं तो फनीशा कोड यूज करना बिल्कुल भी ना भूलें. एंड यस, आई एम सो कीन एंड ईगर टू गो टू दिस कॉन्सर्ट की टिकट्स वगैरह मैंने पहले ही खरीद लिए, लेकिन पीपल हु हैवंट येट एंड वांट टू विन द ट्रॉफी ऑफ यू नो सॉर्ट ऑफ एंजॉयिंग एन इवनिंग विद विशाल शेखर देमसेल्व्स, तो फिर आपको टिकट जल्द से जल्द खरीद लेनी चाहिए.

0: कल क्या आएगा यही आपको मुझे बताना है. दैट इज वॉट एग्जैक्टली आई वॉन्ट टू नो. लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज गपशप गली विद मी टू. कल फीफा में कौन से दो टीम्स हैं जो कि भिड़ने वाले हैं, वही मैं जानना चाहती हूँ. अगर मुझे आप सही जवाब बताते ना, तो नियॉन कैक्टस की तरफ से आपके लिए है एक बढ़िया सा गिव अवे. एंड दैट गिव अवे इज $20 गिफ्ट कार्ड डाइन इन. ये एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको मेक्सिकन फ्यूजन खाना विथ ग्लोबल इन्फ्लुएंस जो मिलता है. एंड जस्ट नॉट दैट, इट्स द वाइब ऑफ द प्लेस दैट यू गोइंग टू थॉरली इन्जॉय. परफेक्ट फॉर हैंग आउट्स, परफेक्ट फॉर योर डेट नाइट्स, परफेक्ट टू जस्ट गो एंड चिल विथ योर फ्रेंड एंड फैमिली. और उसके साथ साथ क्यूरेटेड कॉकटेल्स, रिफ्रेशिंग मॉकटेल्स और हैप्पी आवर मंडे से फ्राइडे के बीच. स्पेशल डील्स इनके हर रोज आपके लिए. जरूर याद रखें, इफ यू गिव मी अ कॉल राइट नाउ, वन ऑफ यू कैन विन. एंड दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू टू नो कि ये उन्हीं को जा सकता है जो जिन्होंने पिछले एक महीने में नहीं जीता हो फ्रॉम नियॉन कैक्टस, बिकॉज वी वॉन्ट टू गिव चांस टू एवरीबॉडी. राइट, 9722355555 नंबर इन द स्टूडियो. लेट्स टेक this next caller on.
1: Anji, the answer is hi.
0: Hi, what's your
1: name? The answer to the question, my name is Shweta.
0: Shweta, to bataiye aapne pehle jeeta hai ki neon cactus se?
1: Maine nahi jeeta hai.
0: Are good, bataiye phir kya hai jawab?
1: France versus Morocco tomorrow at 3 PM.
0: Absolutely, you are bang on this one. तो please hold कर ये line, क्योंकि neon cactus की तरफ से आप ही को जाने वाला है this $20 dine in gift card. अब मुझे लगेगा कि we are on the same page. FIFA के बारे में बात करते हैं, ladies and gentlemen. While I play another Vishal Shekhar music for all of you, tickets available on Catch PatelProductions.com and that 30% discount for all of you to enjoy if you mention Funny Shia. 12th July at Curtis Culville Center.

टू गिव एंड शायद लिबर्टीज जो कुछ दी जा रही हैं ऐसा कुछ लग रहा है, ऐसा कई लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं. एंड दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू सॉर्ट ऑफ रीइटरेट हियर. सीजिंग द मोमेंटम ऑफ द गेम येस्टरडे, रोमेरो, मेसी और साथ में एन्जो फर्नांडिस, इन्होंने अपने जो 3 गोल्स मारे. और ये तो हो गई कल के उस मैच की बात जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी में भी घिरा हुआ है. एंड उसके अलावा वैंकूवर में स्विट्ज़रलैंड और कोलंबिया का जो एक एग्जॉस्टिंग मैच हुआ, स्कोरलेस 120 मिनट का टैक्टिकल स्टेलमेट देखने को जो मिला हमें, जहाँ दोनों टीम्स एक दूसरे के बिल्कुल सामने दीवार की तरह खड़े हुए थे. एंड मैच अल्टीमेटली एक हार्ड स्टॉपिंग पेनल्टी शूट आउट तक गया, जहाँ स्विस कूल हेडेड prevailed in a 4-3 shootout win, sending Switzerland to the World Cup quarterfinals for the first time since 1954. An unbelievable match that it was. That is your FIFA update from yesterday. Aaj pehla din hai since FIFA started this year. Since last month that it started, कि पहला दिन है जब सारे टीम्स को ऑफ मिलने वाला है. 8 teams for the quarterfinals that need to recover and rest before it starts.

हर स्टेज और एज में अगर हमारी म्यूजिक टेस्ट बदलती है तो आपको क्या लगता है कि आपकी आंखों का पावर नहीं बदलता होगा? जी हाँ, डेफिनेटली बदलता है. और हर स्टेज और डेकेड की अपनी अलग नीड होती है, और इसीलिए वी वांट टू सजेस्ट दैट यू कैन गो टू विजनरी आई इन प्लेनो, जहाँ पर डॉक्टर शहजाद बाटलीवाला आपकी पूरी तरह से मदद करने वाले इन टेलिंग यू द ऑप्शंस दैट यू हैव इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रिड ऑफ ग्लासेस और द नियर विजन changes that you are seeing lately, या अगर cataract surgery भी अगर आपको करवानी है तो उसके भी कई सारे options हैं, और ये options आपको बताते हैं डॉक्टर शहजाद बाटलीवाला. और जी हाँ, याद रखिएगा LASIK-PLENO.com is the website and you can get in touch with them 214-972-2020 is the number to call to find out your options. और अगर आप फनेशिया 2020 अगर आप mention करते हो तो free consultation आपके नाम कर दी जाएगी. ज़रूर जाइएगा for that what exactly fits right for your eye and what are the options that you can use to educate yourself, also go there. All right, once again visionary eye care ke bare mein batane ke baad, let's quickly talk about time permits, ki agar main aapko bata sakun about the money that these teams win at the end of each ग्रुप स्टेज मैच से लेकर राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16 और अब क्वार्टर फाइनल्स तक जो पहुंचे हैं, हर एलिमिनेटेड टीम को जो पैसे मिलते हैं वो बहुत तगड़ा होता है. सो जो टीम्स ग्रुप से स्टेज से एग्जिट कर चुके हैं उन्हें उस बेस अमाउंट के ऊपर $9 million का परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, ब्रिंगिंग देयर ग्रैंड टोटल पे आउट टू वॉपिंग 21.5, लेडीज एंड जेंटलमैन दैट यू मस्ट नो. और उसके बाद जो टीम्स पिछले हफ्ते राउंड ऑफ 32 के नॉकआउट स्टेज से एग्जिट हुई हैं, दे टुक होम $11 million बोनस ऑन टॉप ऑफ देयर बेस मनी. द ड्रामेटिक राउंड ऑफ 16 ऑफिशियली रैप्ड अप यस्टरडे एज वी ऑल नो टू लॉक इन आवर टॉप 8 क्वार्टर फाइनलिस्ट फॉर फीफा वर्ल्ड कप 2026. अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड ने कल अपनी एक जगह बना ली है इन द राउंड ऑफ 8 द क्वार्टर फाइनल्स. और बियॉन्ड द लव द फेम एंड ऑनर ईच टीम हैज सिक्योर्ड एक वेल डिजर्व्ड लोडेड पे चेक कमिंग देयर वे एज वेल फॉर द रिगरस ट्रेनिंग जो कि पिछले 4 साल से उनका चल रहा था. एंड ऑफ कोर्स बियॉन्ड दैट फॉर मेनी अदर्स, लेट्स टॉक अबाउट द माइंड बॉगलिंग मनी दीज टीम्स आर गोइंग टू बी पेड फॉर, क्योंकि फीफा टोटल डिस्ट्रीब्यूशन पूल हैज हिट ए हिस्टोरिक $871 million. तो जी हाँ, जो सारी ग्रुप्स क्वालिफाइड हुई हैं, 48 ग्रुप्स जो क्वालिफाइड हुई थी फीफा के लिए, उन सबको इंस्टेंटली $10 million क्वालिफिकेशन फी मिला, प्लस $2.5 million प्रेपरेशन चेक. एंड बियॉन्ड दैट इट इज फॉर द टीम्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट क्वार्टर फाइनल्स के लिए जो एलिमिनेट हुई हैं, इजिप्ट, कोलंबिया, मेक्सिको, ब्राज़ील, यूएसए, पोर्चुगल, इटली, मोरक्को, वो जो एलिमिनेट हुई हैं उनके लिए द टेक अवे अमाउंट इज $15 million, विच इज ए मैसिव 125 crore रुपीज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. अर्जेंटीना, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, नॉर्वे, बेल्जियम, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस, ये सारी जो टीम्स हैं ये अब आगे बढ़ चुकी हैं. क्वार्टर फाइनलिस्ट को जो यहाँ से जो एलिमिनेट होंगे उनको $19 million मिलने वाला है, फोर्थ प्लेस को $27 million एंड थर्ड प्लेस को $29 million, द रन अप लैंडिंग ए मैसिव $33 million एंड द चैम्पियन विल गेट $50 million प्राइज मनी. दैट्स ऑल आई हैव इन टर्म्स ऑफ मनी दैट दीज टीम्स हैव अर्न एंड विल अर्न.

0: सुनो, शादी के लिए ज्वेलरी भी देखनी है।
1: हाँ देख लेंगे।
0: तो फिर इंडिया की टिकट कब करवाए?
1: अरे तुम्हें ज्वेलरी देखनी है या रिश्तेदारों को?
2: One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels, वही timeless craftsmanship, वही unmatched elegance और वही stunning bridal collections. Now on Main Street in Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
3: ये तारा वो तारा हर तारा।
4: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: You're earning well, but are you paying more taxes than you need to? If you are a business owner earning more than $200,000 annually, then this seminar is for you. Join AG FinTax for a free tax planning seminar and discover legal strategies that may help reduce your tax burden through smart planning. On July 10th, 6 p.m. onwards at Fun Pizza Kitchen, Frisco. And there's more. Attendees who register for the seminar will receive special gifts. Seats are limited, so reserve your spot today. AG FinTax. Plan smart. Save more.
4: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
5: Calculating route. Rerouting.
4: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
5: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
4: क्यों?
5: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या Pooja essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
4: अच्छा. तो सीधा वही ले चलो,
6: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
5: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
6: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
7: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
8: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
13: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
14: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
15: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
14: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
16: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
17: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
13: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
18: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
19: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
18: क्या मतलब?
19: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
18: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
19: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
18: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
15: Don't let debt ruin your life. Visit Ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
1: We

अरे ना जी ना, आप क्यों अलविदा कह रहे हैं? अभी अभी तो मैं आई हूँ, मैं यानी कि आरजे सिमी, और आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम। ये शो है आफ्टरनून अड्डा और आज है वेंसडे, और इस वेंसडे को ना हम वंडर्स के बारे में बात करेंगे। नहीं जी, वो वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड नहीं, दूसरे वंडर्स जो मूवी इंडस्ट्री है ना उसके वंडर्स, मतलब जो मूवी इंडस्ट्री में आते हैं लोग, बहुत सारे सपने लेके आते हैं और कुछ स्टार्स सालों तक राज करते हैं, और कुछ तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक दो फिल्मों में ऐसा धमाका करते हैं कि पूरा का पूरा पूरी दुनिया जो है उनकी दीवानी हो जाती है, उनके बारे में बातें करने लगती है, लेकिन फिर पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ गायब हो जाते हैं, बाकी फिर हमको वो किसी मूवी में नहीं दिखते। तो आज का जो शो है वो उन्हीं स्टार्स के नाम है, वन हिट वंडर वेंसडेज। तो चलिए याद करते हैं उन एक्टर्स को जिन्होंने हमें ब्लॉकबस्टर मेमोरीज दी, लेकिन फिर एक या दो ही दी, उसके बाद वो गायब हो गए। अगर आपको ऐसा कोई स्टार याद आ रहा है तो आप मुझे कॉल करके बता सकते हैं 972-235-5555।

आज वेंसडे है और इस वेंसडे को हम याद कर रहे हैं उन स्टार्स के बारे में जो कि वन हिट वंडर्स थे। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लिसनर्स हमें कॉल करके बताया भाग्यश्री के बारे में, जो मैंने प्यार किया मूवी से फेमस हुई, काफी फेमस हुई, लेकिन फिर वो बाद में दूसरी मूवीज में नहीं आई। और हर्षद ने बताया था ये, एंड खान साहब ने विवेक ओबराय को भी याद किया कि शुरू शुरू में काफी फेमस थे, काफी चार्मिंग थे, फिर बाद में उनकी ज्यादा मूवीज नहीं आई। एंड श्वेता ऑल्सो कॉल्ड अस, उन्होंने कुमार गौरव जो एक एक्टर थे, लव स्टोरी मूवी थी उनकी, उससे फेमस हुए थे, बट अगेन वो नहीं दिखे। इन्हीं नामों के बीच एक नाम और है अमीषा पटेल का, वो 2000s में आई थी कहो ना प्यार है मूवी से, पूरे दीवाने हो गए थे लोग उनके, सेंसेशन बन चुकी थी वो पूरे कंट्री की। और उसके बाद आई थी मूवी गदर, एक प्रेम कथा, और वो तो उससे, इन दोनों मूवी से काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई थी। लेकिन इतनी बड़ी शुरुआत के बाद भी उनको वो स्टारडम वगैरह नहीं मिली, मेंटेन नहीं हो पाया जो कि बाकी स्टार्स को मिलती है, लेकिन उनकी मूवी से ये अमेजिंग सॉन्ग हम याद कर रहे हैं आज।

वैसे मुझे पता चला कि बहुत सारे लिसनर्स को एक नाम से बहुत प्यार है. आज हम बात कर रहे हैं वन मूवी वंडर्स के बारे में ऑन दिस स्पेशल वेंसडे टॉपिक. और बहुत सारे लिसनर्स ने, स्पेशली फीमेल लिसनर्स ने याद किया है राहुल रॉय को. अंजुम ने याद किया है एंड मरियम ने भी याद किया है कि वो जो सॉन्ग था, वो जो एक्टर थे वो कमाल के थे, उनके गाने वो आज भी सुनते हैं. एंड सोहेल ने याद किया है कमल सदाना को, रंग मूवी से काफी फेमस हुए थे. और एक और एक्टर को आज हम याद करेंगे जिनकी फिल्म और कार दोनों ही सुपरहिट हो गए थे. 2004 में रिलीज हुई थी मूवी द टार्जन द वंडर कार और उसके हीरो थे वत्सल सेठ. उस वक्त हर बच्चा, हर यंगस्टर टार्जन कार का और हीरो का फैन बन गया था. फिल्म ने वत्सल को ओवरनाइट स्टार बना दिया, लेकिन बॉलीवुड में उसके बाद वो स्टारडम वापस नहीं आ पाया. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू प्ले अ सॉन्ग रिक्वेस्ट फ्रॉम अनिल जी फ्रॉम दिस मूवी पद्मावत.

आज का जो हमारा सेगमेंट चल रहा है वन मूवी वंडर्स, उसमें जो अगला नाम है वो ग्रेसी सिंह का है फ्रॉम द मूवी लगान। जी हाँ, लगान की अपनी गौरी, वो एक एक्ट्रेस जिसने बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में से एक से डेब्यू किया। लगान में गौरी के रोल ने उन्हें घर घर पहुंचाया, फिल्म ऑस्कर तक भी गई। लेकिन इतनी बड़ी सक्सेस के बाद भी ग्रेसी सिंह को बॉलीवुड में लॉन्ग इनिंग्स जो है बोलते हैं वो नहीं खेल पाई। लेकिन उनका सॉन्ग राधा कैसे ना जले इज वन of my favorite and I'm gonna play it for you।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
3: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजरवे, सुइट 205, फ्रिस्को। If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
4: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
5: Hey! तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
6: लिया।
5: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
6: नहीं आया।
5: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
7: Visit www.sanadainc.com today.
8: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
9: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
3: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
10: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिजल्ट्स में वेरी।
11: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
12: Everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 AM to 5 PM Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
3: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage. The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
13: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday,
3: all starting from 4:30 PM onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.

मेरा मन भी यही करता है कि मैं आपसे दिन भर बातें करती रहूं। मैं हूं आरजे सिम्मी और आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम। स्टूडियो में वक्त हो गया है 1:08 और जो हमारा सेगमेंट था आज का वन मूवी वंडर्स, उसको खत्म करने का टाइम हो चुका है। जो लास्ट के दो नाम्स है वो मैं आपको बता देती हूं इसके पहले कि मैं ये खत्म करूं। तो किम शर्मा की बातें की लोगों ने, जो मोहब्बतें मूवी में आई थी और काफी पसंद आई थी लोगों को, स्नेहा उल्लाल जिनको कि कहा जा रहा था कि वो ऐश्वर्या राय की जैसी दिखती हैं, लकी नो टाइम फॉर लव मूवी थी वो, उसमें आई थी। इसके साथ ही हम ये सेगमेंट आज क्लोज कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि मैं अब आपसे गिव अवे राउंड की बातें करूं, क्वेश्चन पूछूं, लेकिन इस सॉन्ग के बाद।

आई होप कि आप सब गिव अवे राउंड के लिए रेडी हो, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था भाई गाने से पहले कि मैं आपसे क्वेश्चन करने वाली हूँ. और अगर आपने आज का सेगमेंट जो था हमारा वन मूवी वंडर्स को ध्यान से सुना है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होने वाला है आपके लिए. रूल्स सिंपल है कि आपको जब मैं क्वेश्चन पूछूँ आपको मुझे कॉल करके आंसर बताना है, और आप जीत सकते हैं चंडीगढ़ बाइट से गिव अवे जो कि है $10 ऑफ ऑन अ बिलिंग ऑफ $50 ऑन द डाइनिंग ऑप्शन. ये लोकेटेड है एट मैकडर्मट ड्राइव एलन में, और यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग फूड मिलता है, तो वर्थ प्लेइंग द गिव अवे राउंड. क्वेश्चन से पहले एक और आपसे गुजारिश करना चाहूंगी, रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये ना आपको गिव अवे लास्ट एक महीने में किसी और फन एशिया शो पे नहीं जीता होना चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि और भी लोगों को चंडीगढ़ बाई से अच्छा अच्छा खाने का मौका मिले. तैयार हैं? सवाल ये है कि जो मूवी है मैंने प्यार किया, उसकी लीड एक्ट्रेस का नाम लेना है आपको, जिसके बारे में आज हमने बात भी की थी, वो कौन है? अगर आपको आंसर पता है तो कॉल कीजिए 972-235-5555.

हाँ, मुझे पता है कि ये सॉन्ग आप मुझे ही डेडिकेट करना चाह रहे हैं। तुम हो तो मैं तो हूँ ही, और मैंने तो आपको अभी गिव अवे राउंड का क्वेश्चन भी पूछा था और बहुत सारे आंसर्स मुझे मिले, सारे के सारे सही मिले। आई थिंक इट वॉज एन ईजी आंसर, और जवाब है भाग्यश्री। तो क्वेश्चन ये था कि मैंने प्यार किया कि लीड एक्ट्रेस का नाम बताना था, और आज हमने जिनके बारे में बात भी की थी कि वो एक वन मूवी वंडर रही हैं, और उनके अलावा भी हमने बहुत सारे स्टार्स की बात की थी। आज की जो विनर हैं वो है हेतल। कॉन्ग्रेचुलेशंस हेतल, आपको मिलता है चंडीगढ़ बाइट्स की तरफ से $10 ऑफ। अगर वहां पे जाके आप खाना जरूर इंजॉय करें, क्योंकि वहां का जो स्पेशल थाली है ना, जो कि मंडे टू फ्राइडे मिलता है, और हर दिन लंच पे वो रोटेट होता रहता है, लाइक यू विल गेट न्यू डिशेज एवरी टाइम यू गो देयर फॉर लंच। ये लोकेटेड है मैकडरमट ड्राइव इन एलन, और अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए देन डू विजिट वेबसाइट विच इज chandigarhbites.com। और एक अगला गाना, बहुत सूदिंग सा गाना बजाने जा रही हूँ आपको, बहुत अच्छा लगने वाला है आई बिलीव।

0: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
1: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
0: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
1: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
0: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
1: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
0: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338। दैट्स 817-786-3338।
2: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
3: शक्ति, संस्कृति और समर्पण की एक यादगार शाम आपका इंतजार कर रही है। इस सैटरडे 11 जुलाई शाम 7 से 9 बजे अपने पूरे परिवार के साथ आइए कृष्णा हेरिटेज सेंटर शंख स्थापना महोत्सव में। एक भव्य 11 एकड़ कैंपस की शुरुआत का जश्न मनाइए, जहां बनेगा कृष्ण टेंपल, गौशाला, फ्री स्कूल, इवेंट्स हॉल और रेस्टोरेंट। शाम को और भी खास बनाएंगे, गौ पूजा, नरसिम्हा यज्ञ चैंटिंग, किड्स मेला, भजन क्लबिंग और सबके लिए फ्री डिनर फीस्ट। माइनस पार्क ऑपोजिट कृष्णा हेरिटेज सेंटर, 7082 Road.
4: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
5: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
6: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
8: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
9: वेट, ना सब और प्राइस?
8: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
10: मैं ही।
11: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
12: Excuse me. It's called being loyal.
11: It's called being predictable.
12: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
11: And what's so special at Neon Cactus?
12: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
11: Not bad.
12: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
11: Okay, this I didn't expect from you.
12: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
13: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
14: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
13: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी।
14: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
15: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
16: उमर ख्वाजा।
17: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833 गेट उमर और विजिट attorneyumar.com।
18: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
19: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
18: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
19: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
18: सच में सब संभाल लेंगे?
19: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
13: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770। Vanessa Events, your celebration partner.
20: आंखें खुली हो या

आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी, ले गया हूँ आपका फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा। और जो लास्ट सॉन्ग था उसमें हम काफी बातें कर रहे थे दिल के बारे में, प्यार के बारे में, लेकिन क्या आपको पता है कि ये दिल कितना अमेजिंग और इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है? ये तब भी काम करता है जब आप सो रहे होते हो। तो बहुत जरूरी है कि अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें, ताकि ये दिल सलामत रहे। ये था हेल्थ फैक्ट ऑफ द डे फ्रॉम पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। और जब आज दिल की इतनी बातें हो रही हैं, क्यों ना हम दिल को बहुत ज़्यादा यू नो लाइटली लेते हैं, क्योंकि कभी कभी हम कहते हैं कि दिल को अच्छा लगा, फिर कभी हम कहते हैं कि यू नो ये सब कुछ इस दिल की ही गलती है। पर दिल बेचारा क्या करे, दिल को तो फंक्शन भी करना है, उनको ऑर्गन्स को भी यू नो ब्लड वगैरह सब पंप करना है, और ये सारी प्यार मोहब्बत की बातें भी झेलनी है। तो आप जो नेक्स्ट सॉन्ग है ना, वो दिल को ही डेडिकेट कर देते हैं। ओके ये

इस सॉन्ग की आपको अगर वीडियो याद हो तो इस सॉन्ग की खास बात यह है कि इसमें इमरान हाशमी ने काफी आइकॉनिक प्रपोजल किया है, वो रिंग देते हैं और मूवी के एंड में भी उस रिंग के अराउंड ही क्लाइमेक्स है। तो अगर आपको भी प्रपोज करना है किसी को या फिर अपने लव्ड वंस को गिफ्ट देने हैं, ज्वेलरीज वगैरह देनी है फॉर एंगेजमेंट्स, एनिवर्सरीज, सेलिब्रेशंस या फिर खुद को ट्रीट देना है तो मलबार गोल्ड्स एंड डायमंड जाइए, जो कि लोकेटेड है प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को। यहां आपको ये सारे रिंग्स, इयररिंग्स और डाइजलिंग नेकलेसेस मिल जाएंगे। कंटेम्प्रेरी स्टाइल्स और डायमंड स्टाइल्स काफी अमेजिंग है और मलबार गोल्ड्स एंड डायमंड तो काफी फेमस है अपने क्राफ्टमैनशिप के लिए। जो इनकी शाइन होती है ना इनके गोल्ड्स और डायमंड्स में, वो काफी अमेजिंग होती है। अगर आपको इनका लेटेस्ट कलेक्शन चेक करना है तो आप इनका ऐप डाउनलोड कीजिए और देखिए कि क्या चल रहा है आजकल मलबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स में।

वैसे गुलाबो एंड द गन्स ऑफ डैलस एंड फाइनेंशियल लिसनर्स, अगर आपको एक स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी चाहिए तो डू रीच आउट टू माय टाइम इक्विटी विच इज लेड बाय सीपीए सुधीर पाई. ये आपको हेल्प करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, रियल स्टेट अपॉर्चुनिटीज बताएंगे कि क्या क्या ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकते हैं ताकि आपका जो लॉन्ग टर्म वेल्थ की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए. रिटायरमेंट प्लान अगर आप कर रहे हैं तो उसमें भी वो आपको हेल्प करेंगे और ओवरऑल आपका जो है इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को ग्रो करेंगे, बूस्ट करेंगे. तो माय टाइम इक्विटी जो है ना पर्सनलाइज्ड सॉल्यूशंस देता है जो कि आपकी जरूरतों के हिसाब से, आपका जो एंड गोल हो उसके हिसाब से कस्टमाइज्ड होता है, उसके अकॉर्डिंग तैयार किया जाता है. अगर आपको इनको रीच आउट करना है तो डू कॉल देम एट 4697021272 या फिर आप उनके वेबसाइट पर भी जा सकते हैं विच इज mytimeequity.com.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
3: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे।
4: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
5: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर। आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर। आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर। प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
3: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
6: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
7: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
6: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
7: वेट, व्हाट?
5: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
8: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
5: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
9: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
10: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून।
9: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
10: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
11: माई टाइम इक्विरी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
12: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
13: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
14: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
15: हाँ।
14: घर रिलोकेट करनी है?
15: हाँ।
14: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
15: हाँ भाई हाँ।
14: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
16: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
17: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
18: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.

हाँ जी, मैं भी मस्कारा वस्कारा लगा के आ गई हूँ। मैं हूँ आरजे सिमी और आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम। और मैं आपको रिमाइंड करा देना चाहती हूँ कि विशाल एंड शेखर का लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है 4 दिन के बाद, यानी कि जुलाई 12 को। एंड आई होप कि आप सब ने अपना अपना टिकट्स ले लिया है, और अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो अभी जाइए kashpatelproductions.com, और वहाँ पे अगर आप हमारा कोड यूज़ करेंगे ना, फन एशिया जो कि कोड है, वहाँ तो आपको 30% डिस्काउंट भी मिलेगा। ये हो रहा है एट कर्टिस कलवेल सेंटर गार्लैंड में, तो डू एंजॉय। और ना लंच का टाइम हो गया तो मुझे ना भूख सी लग रही है, और जब भूख लगती है तो पेज 3 ईटरी ज़रूर याद आता है, क्योंकि यहाँ मिलता है सिजलिंग कबाब, फ्लेवर फूड चाट से लेके हर वो अमेजिंग डिश जिसको आप इंजॉय करना चाहेंगे किसी भी रेस्टोरेंट में जाके। ब्रंच के लिए जा सकते हैं, लंच के लिए जा सकते हैं, डिनर हो, डेट नाइट हो, या फिर अपने गैंग के साथ फूडी मीटअप करना है तो भी जाएं, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा परफेक्ट मिक्स फ्लेवर का, एनर्जी का और वाइब्रेंट वाइब का। और ये लोकेटेड है एट हब 121, एंड इनके वेबसाइट पे जाके आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं, विच इज space3eatery.com।

0: बिल्कुल नजर नहीं लगने देंगे हम आपको, हम हैं फन एशिया टीम से भाई, सबकी नजर उतार देंगे। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हैं माय फैमिली होम लोन से शेफाली जी। हाय शेफाली, वेलकम टू फन एशिया।
1: हेलो एवरीवन, थैंक यू ऑल फन एशिया लिसनर्स फॉर हैविंग मी टुडे।
0: ओके शेफाली जी, एंड आई नो कि आप जो हैं होम लोन ऑप्शंस वगैरह में मदद करते हैं लोगों की, तो आपसे एक सवाल है कि जो बिजनेस ओनर्स होते हैं, फ्रीलांसर्स होते हैं या फिर 1099 अर्नर्स हैं, उनके लिए होम लोन लेना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, डिफरेंट होता है, ऐसा क्यों होता है?
1: ओके श्योर, लेट्स डिस्कस दैट टुडे। डिफरेंट और डिफिकल्ट, लेट्स नॉट पुट इट दैट वे, लेट्स पुट इट, इट्स क्रिएटिव करना पड़ता है क्योंकि उनकी इनकम फ्लक्चुएट होती है। व्हेन इट्स W2 इनकम, इट्स अ स्टेबल इनकम, दैट्स व्हाट ट्रेडिशनल मॉर्गेजेस लुक फॉर। बट 1099 में इनकम एवरी ईयर फ्लक्चुएट होती है ड्यू टू सेवरल रीजंस। ईदर यू हैव सोल्ड द बिजनेस or you have purchased add another business which is good, which will increase the income, but is wajah se income stable nahi hoti hai, fluctuate hoti rehti hai, so us hisab se unka calculation income ka differently kiya jata hai as per

अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और अर्न करते हैं $200,000 एनुअली या उससे ज्यादा, तो आपके लिए एक खास सेमिनार है बाय एजे फिनटैक्स। सेमिनार का नाम है टैक्स प्लानिंग सेमिनार, और यहाँ आपको बहुत सारे लीगल स्ट्रैटेजीज और एडवाइजेस दी जाएंगी जिसकी मदद से आप अपना टैक्स बर्डन रिड्यूस कर सकते हैं और एक बेहतर प्लान कर सकते हैं अपने टैक्सेशन को। ये हो रहा है एट फन पिज्जा किचन फ्रिस्को में ऑन July 10th फ्राइडे को 6 PM onwards, और जो भी अटेंडेंस है उनके लिए कुछ खास स्पेशल गिफ्ट्स भी हैं, तो सीट्स लिमिटेड हैं, तो जल्दी जल्दी से अपना स्पॉट रिजर्व कर लें। अगर आपको रजिस्टर करना है तो आपको वेबसाइट पे जाना है विच इज agfintax.funasia.net, और वहां जाके आप रजिस्टर कर लें अपने आप को फॉर दिस सेमिनार।

क्या आपको ऐसा लगता है कि जब आप अपॉइंटमेंट वगैरह लेके डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो आपको डॉक्टर्स इनफ टाइम नहीं देते? वो फटाफट जो है अपना डायग्नोस्टिक कर देते हैं और फिर यहाँ ये दवाई ले लो, यहाँ चले जाओ, हो गया हो गया. बट ऐसा नहीं होता एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, क्योंकि यहाँ पूरे के पूरे 30 मिनट मिलेंगे आपको अपने डॉक्टर के साथ, जहाँ आप उनको सारी बातें बता सकते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं. और क्योंकि यहाँ पे ना पेशेंट को एक फैमिली की तरह ट्रीट किया जाता है, और ये मानते हैं कि आपके हेल्थ को थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए समझने के लिए, क्योंकि 5-10 मिनट ना काफी नहीं होते हैं. तो अगर आप अपनी फैमिली या किसी को लेके किसी भी हेल्थ केयर सर्विसेज चाहते हैं, जैसे कि एनुअल हेल्थ चेकअप हो गया, या फिर यू नो और भी एंग्जाइटी केयर है, या फिर फाइब्रो स्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स हैं, विटामिन B12 डेफिशिएंसी की टेस्टिंग करानी है, ये सब कुछ आपको पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर पे मिल जाएगा. अगर आपको अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराना है तो आप उनको कॉल कर सकते हैं @214666259.

0: ये डांस वाली एनर्जी चाहिए तो वो तो वरुण धवन की मूवीज वगैरह से मिल जाएगा, लेकिन अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और आपको एक कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशन चाहिए तो तारा कमर्शियल एनर्जी इज डेफिनेटली दैट्स परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर यू, क्योंकि इनके रेट्स कॉम्पिटिटिव हैं, इनकी सर्विस रिलायबल है और इनके एनर्जी प्लान्स ना आपके नीड आपकी ज़रूरतों के हिसाब से कस्टमाइज किए जाते हैं। अगर आप इनको रीच आउट करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं तारा कमर्शियल एनर्जी को 8444-428-2808 या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं विच इज़ taraenergy.com। और इसके साथ ना ये जो आज का शो था आफ्टरनून अड्डा, उसको अलविदा कहने का वक्त आ गया है, लेकिन कल मैं फिर आऊंगी इसी एनर्जी के साथ, इसी वाइब के साथ, ऐसे ही हस्ती खेलती हुई। मैं हूँ आरजे सिमी, दिस इज टाइम फॉर मी टू साइन ऑफ एंड से बाय टू यू गाइस।
1: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
2: Calculating route, rerouting.
1: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है।
2: Location upgraded. Now heading to India Bazaar Fort Worth.
1: क्यों?
2: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं। डील groceries हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
1: अच्छा तो सीधा वही ले चलो।
3: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
2: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
4: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। Choctaw Casino and Resort Durant, entertainment, luxury or excitement, sab ek hi destination mein. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
5: Dude, life mein kuch aisa karna hai jisme main front page pe rahun.
6: Front page ka to pata nahi, but tera page 3 mein hona meri guarantee hai.
5: Kaise?
6: Page 3 eatery?
5: No, not another restaurant again.
6: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
5: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
7: पेज 3 ईटरी, ईट सिप गॉसिप रिपीट।
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
9: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
10: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
9: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
11: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
12: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी। टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स डैलस। Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
13: You're earning well, but are you paying more taxes than you need to? If you are a business owner earning more than $200,000 annually, then this seminar is for you. Join AG FinTax for a free tax planning seminar and discover legal strategies that may help reduce your tax burden through smart planning. On July 10th, 6 p.m. onwards at Fun Pizza Kitchen, Frisco. And there's more. Attendees who register for the seminar will receive special gifts. Seats are limited, so reserve your spot today. AG FinTax. Plan smart, save more.
14: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
15: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
16: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
17: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
18: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
19: यार बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस।
20: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
19: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
20: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
19: ये क्या होता है?
20: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
9: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस,
21: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन अवेलेबल।
22: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
23: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
22: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
23: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
22: सच में? सब संभाल लेंगे।
23: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
21: कॉल हरि बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

वेरी वॉर्म वेलकम टू द लिसनर्स ऑफ 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो. सुन रहे हैं आप, मैं हूं किरण आपके साथ. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस दिस आफ्टरनून. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे 2:30 PM टिल 5 PM मेरा और आपका साथ रहता है. 9722355555 के थ्रू रहते हैं आप भी मेरे साथ. आज है जी वेंसडे. एज ऑलवेज हर रोज यू नो एवरी डे ऑफ द वीक हमारी डिफरेंट थीम होती है और आज की थीम इज ऑलवेज बिगिनिंग. हमेशा हम बुध की शुरुआत करते हैं रोमांटिक मेलोडीज से और उसके बाद 3 से 4 बजे तक लेके आऊंगी आप के लिए पॉप फ्रीक्वेंसी, कुछ पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक. 3:30 से 4 तक बिल्कुल कनेक्ट करना मत भूलिएगा. द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामास की लिस्ट लेकर आती हूं टीआरपी चार्ट्स पे. पिछले हफ्ते किन ड्रामास ने राज किया और मुझे और आपको अब क्या देखना है, वो सारी लिस्ट आपको बताती हूं. और 4 से 5 तक लेकर आती हूं आपके लिए ट्रॉफी ट्रैक्स, यानी कि सम अवार्ड विनिंग मूवीज एंड अवार्ड विनिंग सॉन्ग्स. लेट्स बिगिन विद द रोमांटिक मेलोडीज राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम with Suneri Kiran.

अरमान फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना ग्रेसी सिंह और अनिल कपूर पे पिक्चराइज्ड। वैसे ग्रेसी सिंह जो हैं वो काफ़ी अच्छी अदाकारा थी, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। दो चार फिल्मों बाद कुछ ज़्यादा काम उनका देखने को नहीं मिला, बट वट एवर वर्क शी हैज़ डन वी हैव एन्जॉयड। जैसे कि अरमान मूवी और उसके साथ मुन्ना भाई MBBS में भी हमें ग्रेसी सिंह जो हैं वो संजय दत्त के साथ नजर आई थी। आगे बढ़ रही हैं जी रोमांटिक मेलेडीज, अनदर अबाउट 18 मिनट्स दैट वी हैव फॉर रोमांटिक मेलेडीज विद अस। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूं, इफ देयर इज अ कार और अ ट्रक एक्सीडेंट जिसमें आप अनफॉर्चुनेटली इन्वॉल्व हैं, या फिर कोई स्लिप और फॉल इंसिडेंट है, तो ऐसी सिचुएशन कैन बी एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल। यू डोंट हैव टू स्ट्रेस एट ऑल, क्योंकि पेपर वर्क, लीगैलिटीज, इंश्योरेंस कंपनीज, द निटिग्रिटीज ऑफ द सिचुएशन, आप जो है वो ये सब अटर्नी उमर ख्वाजा को आपके लिए हैंडल करने दीजिए। यू जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर हेल्थ, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो जी अटर्नी उमर ख्वाजा एंड हिज टीम विल हेल्प यू फाइट योर केस, गेट यू द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है अनटिल यू विन द केस। तो इट इज एब्सोल्युटली अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। तो यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस, या समबडी यू केयर फॉर इज गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दिस, उनको उमर ख्वाजा का नंबर दीजिए, दैट इज 4693005046। 4693005046 इज अटर्नी उमर ख्वाजा's नंबर, और यू कैन विजिट द वेबसाइट फॉर मोर डिटेल्स। दैट वेबसाइट इज अटर्नी उमर OMAR attorneyumar.com।

अलका याग्निक की आवाज में सिर्फ तुम मूवी से सुन रहे थे आप ये गाना। खैर, इस गाने के तो कई सारे रेंडिशंस भी बने हैं और हर तरीके से इस गाने को हमने एंजॉय किया है, बहुत सालों से एंजॉय कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं जी। और अगर आप गाने की तरह, जैसे हम कहते हैं ना, अपनी हेल्थ को भी एंजॉय करना चाहते हैं, बिकॉज हेल्थ इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। बचपन में सुना करते थे ना, तंदुरुस्ती हजार नेमत है, हेल्थ इज वेल्थ, उसके ऊपर एसेज भी लिखा करते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, समझ आती है कि सेहत से बड़ी और वाकई कोई नेमत नहीं। एंड इफ यू नीड हेल्थ केयर प्राइमरी फिजिशियन या हेल्थ केयर ऐसी स्पेस आपको चाहिए जो आपकी हेल्थ को अपनी इंपॉर्टेंस वही दें जो आप देते हैं, अब फैमिली की तरह आपको ट्रीट करें, तो दैट प्लेस इज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। आधे घंटे का अपॉइंटमेंट, एवरी अपॉइंटमेंट इज हाफ एन आवर, कोई क्विक नहीं है कि 5 मिनट आके डॉक्टर साहब देख के चले गए या 2 मिनट में आप फारिग हो गए, नहीं। बिकॉज एट पैशन हेल्थ यू आर नॉट जस्ट अ पेशेंट, यू आर अ फैमिली, आपकी फैमिली, दे हैव बिन सर्विंग द कम्युनिटी, एंड पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इज हेयर टू हेल्प। 30 मिनट्स इज ऑल इट टेक्स टू कम्प्लीट योर एनुअल फिजिकल, एनजाइटी केयर हो, फाइब्रो स्कैन फॉर एल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स हो, वाइटमिन B12 डेफिशेंसी टेस्टिंग हो, या फिर और भी बहुत कुछ जो कि पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। सो यू कैन स्केड्यूल योर अपॉइंटमेंट टूडे, एंड दैट नंबर टू कॉल टू बुक योर अपॉइंटमेंट इज 214-666-6259 है जी। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर का नंबर, डू गिव देम अ कॉल एंड स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट विद देम, बिकॉज जस्ट एज मच एज योर हेल्थ इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, योर हेल्थ इज देयर पैशन एज वेल। वी आर ट्यून्ड इनटू द रोमांटिक मेलोडीज राइट हियर विद सुनहरी किरण।

जी हाँ, कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि इंसान उनका दिल करता है कयामत और कयामत के बाद भी बस उन्हीं का रहा जाए। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स है तो कंग्रेचुलेशंस, एंड उस शख्स की हिफाजत कीजिए, उस इंसान को चेरिश कीजिए, बिकॉज़ बहुत कम होते हैं जो ज़िंदगी में ऐसे मिल जाते हैं। अच्छा जी, और इसी के साथ अगर आपकी अपना घर बनाने की ख्वाहिश है, या यू वॉन्ट टू सेल योर ओल्ड हाउस एंड बाय अ न्यू वन, और यू और समवन यू नो ऑफ इज प्लानिंग टू रीलोकेट टू डालस, तो नवनीता खेमका विद केलर विलियम्स रियल्टी is the right person to get in touch with. She will guide you step by step for the process with personalized services, honest communication and genuine care. तो जी, घर is very personal and very private to each one of you. हम सब के लिए बहुत important होता है घर, और हर घर की एक कहानी, और उस कहानी का हिस्सा बनाइए नवनीता को, because she will help you and guide you throughout the process flawlessly. That is Navneeta Khemka with Keller Williams Realty. Give her a call, 347-449-4242. 347-449-4242 is the number. Romantic Melodies ka ye aakhri gana, aur iske saath hum jayenge break ki taraf, aur break se wapas aakar we will step into pop frequency, some Pakistani pop music, as well as get ready for the top 10 trending dramas for last week.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग।
4: तारा वो तारा हर तारा।
5: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
6: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
7: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 4693331099.
8: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
9: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
10: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
9: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
11: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
12: शक्ति, संस्कृति और समर्पण की एक यादगार शाम आपका इंतजार कर रही है। इस सैटरडे 11 जुलाई शाम 7 से 9 बजे अपने पूरे परिवार के साथ आइए कृष्णा हेरिटेज सेंटर शंख स्थापना महोत्सव में। एक भव्य 11 एकड़ कैंपस की शुरुआत का जश्न मनाइए, जहां बनेगा कृष्ण टेंपल, गौशाला, फ्री स्कूल, इवेंट्स हॉल और रेस्टोरेंट। शाम को और भी खास बनाएंगे, गौ पूजा, नरसिम्हा यज्ञ चैंटिंग, किड्स मेला, भजन क्लबिंग और सबके लिए फ्री डिनर फीस। माइनस पार्क ऑपोजिट कृष्णा हेरिटेज सेंटर, 7082 कंट्री रोड।
13: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
14: इट्स लॉसन।
13: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
14: इट्स लॉसन।
13: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
15: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स। गिव देम अ कॉल टुडे, 214-631-2458। द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल।
16: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
17: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
18: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment.
14: Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
19: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday,
14: all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
20: Dallas ki dhadkan 104.9 FM Fun Asia Radio.
21: Love.

You're tuned into Pop Frequency right here on your afternoon drive time with Sunehri Kiran. Main hu Kiran aapke saath. This is yours and mine. Favorite radio station 104.9 FM. Funny Radio aapke saath rehta hai 24/7. 365 days a year hum rakhte hain aapko entertained as well as informed. टाइम आ चुका है जी पॉप फ्रीक्वेंसी में हम दाखिल हो गए हैं. फ्रॉम 3 to 4 PM आई विल ब्रिंग यू सम पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक. लेकिन 3:30 to 4 तक आपका फेवरेट सेगमेंट आएगा जो आप इतना अप्रिशिएट करते हैं. मुझे बाद में बहुत सारी फोन कॉल्स आती हैं और आप बताते हैं कि आपको इनमें से कौन कौन सा ड्रामा देख रहे हैं. व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दैट ड्रामा. सो दैट इज फ्रॉम 3:30 to 4 आई विल ब्रिंग यू द टॉप 10 ट्रेंडिंग ड्रामाज ऑन द TRP चार्ट्स. बने रहिए मेरे साथ. दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली एक्साइटिंग.

टेकन फ्रॉम द मूवी तीफा इन ट्रबल, अली जफर और आयमा बेग की आवाजों में सुन रहे थे आप ये गाना. मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, वेरी वेरी पॉपुलर सॉन्ग. और आगे बढ़ते हुए जी, एक आपको इंपॉर्टेंट बात आपके वीजा स्टेटस के हवाले से बताते चलें कि अगर आप H1B या F1 या फिर L1 वीजा पे हैं या कोई और आपका नॉन इमिग्रेंट वीजा पे हैं आप, एंड यू आर लुकिंग फॉर अ पाथ और प्लानिंग फॉर अ पाथ टू US परमानेंट रेजिडेंसी, तो फिर द लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता आई है to help you. Seema Mehta and her experienced team specializes exclusively in immigration law, including EB-5 investor visa programs, family and employment visa, perm labor certification, as well as US citizenship. कोई भी आपका सवाल है तो आप अटर्नी सीमा मेहता और उनकी लॉ फर्म को कॉल कर सकते हैं. कॉल नहीं, ईमेल कर सकते हैं. जब आप ईमेल उनको भेजेंगे, दैट इज द फास्टेस्ट वे दैट समवन विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू. दैट ईमेल आईडी इज info@seemamehtalawfirm.com. info@seemamehtalawfirm.com. तो प्लीज़ अगर आपका कोई भी सवाल है, इंक्लूडिंग EB-5 इन्वेस्टर वीज़ा प्रोग्राम या फिर पर्म लेबर सर्टिफिकेशन कोई भी, तो अपनी ईमेल भेजना मत भूलिए. info@seemamehtalawfirm.com. यू आर लिसनिंग टू पॉप फ्रिक्वेंसी एंड आई हैव सम ब्यूटिफुल पॉप म्यूजिक लाइंड अप फॉर यू.

अली हैदर की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गाना। इसके भी कई सारे वर्जन्स बने हैं, और लेकिन जो बात थी, जो क्रक्स था इस गाने का, वो डेफिनेटली हमारे साथ रहा। पुरानी जीन्स और गिटार, मोहल्ले की वो छत और मेरे यार, और कैसी प्यारी प्यारी यादें। अगर आप 90s के दौर को देखें तो कैसी क्या प्यारी प्यारी यादें बनी थी उस दौर में। लेकिन अभी भी हर बच्चों की, सब तमाम बच्चों की, तमाम यंगस्टर्स की अपनी यादें होती हैं, तमाम टीनेजर्स अपनी मेमोरीज लेके बिल्ड होते हैं। एंड आई थिंक दिस डेफिनेटली गोज अलॉन्ग विद एवरी teenager who is growing up, purani jeans aur guitar. Ajay ji, aage badh rahe hain. I have another beautiful number lined up for you. This is taken from Cook Studio. This is a combination, Balle Balle aur Saath Hi Saath, Billo De Ghar.

फ्रीक्वेंसी में आप सुन रहे हैं कुछ खूबसूरत पॉप गाने, कुछ फास्ट और कुछ स्लो नंबर्स. अब जो मैं गाना आपके लिए लगाने वाली हूँ, दिस इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल मोस्ट सॉन्ग्स जो एतबार एल्बम से लिया गया, जुनैद जमशेद की आवाज में. इसको एंजॉय कीजिए और फिर जब हम वापस आएंगे तो आई स्टिल हैव लॉट ऑफ सॉन्ग्स, लॉट ऑफ म्यूजिक लाइंड अप फॉर यू. दिस इज पॉप फ्रीक्वेंसी राइट हियर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
4: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस, चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चॉकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: कुछ भी नहीं, Ura Debt Relief will do it for us.
5: क्या मतलब?
6: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
6: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
7: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: सुनो, कल बहुत काम है। पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं और इन सब कुछ के बाद में कुकिंग नहीं करने वाली। कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे।
9: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
8: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी। एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
2: Foodistan in Aubrey. Everything they see, one place, one vibe.
10: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
2: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
11: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
12: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
13: Excuse me, it's called being loyal.
12: It's called being predictable.
13: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
12: And what's so special at Neon Cactus?
13: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
12: Not bad.
13: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
12: Okay, this I didn't expect from you.
13: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview. Mexican cuisine with global influences.
14: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
15: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program.
16: Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
17: The Dill of Dallas. Heart to heart. Fun.

0: You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. This is your and my favorite radio station. And this segment is also very, very important. Because I'm connecting you with our One World Business segment. We're with you, Shahid Panjwani Ji, who will tell us how One World Business Capital can help you. Because many people start to start business and forget to answer many important questions. Let's welcome Shahid Ji on the airwaves of Fun Asia. Good afternoon, Shahid Ji. How are you doing?
1: I'm doing great. Good afternoon to you and all listeners.
0: Thank you so much हमारे साथ आज की दोपहर कनेक्ट करने के लिए और प्लीज हमें ये बताइए शायद जी बिजनेस लोन अप्रूवल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है क्रेडिट स्कोर कोलैटरल या फिर कैश फ्लो
1: ये हम मैं चाहता हूँ कि ये इस टॉपिक पर हम बार बार बात करें ताकि ये मिसकंसेप्शन दूर हो जाए मोस्ट पीपल आई वुड से 8 आउट ऑफ 10 पीपल अज्यूम क्रेडिट स्कोर ही डिसीजन मेकर होता है जब भी हमें कोई कॉल करता है बिजनेस लोन के लिए एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर हो या कोई फर्स्ट टाइमर है जो नया बिजनेस खरीदना चाह रहा है क्या क्रेडिट स्कोर की रिक्वायरमेंट है आपकी मुझे बिजनेस लोन चाहिए सो डू नॉट वरी अबाउट क्रेडिट स्कोर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन गेटिंग अप्रूव फॉर अ बिजनेस लोन इज द कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस आई वुड मेक इट सिंपल अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर हो लोन चाहते हो और लेट्स से आपकी अज्यूमिंग आपकी महीने की 5,000 की पेमेंट आने वाली है बिजनेस लोन की तो एनुअल पेमेंट होगी $60,000 योर बिजनेस नीड्स टू बी एबल इनफ कैश फ्लो होना चाहिए कि साल का $60,000 की लोन पेमेंट वो सपोर्ट कर सके आपका 800 का स्कोर है डजंट मैटर लेकिन अगर आपके बिजनेस में रेवेन्यू नहीं है या बॉटम लाइन इतनी नहीं है कि जो $5,000 की पेमेंट को या उस लोन की पेमेंट को सपोर्ट कर सके देन आपका स्कोर इज नॉट गोइंग टू हेल्प इवन कोलैटरल इज नॉट गोइंग टू यू मे हैव अ प्रॉपर्टी वर्थ ऑफ मिलियन टू मिलियन थ्री मिलियन But if you do not have cash flow, you are not going to get approved. At the same time, आपका score low है, 600 सवा 600 ही है, लेकिन आपके business में cash flow है, तो आप loan के लिए approved हो जाओगे. So score, unfortunately, is not the decision maker because score is not going to make your payments. And now the second follow-up question that many people ask: How do we crunch down our number? How do I know कि मेरे business में क्या कितना loan support हो सकता है? So that's where we come in. If you want to know what kind of amount you can qualify for. Call us, provide us your most recent PNL, and we can let you know what loan amount you can qualify for. At the same time, agar aap koi business khareed rahe ho, to aap seller ko unka PNL mang lo, send it to us, and we can let you know based on the business that you are planning to buy, wo kitne loan amount ke liye qualify ho sakte. Again, do not worry about your own score at this point.
0: All right. And Shahji, what is the best way to get in touch with you, the number as well as the website that you suggest we all visit?
1: My direct line is 817-786-3338. 817-786-3338. And two websites, thesbaloanexperts.com and oneworldbusinesscapital.com. I would like to add one point before going. SBA is what we primarily specialize in, small business administration loans. Having said that, agar for any reason aap SBA eligible nahi ho, ya SBA ke liye qualify nahi hote ho, ya SBA loan nahi chahte ho, We also have non-SBA loan options.
0: There you go. The SBALoanExperts.com या फिर OneWorldBusinessCapital.com or you can give Shahji a call. That number is 817-786-3338. Thank you for connecting with us this afternoon, Shahji. We will talk to you next time.
1: Thanks.

And it is time now to give you the top 10 trending dramas. TRPs के हिसाब से पिछले हफ्ते यानी कि मंडे जून द 29th से लेके संडे जुलाई द 5th तक TRP चार्ट्स पे किन ड्रामास ने किया लीड. नंबर 10 पे जो ड्रामा रहा दैट इज तपिश. इट इज अ ड्रामा दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्राउड एंड एन ईगोइस्टिक मैन हुज लव फॉर अ वुमन ट्रांसफॉर्म्स इनटू एन ऑब्सेशन. और फिर क्या होता है, क्या एक्सट्रीम चॉइसेस होती हैं और जिंदगी कैसे आगे बढ़ती है, दैट इज द स्टोरी ऑफ तपिश. साद कुरैशी और सानिया सईद, फरहान ताहिर, सबा फैसल हमें इस ड्रामे में नजर आ रहे हैं. 10th पोजिशन पे पहली बार ही ये ड्रामा आया है, बट लेट्स सी कि कितनी बार टॉप 10 में आता है. इसी के साथ 9th पोजीशन पे जिस ड्रामे ने अपनी पोजीशन को रखा बरकरार वो है जी मिर्जा की हीर. जब से मिर्जा की हीर ड्रामा आया है, ऑल्दो टॉप 5 में कुछ दिनों आया, लेकिन टॉप 10 में इसने अपनी जगह को बरकरार रखा हुआ है जी. दिस इज अ ड्रामा दैट you know involves a fierce love triangle involving Heer, jo ke ek pure hearted young girl hai, Taimur Mirza, her loyal and steadfast protector, aur Dilnawaz, jo ke cunning aur a ruthless aadmi hai who is driven by revenge. And how the story, aur Mirza ki Heer se aapko andaaza to ho hi gaya hoga kuch folklore se ki kya hone wala hai inki love story mein. So it'll be interesting to see. Ali Raza, Hina Afidi aur Zahid Ahmed are in the lead roles. और इसके साथ 8वें नंबर पे जिस ड्रामा ने टीआरपी चार्ट्स पे पोजीशन हासिल की दैट इज मुहाफिज. दिस इज एन एक्शन रोमांस ड्रामा जो कि you know it is about a dedicated uncompromising police officer who is tasked with protecting a wealthy headstrong young woman. Junaid Khan hai sub inspector Zahar Bakht aur Momina Iqbal hai aur Sameer Suhail hai is drama mein. This is coming on Harpal Jio, that is Jio TV. Har roz aata hai, ye ek soap drama hai, har roz aata hai 9 baje sham ko. Acha ji, ye hua aapke liye ye baat aur ab 7ve drama ki taraf hum badh rahe hain jo ke kaun constantly हमें टॉप 10 की लिस्ट में नजर आता है. एंड दिस ड्रामा इज लीडर. ये एक ऑन गोइंग ड्रामा है जो एक्सप्लोर करता है द वर्ल्ड ऑफ स्टूडेंट पॉलिटिक्स, पावर एज वेल एज फ्यूडल ऑप्रेशन. बहुत ही खूबसूरत स्टार कास्ट. अली रजा हैं, मंसूर क्या रोल कर रहे हैं, किंजा आशमी हैं, रुबाब का रोल कर रही हैं, फरहान ताहिर हैं. और हम टीवी पे ये ड्रामा आता है सैटरडे और संडे को रात 8 बजे. तो ये थे आपके लिए 7, 8, 9, 10 की लिस्ट. अब जब हम इस गाने से वापस आएंगे तो आई विल टेल यू द लिस्ट ऑफ 4, 5 एंड 6, यानी कि इन पोजिशंस पे कौन से ड्रामे रहे टीआरपी चार्ट्स में.

जी हाँ, जीना मुहाल. मुहाल का मतलब है जी मुश्किल, इम्पॉसिबल. मतलब हम कहते हैं ना, मुहाल हो गया है जीना. जी हाँ, कुछ मुश्किल हुआ हुआ है इनके लिए जीना, लेकिन हमारे लिए नहीं, क्योंकि मेरा चार्ट अभी बाकी है, लिस्ट आपके लिए बाकी है. और आप बताने लगी हूँ आपको, छठे नंबर पे जिस ड्रामे ने TRP चार्ट पे अपनी जगह बनाई, एंड दैट इज महानूर. दिस इज एन इमोशनल एंड अ ग्रिपिंग स्टोरी दैट फॉलोज अ यंग वुमन जो कि कॉन्स्टेंटली ऑन द रन है फ्रॉम हर डार्क पास्ट. और क्या होता है आगे और किस तरह उनकी जिंदगी शेप होती है, दैट्स द स्टोरी ऑफ महानूर, जो कि ARY डिजिटल पे आते हैं. दिस इज अ डेली सोप एज वेल, मंडे टू फ्राइडे आता है एक्चुअली 9 बजे शाम को. अच्छा जी, ये हुआ महानूर. और पांचवें नंबर पे जिस ड्रामे ने अपनी जगह बनाई है पिछले हफ्ते, वो है शिदाई. फिरोज खान के फैंस जो हैं वो डेफिनेटली उन्हें टॉप 5 से नीचे नहीं जाने दे रहे हैं. फिरोज खान इज अली खान एंड सहर हाशमी इज मिरल इस ड्रामे में है. दिस इज अ रोमांटिक ड्रामा और द स्टोरी फॉलोज अली खान जो कि एक अचीवर हैं, एक सेल्फ मेड मैन हैं, और किस तरह उनकी दुनिया चेंज हो जाती है जब उनकी मुलाकात हीरोइन से होती है, और आगे क्या कहानी है. इट इज एड ऑन जियो एंटरटेनमेंट वेंसडेज एंड थर्सडेज 8 PM. और चौथे नंबर पे जिस ड्रामे ने अपनी पोजीशन बनाई TRP चार्ट्स पे लास्ट वीक, दैट इज हमराही, जो कि जियो एंटरटेनमेंट पे आता है फ्राइडेज एंड सैटरडेज को 8 PM पे. दानिश तैमूर एज सेहान और हिबा बुखारी एज अलिफ या फिर इल्हाम, दो रोल्स किए हैं हिबा बुखारी ने इस ड्रामे में, और काफ़ी पसंद किया जा रहा है ये ड्रामा. लेकिन आई थिंक देर आर बेटर ड्रामाज आउट देयर जिन्होंने TRP चार्ट्स पे टॉप 3 पोजीशंस मेंटेन की, एंड वी विल टॉक अबाउट दैट राइट आफ्टर दिस सॉन्ग.

विद दैट ब्यूटिफुल सॉन्ग कभी मैं कभी तुमसे ये गाना लिया गया था जी. और अब इट इज टाइम नाउ टू टेल यू द टॉप 3 ट्रेंडिंग ड्रामास जो कि TRPs पे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पोजिशन लेके पिछले हफ्ते बरकरार रहे और मुझे और आपको देखने वालों को करते रहे एंटरटेन. थर्ड नंबर पे डॉक्टर बहू फाइनली हो चुका है खत्म. ऑल दो बहुत सारे लोग इसके एंडिंग पे और जो प्लॉट ट्विस्ट था एंडिंग का उसके ऊपर मतलब इट हैज रॉक्ड डिबेट ऑन सोशल मीडिया बट दैट इज टू यू नो ईच देयर ओन. आपको ये बताते चले कि डॉक्टर बहू जो कि एक ट्रेडिशनल हाईली रिस्पेक्टेड फैमिली के ऊपर था और फैमिली ऑफ डॉक्टर्स और किस तरह से वो बहू वहां ब्याह के आती हैं और फिर क्या उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एंड देन द ड्रामा कंप्लीटली टेक्स अ डिफरेंट टर्न के हाउ द विमेन नॉट ओनली द बहू बट ऑल द विमेन इन दैट ड्रामा हैव बीन गोइंग थ्रू चैलेंजेस इन द लाइफ. तो ये कहानी डॉक्टर बहू की एक बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने दिखाई और फाइनली ड्रामा हो चुका है खत्म. लेकिन अभी सैटरडे संडे के हिसाब से TRP चार्ट्स के ऊपर फ्राइडे और सैटरडे को ये एयर हुआ और थर्ड पोजिशन इसने बरकरार की. ARY डिजिटल पे आता था 8 बजे शाम. आपको तमाम एपिसोड्स जो हैं वो YouTube पे अवेलेबल हैं. सो इफ यू हैवंट वॉच्ड देम देन इट इज टाइम नाउ टू बिंज वॉच. अच्छा जी, इसी के साथ दूसरे नंबर पे जो ड्रामा आया, दूसरे और पहले का जो ये टकराव है ना, ये बड़ा मजे का है. कभी एक आगे निकल जाता है, कभी दूसरा आगे निकल जाता है. तो जो दूसरे नंबर पे ड्रामा आया वो है बस तेरा साथ हो. कहानी एक ऑर्फन यंग मैन की जिनका नाम है अनस और किस तरह से उनकी फैमिली उनको दबाती है और क्या क्या उनके साथ होता है उस घर में और फिर दादा और फूफो उनका साथ लेते हैं. और उसके बाद कहानी ऑफ अ गर्ल जिनके साथ अपनी फैमिली में भी यही हो रहा है अपने भाई और भाभी की तरफ से एंड देन हाउ दे कम टुगेदर, हाउ सर्कमस्टेंसेस ब्रिंग देम टुगेदर एंड हाउ दे आर गोइंग टू बी ईच अदर्स शील्ड नाउ इज व्हाट द स्टोरी इज ऑल अबाउट. वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आ रहा है बस तेरा साथ हो देख के. और मुझे बस तेरा साथ हो का टाइटल ट्रैक जो गाना है वो भी बड़ा ही प्यारा आजकल लग रहा है, तो वो आपके लिए अभी प्ले करती हूं. और इसी के साथ नंबर 1 पे जो ड्रामा रहा उफ मतलब अगर आप उफ का टाइम्स इंफिनिटी कर दो तो दैट इज व्हाट जंजीरें इज ऑल अबाउट. सज्जल अली और दानियाल जफर उफ उफ उफ वाली का जो केमिस्ट्री है उनकी एंड द वे द ड्रामा इज चेंजिंग, हर रोज कुछ नया होता है उस ड्रामे में. कहानी बदल जाती है, लोग बदल जाते हैं, इमोशंस बदल जाते हैं. इट इज जस्ट एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल. अगर आपने जंजीरें अब तक देखना शुरू नहीं किया तो डेफिनेटली देखना शुरू कीजिए. आता है जी ये देखिए हम TV पे वेंसडे और थर्सडे, यानी कि आज एपिसोड रिलीज हो गई होगी जंजीरें की. तो वेंसडे एंड थर्सडे 8 PM enjoy these 3 dramas that are the top 3 trending dramas on the TRP charts for last week. And let's end this segment actually with this official soundtrack of Bas Tera Saath Ho.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Suno, shaadi ke liye jewelry bhi dekhni hai.
7: Haan, dekh lenge.
6: Toh fir India ki ticket kab karwaye?
7: अरे तुम्हें ज्वेलरी देखनी है या रिश्तेदारों को?
8: One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. वही timeless craftsmanship, वही unmatched elegance और वही stunning bridal collections. Now on Main Street in Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
9: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
10: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway. Cause miracles happen in Mirage.
11: Is shahar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya. Kahin pe kala jadoo. Dhuaan dhuaan. Kyun sab uljhe hain parivarik samasyaon mein? Kabhi padhai, to kabhi naukri ki chinta. Zindagi ke raaste dhundle ho gaye hoon. To waqt hai sahi disha ka.
12: पंडित रामनाथ जी जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव.
13: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
14: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिजल्ट्स में वेरी.
13: इमिग्रेशन इज अ सीरियस कंसर्न फॉर आवर कम्युनिटी एंड व्हेन यू आर फाइलिंग योर केस यू वांट अ फर्म व्हिच इज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू इमिग्रेशन लॉ लाइक द लॉ ऑफिसेज ऑफ सीमा मेहता. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
15: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
16: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
13: Life ho ya health, kab kya ho jaye pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust aur ab wahi trusted care urgent care services ke saath naye Kaizerway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
17: Mamu, देखो क्या हो गया।
18: ओ क्या हो गया?
17: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
18: ओए जर्मन का कमाल है।
17: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
18: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
10: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
19: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
20: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
19: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
20: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
19: सच में सब संभाल लेंगे?
20: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
10: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
21: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Fun Asia 104.9 FM.

फन एशिया रेडियो सुन रहे हैं आप. मैं हूं किरण आपके साथ. दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. और ट्रॉफी ट्रैक्स में दाखिल हो गए हैं हम. कुछ अवार्ड विनिंग फिल्मों के अवार्ड विनिंग गाने आपके लिए प्ले करूंगी. दम लगा के हर्षा से ये गाना आप सुन रहे थे. और अब आगे बढ़ते हुए आपको एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं जी. और वो बात है एजी फिनटेक्स के हवाले से. सबसे पहले तो ये कि दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, one of the fastest growing tax firms in the US. They offer innovative financial services with untapped potential for both individuals as well as businesses. Trusted hain, efficient hain, they get you ready for your future. To agar to ye sunke aapke zehen mein koi sawal aaya to aap unki website visit kijiye agfintax.com is where you will find all the details about them. Uske saath saath aap unhe call bhi kar sakte hain. That number is 469-942-9888 is that number. और अब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं अपडेट लेके आने वाली हूं कि इफ यू आर अ बिजनेस ओनर अर्निंग मोर देन 200,000 एनुअली, तो फिर सेमिनार आपके लिए लेकर आ रहे हैं एजी फिनटेक्स वाले. खास आप ही के लिए डिजाइन किया गया है इस सेमिनार को. ज्वाइन कीजिए एजी फिनटेक्स फॉर अ फ्री टैक्स प्लानिंग सेमिनार एंड डिस्कवर लीगल स्ट्रैटेजीज जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं टू रिड्यूस योर टैक्स बर्डन थ्रू स्मार्ट प्लानिंग. कब है ये सेमिनार जी? दिस इज हैपनिंग ऑन जुलाई 10th, विच इज इन टू डेज. आज है जुलाई 8th. जुलाई 10th को ये सेमिनार है, फ्राइडे 6 PM ऑनवर्ड्स. एंड दिस इज हैपनिंग एट फन पिज्जा किचन इन फ्रिस्को. तो जी और अभी बात यहां खत्म नहीं हुई. एज an attendee who register for the seminar, you will receive a special gift. So register kijiye seminar ke liye aaj hi. Receive special gifts. Seats limited hain, so reserve karna apne spot ko bahut zyada zaruri hai. Aaj hi log on kijiye, call kijiye AG Fintax ko 469-942-9888. Visit kijiye agfintax.com ya phir register kijiye by logging on to once again agfintax.com funasia.net. ये एक नई बात मैं आपको रजिस्ट्रेशन के लिए नई आईडी दे रही हूं. दिस इज agfintax.funasia.net. तो वंस अगेन दिस इज हैपनिंग ऑन जुलाई 10th फ्राइडे 6 PM ऑनवर्ड्स एट फन पिज्जा किचन फ्रिस्को. रजिस्टर नाउ एंड बी एलिजिबल टू रिसीव स्पेशल गिफ्ट्स एज वेल.

जी हाँ, तू चाहिए फ्रॉम द फिल्म बजरंगी भाईजान। अवार्ड विनिंग फिल्मों की बात हो रही है तो बजरंगी भाईजान से ज्यादा क्या बात की जाए। तो दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग पिक्चराइज्ड ऑन सलमान खान एंड करीना कपूर। और अब जो अगला गाना मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ, दैट इज एन एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल नंबर इन अवार्ड विनिंग मूवी, अवार्ड विनिंग नंबर। लेकिन उस गाने की आप मुझे बताएंगे कि ये कौन सी फिल्म से लिया गया है और किस पे हुआ है ये पिक्चराइज, क्योंकि मैं लिए के आई हूं आपके लिए फूडिस्तान इन ऑबरी की तरफ से एक गिव अवे। सबसे पहले तो ये कि फ्रेश इंडियन ग्रोसरीज, हलाल मीट, फ्रेश प्रोड्यूस, बेकरी आइटम्स, लाइव पानी पूरी का स्टेशन भी फूडिस्तान में आपको मिलेगा। गन्ने का जूस अगर आपने ताज़ा ताज़ा पीना है तो जी, इससे बेहतर प्लेस नहीं हो सकती। एंड इसी के साथ एन अपस्केल डाइनिंग एक्सपीरियंस, इफ यू आर लुकिंग फॉर दैट, यू विल फाइंड दैट इनसाइड फूडिस्तान इन ऑबरी एज वेल। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि फूडिस्तान दे ऑफर अ लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी ऑन ग्रोसरीज एंड फ्री डिलीवरी ऑन ऑल ऑर्डर्स जस्ट ऑल ऑर्डर्स ओवर $30 विद इन 5 miles। अच्छा, अब जो गिव अवे आपके लिए आया है, दैट इज a free item that you can win from Divibe restaurant, that is an upscale restaurant located inside Foodistan in Aubrey. और आपको इसके लिए क्या करना है ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अब जो गाना आप सुनेंगे, मुझे आपने ये बताना है कि ये कौन सी फिल्म से लिया गया और इस गाने के स्टार्स यानी के किस पे था ये गाना पिक्चराइज। 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो।

ऑलराइट जी, सवाल था कि ये जो गाना आप सुन रहे हैं ये कौन सी फिल्म से लिया गया, अवार्ड विनिंग फिल्म से, और किस पे था ये पिक्चराइज्ड। तो आप सबसे पहले तो बता दें कि दिस सॉन्ग वॉज टेकन फ्रॉम द मूवी युवा और पिक्चराइज था रानी मुखर्जी और साथ ही साथ किस पे, अभिषेक बच्चन पे। जी हाँ, मणि रत्नम की डायरेक्टेड ये फिल्म गॉट अ लॉट ऑफ अवार्ड्स एंड लॉट ऑफ अप्रिसिएशन एट मेनी अवार्ड सेरेमनीज इंक्लूडिंग फिल्म फेयर। तो जी, ये तो हुई ये बात आपके लिए, और अब विनर आपको बताते चले। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर कॉल्स एंड फॉर द आंसर्स। और आज की जो हमारी लकी विनर हैं वो हैं शिवानी बराय। शिवानी, कांग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये फ्री आइटम फ्रॉम डिवाइब रेस्टोरेंट लोकेटेड इन साइड ऑबरी, फूड स्थान इन ऑबरी। तो हमें दो दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर रेस्टोरेंट पर पहुंचाने के लिए, एंड देन यू विल हैव अबाउट 5 to 6 डेज टू गो टू डिवाइब रेस्टोरेंट एंड अवेल योर फ्री आइटम। और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया। इट रियली मैटर्स अ लॉट टू अस व्हेन यू कॉल इन एंड पार्टिसिपेट। थैंक यू सो मच।

0: और इसी के साथ आपको बताऊं जी कि अगर आपका कोई इवेंट आ रहा है, जी हाँ, जैसे कि वेडिंग, ग्रेजुएशन, हाउस वार्मिंग या फिर कोई और स्पेशल सेलिब्रेशन, और आपने स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया है कि वेन्यू, डिकोर, केटरिंग, ये सब कौन करेगा, छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल कौन रखेगा और कैसे होगा, तो बिल्कुल अपने सर से वो बोझ उतार दीजिए एंड गिव इट टू वैनेसा इवेंट्स. दे मेक प्लानिंग सिंपल बाय ब्रिंगिंग एवरीथिंग टुगेदर इन वन प्लेस, फ्रॉम वेन्यू सिलेक्शन एंड ब्यूटिफुल डिकोर बाय सिग्नेचर इवेंट्स टू photography, hospitality and delicious catering exclusively by the renowned Basera Grand. So make that call today to make everything easy with Vanessa Events. Hari Basera at 469-442-8770. Your celebration partner, Vanessa Events.
1: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
4: Lekin aapke doctor ka appointment milna usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
5: Tarikh par tarikh.
6: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
4: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
7: आने वाले खाने में डोसा.
6: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
8: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali और साथ में शहर की best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
6: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 और कस्टर जंक्शन.
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
10: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
11: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया? कभी पॉलिसी समझ भी आया?
12: नहीं आया.
11: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jumani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
13: Visit www.sanadainc.com today.
14: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
16: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
15: Kya matlab?
16: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
16: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
15: Ab to karna hi padega, madam.
17: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
18: Documents ya parcel bhejni hai?
19: हाँ.
18: घर रिलोकेट करनी है?
19: हाँ.
18: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
19: हाँ भाई हाँ.
18: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
2: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide,
4: हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335। वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस। पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए। चौकटाव कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में। प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मस्ट बी 21 इयर्स ओल्ड टू गेम।

0: आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो पे आप सुन रहे हैं. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस दिस आफ्टरनून. इट इज टाइम नाउ टू कनेक्ट यू विद आवर मॉर्गेज लोन सेगमेंट जो हम करते हैं मिस्टर पंजवानी के साथ फ्रॉम ड्रीम होम मॉर्गेज, अ डिविजन ऑफ ब्राजर्स नेशनल बैंक. ड्रीम होम आपके लिए, यू नो, एज अ क्लाइंट दे आर कमिटेड टू गिव यू द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट्स इन योर एरिया. चाहे आप फर्स्ट टाइम होम बायर हों, कंसोलिडेट करना चाहते हों अपनी डेट को, रीफाइनेंस करवाना चाहते हों, यू लुकिंग फॉर योर ड्रीम होम, एनीथिंग एंड everything, Dream Home Mortgage will help you and guide you step by step. Let's welcome Mr. Panjwani on the airwaves of Fun Asia. Good afternoon, Mr. Panjwani. How are you doing?
1: Good afternoon, ma'am. I'm doing great. How are you doing? And I hope your listeners are doing great. Staying cool in this hot weather.
0: Absolutely.
1: Most of your listeners are cool anyway, like you are.
0: Thank you so much, Usainji. Bahut bahut shukriya. It is always a pleasure to have you on our show because aap bahut sari insight leke aate hain and you really guide us and help us through the mortgage process. Please bataiye, aajkal ek to interest rates kahan stand kar rahe hain and how can Dream Home Mortgage help us?
1: Interest rates thode wapas, do din abhi ye wapas humne dekha ki Iran ki war shuru hui hai. To jaisa वॉर का टेम्परेचर बढ़ता है हमारे रेट्स थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाते हैं. आजकल यही हो रहा है. लास्ट वीक में खुश था, इनफैक्ट आई वाज डूइंग अ शो विद यू लास्ट वीक एंड आई सेड रेट्स हैव कम डाउन एंड देन ऑन सैटरडे आल्सो आई सेड द सेम थिंग एंड अगेन नाउ अगेन द रेट्स हैव गॉन अप. तो ये चलता ही रहेगा, बट मामूली सा 0.125 का इधर उधर होता है. बट हम देख रहे हैं कि जो किरण, व्हाट इज डिफरेंट दिस टाइम इज द हाउस दैट आर अंडर 500,000 उसकी काफी मूवमेंट होना शुरू हुई है लेट. काफी मतलब हम समर की जो एक्टिविटी देख रहे हैं, सो इधर वी आर सीइंग होम्स अंडर 500,000 या ओवर 1.2 मिलियन. जो 5 लाख से मिलियन डॉलर का वैक्यूम है वो काफी काफी, यू नो, दैट इज स्टिल देयर, बट अंडर 500,000 वी आर सीइंग लॉट ऑफ एक्टिविटीज.
0: ऑलराइट, सो व्हाट आर द मेजर थिंग्स दैट वी आर टचिंग टुडे, हुसैन जी?
1: टुडे जैसा हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स, आई डेफिनेटली वांट टू कवर कैश आउट लोन्स जो हम देख रहे हैं, बिकॉज कैश आउट लोन्स की काफी हमें इंक्वायरी आ रही है, काफी एप्लीकेशन आ रहे हैं. एंड दूसरी है जो कमर्शियल लोन्स, दीज आर आई थिंक नाउ आउट जिसकी हमें एप्लीकेशन जो लेटली हम देख रहे हैं, इधर वी गेटिंग मोर इंक्वायरीज एंड एप्लीकेशन फॉर कमर्शियल लोन्स, इवन कमर्शियल लोन कैश आउट एंड ऑल्सो ऑन रेगुलर कैश आउट, वेदर इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड प्राइमरी रेसिडेंस पे जो कैश आउट है, जो मैं काफी अरसों से कहता हूँ कि क्लाइंट्स डोंट वेट टू, यू नो, जहां आपके क्रेडिट कार्ड के बैलेंसेस बढ़ते जाए एंड देन यू डू समथिंग अबाउट इट. आई हैव ऑलवेज टोल्ड माय क्लाइंट्स टू बी प्रोएक्टिव देन रिएक्टिव. सो हम देख रहे हैं कि काफी लोग अपने घर में से इक्विटी निकाल रहे हैं, दे वॉन्ट टू पे ऑफ देयर क्रेडिट कार्ड, दे वॉन्ट टू पे ऑफ देयर कार, जस्ट हैव वन पेमेंट. सो इससे क्या हो जाता है किरण, के कभी कभी, यू नो, पीपल से हुसैन इट डज नॉट मेक सेंस, वाई शुड आई टेक वन लोन टू पे ऑफ द अदर लोन. यू नो, एक ऐसा होगा कि यार ये अपना फायदा करवा रहा है कि मुझे घर में से लोन लेने रह रहा है, क्रेडिट कार्ड पे करने, घर पे करने. बट व्हाट आई हैव सीन इज बाय डूइंग कैश आउट ऑन ईदर योर प्राइमरी रेसिडेंस और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, यू कैन इंक्रीज योर मंथली कैश फ्लो बाय $1,800 to $2,000, $2,500. तो आई रियली थिंक हर सिचुएशन अलग अलग होता है. इट्स एवरी क्लाइंट, एवरी बोरोअर, एवरी फैमिली हैज डिफरेंट फाइनेंशियल सिचुएशन. सो इफ यू आर लिस्टिंग टू माय शो राइट नाउ, और अगर यू कैन रिलेट टू इट, वेयर यू एवरी पे चेक यू आर स्ट्रेसिंग आउट विच पेमेंट्स टू मेक, विच क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स टू मेक, बच्चा अभी यूनिवर्सिटी में जाने वाला है उनकी पेमेंट करना है, दो गाड़िया की पेमेंट है, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट है, एंड एट द सेम टाइम यू आर अ होम ओनर, हैव or you have an investment property, or you have a commercial condo or office building jisme aapke paas 30-40-50% equity hai, I really feel that clients like you should take cash out on your house, pay off your credit card, pay off your car, and just have one mortgage payment, and isse kabhi kabhi aapka ghar ka cash flow 2,000-2,500 monthly cash flow increase ho sakta hai, and I have seen that happening a lot. So cash out is a great option, and yes, you can do cash out on investment property, you can do cash out on your primary residence, you can do cash out on commercial land, commercial condominiums, and investment property jo aapke homes hai us pe to cash out aap no doc ke sath bhi kar sakte ho, jahan if the property is rented out, as long as it's rented out, if the rent covers 80% of your payment, you can borrow up to 65 to 70, 75% of the value of the house.
0: Perfect.
1: So there are a lot of different programs out there.
0: Perfect. So Husseinji, what is the best way to get in touch with you?
1: They can always, always call me at any mortgage-related question, whether commercial, residential, self-employed borrowers. You can call me. We have some great programs for you. You can call me at 972-245-5626, 972-245-5626, or you can email me at info@dreamhomemortgage.com. That's info@dreamhomemortgage.com. or 972-245-5626.
0: Thank you so much, Husseinji, for connecting with us this afternoon. We will talk to you next time.
1: Definitely. Thank you, ma'am.
0: You have a good one.

एंड विद दैट इट इज टाइम नाउ टू गिव यू द वेदर अपडेट. कहाँ स्टैंड कर रहा है जी वेदर? वेंसडे जुलाई 8th 4:46 PM इन द स्टूडियो और सिटी ऑफ मिकिनी में इस वक्त है जी 196 डिग्रीज. हाउएवर इट फील्स लाइक 104. तो थ्री डिजिट फीलिंग है बाहर. 30% चांस ऑफ रेन्स भी हैं. दिन रहा सनी विद यू नो हाइज इन अप 90s, जबकि शाम रहेगी मोस्टली क्लियर विद लोज अराउंड 80 डिग्रीज. और इसी के साथ आज का पोलन इज 5 विच इज मीडियम. ग्रास इज व्हाट इज बॉदरिंग वेयर पोलन इज कंसर्न्ड. और यूवी इंडेक्स आज का है 11, एक्सट्रीमली हाई. इफ यू आर प्लानिंग टू गो आउटसाइड मे बी फॉर एन इवनिंग वॉक और यू नो यू हैव सम आउटडोर एक्टिविटीज प्लान फॉर योर सेल्फ, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड प्लीज, एज वेल एज कीप योर सनस्क्रीन हैंडी या जो भी, जिस तरह से भी अपने आप को धूप से बचा लीजिए. सनराइज आज का हुआ 6:24, 6:24 AM इन द मॉर्निंग, जबकि आज का सनसेट होगा 8:38 PM. That was the weather forecast, which was brought to you by Malabar Gold and Diamonds.

और इसी के साथ इट इज टाइम टू गिव यू द गोल्ड प्राइस अपडेट. और जी आज वेंसडे जुलाई द 8th को अकॉर्डिंग टू गोल्ड प्राइस डॉट ऑर्ग एक आउंस सोने की कीमत है $4,075.41, जबकि एक ग्राम सोने की कीमत $131.03 पे स्टैंड कर रही है. कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में $2.28 की कमी हुई, जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $70.98 की कमी देखने में मिली. एंड इसी के साथ मैं आपको बता दूं जी, फाइनेंस में तो यही था मेरे पास आपके लिए राइट हेयर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. लेकिन अगर आपने अभी तक विशाल शेखर के इवेंट का टिकट नहीं खरीदा तो बहुत कुछ मिस करने वाले हैं आप, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वन अमेजिंग कॉन्सर्ट. बहुत कम इस तरह के कॉन्सर्ट्स आपके लिए आते हैं टाउन में. गो टू कैश पटेल प्रोडक्शंस डॉट कॉम, KASH कैश पटेल प्रोडक्शंस डॉट कॉम पे लॉग ऑन कीजिए, टिकट खरीदिए अपना, अपनी पसंद की सीट, अपनी पसंद का टिकट. और साथ ही साथ व्हेन यू आर चेकिंग आउट डू नॉट फॉरगेट टू यूज द प्रोमो कोड फन एशिया FUNASIA. 30% ऑफ मिलेगा आपको क्योंकि आप हैं हमारे बहुत प्यारे लिसनर्स. कब हो रहा है जी ये कॉन्सर्ट? संडे जुलाई द 12th, यानी कि इस संडे को आपके लिए आ रहे हैं विशाल शेखर लाइव इन कर्टिस कलवल सेंटर. गार्लिन में लोकेटेड है. दिस इज द सुपर हिट टूर दैट दे आर ब्रिंगिंग टू डालस. द डायनामिक डुओ, क्या क्या गाने उन्होंने हमें नहीं दिए. कल तो मैंने पूरा एक शो अपना बॉलीवुड स्पॉटलाइट में हमने लाइट ही उनके ऊपर डाल दी थी और बहुत कुछ उनके बारे में मैंने आपको बताया भी और बहुत सारे गाने भी आपको दिए. ग्लिम्स दिया मैंने आपको कि क्या होगा जब आप इस कॉन्सर्ट में आएंगे. सो डोंट मिस इट. cashpatelproductions.com एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज द प्रोमो कोड फाइनेंशिया फॉर योर 30% डिस्काउंट.

0: And with that, it is time to wrap up. But before that, let me give you the traffic update. क्योंकि आप drive time में हैं, निकल रहे हैं, अगर कहीं पहुंचना है आपको, please be vigilant. There is an incident, actually, दो collisions मुझे नजर आ रहे हैं. One is at 35 East towards Royal Lane, northbound, जिसकी वजह से 5 out of 7 lanes are blocked. So be very careful अगर आप यहाँ पहुंच रहे हैं. Although this incident was reported like about 2 hours ago, so I'm hoping that यहाँ पे बहुत सारी clearing अब तक हो चुकी होगी. But this was the severity of this incident was quite high. एक और collision हमें नजर आ रहा है 67 US 67 पे towards Red Bird Lane northbound, जिसकी वजह से once again 5 out of 7 lanes are blocked. The incident was reported about 40 minutes ago. So यहाँ पे बहुत सारा backup अभी भी मौजूद है. If you are heading at this spot, please be very careful, be very vigilant. There is another construction that we can see at 35 East towards Market Center Boulevard southbound, jiski wajah se 2 lanes are blocked, causing a lot of backup at this spot as well. But that's pretty much all that I have for you where your traffic is concerned, right here on the roads of Dallas on your afternoon drive time with Sunehri Kiran. Main le rahi hun aapse vida. Kal hai Thursday, waise first Thursday of the month ko leke aati hun Food Junction. Wo humne pichle hafte kiya tha, Singapore ki sair ki thi humne. Abhi ek episode 2 aane wala hai Singapore ka, lekin kal the rest of the Thursdays ऑफ द मंथ मैं लेके आती हूँ आपके लिए आप ही की फरमाइश पे वो 90s का बॉलीवुड. वी आर गोना प्ले सम ब्यूटीफुल म्यूजिक ऑफ द 90s. आपकी रिकमेंडेशंस भी लेंगे, आपके लिए बहुत सारे गिव अवेज भी होंगे और बहुत सारी बातें. कॉन्वर्सेशन कॉर्नर, सो मच दैट इज लाइंड अप फॉर यू ऑलवेज एवरी डे 2:30 PM टिल 5 PM ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. अपना ख्याल रखिए. आई विल सी यू टुमारो. हैव अ लवली रेस्ट ऑफ योर इवनिंग.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender and MLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
8: It's Lawson.
7: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
8: It's Lawson.
9: Daddy, what is the law?
10: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
11: You're earning well, but are you paying more taxes than you need to? If you are a business owner earning more than $200,000 annually, then this seminar is for you. Join AG FinTax for a free tax planning seminar and discover legal strategies that may help reduce your tax burden through smart planning. On July 10th, 6 p.m. onwards at Fun Pizza Kitchen, Frisco. And there's more. Attendees who register for the seminar will receive special gifts. Seats are limited, so reserve your spot today. AG FinTax. Plan smart, save more.
12: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
13: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
12: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
13: Papri chaat se malpua rabri tak, har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge. Har bai super hit.
14: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है,
8: तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
9: चीनी हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
15: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका. लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है.
9: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
15: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
9: और एंटरटेनमेंट,
15: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में.
9: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
15: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे. मिरेकल्स हैपन इन मिराज.
16: और सुनाओ, हाउस हंटिंग कैसी चल रही है?
17: क्या बताऊं, इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
16: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. ही इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर हु प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सर्विस प्लस कैशबैक एट क्लोजिंग. अजय रिव्यूज ईच हाउस थरली एंड शेयर्स ऑल द प्रोस एंड कॉन्स एंड नेगोशिएट्स द बेस्ट प्राइस एंड बिल्डर इंसेंटिव्स. जस्ट विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
18: 2026 में आप की राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
19: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
20: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
21: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
20: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
8: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
22: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday,
8: all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.

A very warm welcome to the listeners of Fun Asia Radio. Very good evening. Namaskaram. Assalamu alaikum. Sat Sri Akal. Kaim Cho DFW. It's a wonderful, wonderful Wednesday evening. July ki ho chuki ji 8 tarikh. And I'm going to be with you till 7 o'clock. Har Monday to Thursday ki tarah yehi ritual hai ji. But of course, something new like the songs that we play. Kuch baatein khas. Aaj aapki sununga, kuch apni sunaunga. And thanking the Almighty for yet another day, yet another morning. जब मैं उठा जी तो हर सुबह की तरह आज मैंने फिर से उस परवरदिगार को बोला धन्यवाद फॉर येट अनदर डे. आई थिंक ग्रेटिट्यूड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ और वी टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड ना. हम कहते हैं हो जाएगा, कर लेंगे, सब ठीक है. हाँ जी, सब ठीक तो है, बट टाइम फॉर एवरीबॉडी इज नॉट समथिंग वी कैन कैलकुलेट और कंट्रोल. Football season has been crazy. I mean, the soccer season has been crazy. FIFA World Cup has been crazy this time. And what a crazy match we saw yesterday in the form of Argentina and Egypt. After being, matlab aapko pata hai ye story, 3-2 was the final score. And tomorrow we see France and Morocco taking against one another. And then Friday we have the game between Spain and Belgium. Interesting. I am looking forward to it. You know, एक अलग ही जोश सा आता है ना, जैसे गोल बजता है, गोल की आवाज़ सुनते ही हमारे दिल के जो ढोल हैं वो बजने लग पड़ते हैं. Nonetheless, the studio lines are open for you, like always. Birthdays, anniversaries, या just कोई प्यार की बात मेरे साथ करनी है, कोई गुस्सा आपको नाराज कर गया, आपको किसी और पे गुस्सा है, भड़ास निकालना चाहते हो, तब भी कर सकते हो यार. 972-235-5555 is the number to the studio. Let's take you to the next track lined up just for you all lovely people.

This part of the show is brought to you by our Drive Time sponsor, jinka naam hai attorney Omar Khwaja. We tell him about him because you never know when this calamity comes upon you, and that is an accident. वैसे तो दुआ हमारी ये है कि कभी भी accident आपके नजदीक भी ना आए. You don't get into a car wreck or involved in a slip and fall, but if you do, then एक नाम आपको याद रखना है, जिनका नाम है attorney Omar Khwaja. The website is attorneyomar.com, and he is the person that you need to know when this ever happens. Like I said, we hope that never happens, but अगर कभी खुदा ना खास्ता ये काम हो जाए तो आपको सिर्फ एक नाम पे विश्वास रखना है, विच इज अटर्नी ओमर. दे विल मेक श्योर दे फाइट योर केस, गेट यू द राइट कॉम्पनसेशन, एंड दैट टू विदाउट यू स्पेंडिंग अ डाइम फ्रॉम योर पॉकेट. दैट इज ट्रू. दे मेक श्योर कि अगर आप नहीं जीते तो कोई फीस भी वो चार्ज नहीं करेंगे, बट मजोरिटी ऑफ द टाइम यू डू विन, एंड दैट इज विद द राइट.

0: without you spending a dime from your pocket. That is true. They make sure कि अगर आप नहीं जीते तो कोई फीस भी वो चार्ज नहीं करेंगे. But majority of the time, you do win, and that is with the right man by your side. The right man is Attorney Omar. AttorneyOmar.com is that website. एक बात बताएं आपको, दुनिया में बहुत सारे जूस हैं जो आप पी सकते हो, पर एक कंजूस है जिसको आप नहीं पी सकते. वैसे ही टाइम थोड़ा था ब्रेक में, मैं कहा चलो बांट दे.
1: असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो.

0: taken from the movie that came out just recently, Baby Do Die Do. इनका नाम है करमरकर, in the film last name, तो करमरकर से हो गया Baby Do Die Do, और बेबी इनका नाम है तो करमरकर यानी Do Die Do. एक जनहित में सूचना जारी, अगर बीबी बोले दोबारा बोलो तो बोलना नहीं, ध्यान रखना.
1: Hello Texas परिवार, where do you go when bank says no? Are you self-employed? And are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Co at 214-845-4189. Kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. And this 926641.
2: Main shaadi karungi to Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करो.
3: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
5: इतना सब और प्राइस?
4: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
6: मैं हीरो.
7: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
8: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
7: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
8: वेट, व्हाट?
4: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
9: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
4: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-579.

0: That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
1: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
2: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
0: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी।
3: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था। ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं। आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक। फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले। हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
0: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा। आपका हक, उनकी जिम्मेदारी।
4: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
5: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
6: Mention FunAsia and get 50% off on tryout session.
7: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है।
8: प्लान या होप?
7: मतलब?
8: मतलब है प्लान मतलब स्ट्रेटजी, होप मतलब देखते हैं क्या होता है।
7: ओके, तो मेरा वाला होप है।
8: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक से बात करते हैं।
7: क्यों?
8: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं, स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है।
0: वेल्थ टैक्टिक, रिटायरमेंट प्लानिंग विद क्लैरिटी एंड स्ट्रेटजी। फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 469-693-2077 और विजिट देम एट wealthtactic.com।
9: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
10: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
9: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
10: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
0: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटिन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
11: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
12: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
13: Shakti, Sanskriti aur Samarpan ki ek yaadgar sham aapka intezar kar rahi hai. Is Saturday 11 July sham 7 se 9 baje apne poore parivar ke saath aaiye Krishna Heritage Center Shankhasthapna Mahotsav mein. Ek bhavya 11 acre campus ki shuruaat ka जश्न मनाइए, जहां बनेगा कृष्ण टेंपल, गौशाला, फ्री स्कूल, इवेंट्स हॉल और रेस्टोरेंट। शाम को और भी खास बनाएंगे, गो पूजा, नरसिम्हा यज्ञ चैंटिंग, किड्स मेला, भजन क्लबिंग और सबके लिए फ्री डिनर फीस्ट। माइनस पार्क ऑपोजिट कृष्ण हेरिटेज सेंटर, 7082 कंट्री रोड।
14: हाय, दिस इज जानवी कपूर एंड यू आर लिसनिंग टू द मोस्ट पॉपुलर FM स्टेशन इन द US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

जब नई नई शादी होती है ना लड़की की, तो जब बेचारी काम करना शुरू करती है स्पेशली इंप्रेस करने के लिए लॉस को, तो खूब काम करती है और फिर बेचारी की सांस फूलती है, और अगर वो काम ना करे तो सांस फूलती है। अब चॉइस आपकी, आपको किसको फुलाना है, आपको सांस को फुलाना है कि सांस को फुलाना है। मैं कहता हूँ दोनों को थोड़ा थोड़ा फुला के रखो, बैलेंस ठीक रहता है।

0: इस 5:26 से द स्टूडियो क्लॉक 5:26 हो चुके हैं जनाब, 26 हो चुके हैं एक्चुअली, 25 तो निकल गया था, कोई बात नहीं, 26 को एंजॉय करेंगे। जिंदगी में छोटी छोटी चीजें जो है ना भैया, इसको एंजॉय करना बहुत जरूरी है, चाहे वो चाय के साथ वो पर्टिकुलर बिस्किट, मैरी गोल्ड अच्छा लगता है मैरी गोल्ड ही खाओ, आपको टाइगर अच्छा लगता है टाइगर खाओ, वो क्या होता है अपना ग्लूकॉन डी, नहीं नहीं ग्लूकॉन डी क्या यार, वो लाल पार्ले जी, पार्ले जी, पार्ले जी वो अच्छा लगता है वो खाओ। और जिनको शादी करे हुए काफी साल हो गए हैं, अगर आपको अपनी बीवी की बातें सुन के अच्छा लगता है तो लेट दैट बी द जॉय मैन।
1: होशियार है तो तुम खोटे, इसके दो खारी तलवार है।
0: बरसातें होने वाली हैं जी शुरू, मैं कहता हूँ डैलस में भी हो जाए, इंडिया में तो कहीं ना कहीं देखने को मिला है कि बरसातें वापस आई हैं, बट डैलस को भी बरसात की बहुत ज़रूरत है। जो बरसात के तीन तरह के डिफरेंट मोड होते हैं, एक मोड होता है चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं मज़ा आएगा, दूसरे होते हैं चलो चाय के साथ पकौड़े खाते हैं मज़ा आएगा, तीसरे होते हैं कि एक काम कर आज ना रस्सी जो है वो कमरे में डाल ले कपड़े सूख जाएंगे।

0: I love this new singer jinka naam hai janab Subodh Sharma. I think the notes he's hitting, or especially jab wo last mein note khatam kar rahe hain apna, jo wo break wahan chahiye na awaaz ki, jo dard ki break chahiye, wo kya are mazedar, matlab dil ko cheerti hui ja rahi hai bhai. Is artist ki awaaz, somebody whom we all are going to look out for. What beautiful singing this guy has done. Mithun ne diya hai ji music, and this is Imran Hashmi, Disha Patani coming together for Ve Jurun Awarapan 2, the movie which I am really, really, really excited about. All right, with that, this part of the show is brought to you by Malabar Gold and Diamond. Agar aap chahte hain ji ki apne special moments ko aur acche se enjoy kijiye, then you've got to get to Malabar Gold and Diamond, because let's be honest, yeah. सच्ची बताऊं, दिल से आप भी बताना, कभी आपने बीवी से ये पूछा है सच में कि चला तेरे को आज डायमंड दिलाता हूँ, चला तेरे को आज गोल्ड दिलाता हूँ, उनके चेहरे पे जो जॉय देखा है आपने, एक बार अभी कह के देखो, कोई बैठा है कपल गाड़ी में, हो जा शुरू भाई, कोई बात नहीं, बाद में मना कर दो, कह के तो देख ले, जब आप कहोगे ना यार, बाय गॉड, खुशी की लहर जो है ना वो बॉडी में उठ पड़ती है. And hona bhi chahiye. Dekho, gold is an investment that you're going to be counting on for the rest of your life. So, might as well get some diamonds with it and enjoy life, yaar. Biwi ko do wo cheez jo wo aapse expect karti hai. And when you've got her from, you know, kehte hai na ki ek hum apna band baja barat leke unke ghar pahunche the ki aao hum tumhare ko khush rakhenge, to rakho khush, yaar. Agar thode diamond wagaira mangti hai to dilao. And no other better place than gold, Malabar Gold and Diamond. Elegant, timeless, crafted to shine from beautiful rings, dazzling necklaces and contemporary diamond style. Find the perfect piece for your engagement, anniversary, celebrations, or simply treating yourself. और एक बात आपको बता दूं, बीवी खुश तो लाइफ खुश भाई, सिंपल सा फंडा है. लेडीज इन द कार, एक बारी फिर से इतनी तपती धूप पड़ रही है, पता है आपको 100 डिग्री टेम्परेचर था आज, एंड अभी भी वो एपेक्स कमर्शियल याद है आपको, एपेक्स से रंगी द्वार, अभी भी इतनी ही सुंदर, उतनी ही खूबसूरत, उसी तरह से लेडीज आप अभी भी क्या खूबसूरत लग रही हैं, चाहे सुबह के आपने काम पे धक्के खाए, आपने बॉस की बात सुनी, आपके बच्चों की री री री आपने सुनी, उसके बाद कोई आपकी साथ वाली लेडी जो ताने मार रही थी, बदतमीज लड़की, खैर उसको छोड़ो, आप अपने आप को शीशे में एक बार फिर से देखो और देखो कि क्या एपिटोम ऑफ ब्यूटी हो आप लोग, यार बाय गॉड, मार्विन की तरफ से दिल से आप लोगों को थैंक यू, सैल्यूट टू ऑल द लेडीज. एक गाना लगा रहा हूँ, उसके साथ साथ पूछ रहा हूँ एक सवाल, जो देगा सही जवाब उसको मिलेगा $20 ऑफ देयर $50 बिल एट मिराज हुक्का लाउंज, भैया मिकिनी में लोकेटेड है, क्रेग रैंच, क्रेग मिकिनी पार्कवे, एंड दैट इज फॉर ऑल यू गाइज हु लव गुड फूड और गुड हुक्का, या सिर्फ गुड फूड या सिर्फ गुड हुक्का, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, दे डू हैव अ फुल सर्विस बार, और आपको $50 के बिल पे $20 ऑफ मिलेगा. आई विल चूज टू विनर्स फॉर दिस सेगमेंट, दो विनर को मैं चूज करूंगा, एंड आपको मुझे बताना है सही सही जवाब. आई एम गोना टेल यू अबाउट दिस आर्टिस्ट, आर्टिस्ट तो क्या बोलूंगा मैं उनको, ये एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने इंडिया का नाम बहुत रोशन किया, आज के दिन होता है इनका जन्मदिन, एंड ही इज कॉल्ड एल्डर ब्रदर बाई मैनी इन दी इंडस्ट्री. क्रिकेटर हैं और क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, पहले एक्स क्रिकेटर रह चुके हैं, महाराजा ऑफ इंडियन क्रिकेट बोला जाता था, रिगार्डेड एज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल क्रिकेट कैप्टन्स, ही लेड इंडियन नेशनल टीम टू विन द 2002 ICC चैंपियंस ट्रॉफी एंड रीच द फाइनल ऑफ द 2003 क्रिकेट वर्ल्ड कप, द 2000 ICC चैंपियंस ट्रॉफी एंड 2004 एशिया कप, स्कोर्ड 11,363 रन इन ओडीआई करियर, विच स्टैंड्स एट 9th पोजिशन इन द वर्ल्ड फॉर मोस्ट रन स्कोर्ड इन ओडीआई मैचेस, ही वॉज द थर्ड बैट्समैन टू क्रॉस द 10,000 रन इन वन डे क्रिकेट एंड आफ्टर सचिन एंड इंजमाम, दैट इज द ओनली गाय टू डू सो, ही होल्ड द रिकॉर्ड फॉर हाइएस्ट स्कोर इन innings 183 by an Indian batsman in the ODI Cricket World Cup as well. Itna kuch bata diya hai, aapne mujhe inka naam batana hai. The person who gives me the right answer, two of you get yourself $20 off this deal at the McKinney Mirage Hookah Lounge. Now make sure ke when you're calling, you have not won this before and you are able to pick it up or enjoy this actually. Go and enjoy in McKinney. Okay, so this one is for people that can go to Craig Ranch Parkway in McKinney and enjoy this deal from Mirage Hookah Lounge. Here we go, asking you the name of that gentleman I just spoke about. Good evening to you, Fanesia. Who's this? Hello, hello, hello. Okay, you are here. Good evening. Sorry, my bad. Can you hear me now?
1: Yes.
0: What is your name, my brother?
1: My name is Abhishek.
0: Are you sure? You took a long time.
1: Yes.
0: Abhishek, bhai, kaise ho? Acha. अभिषेक, पहली बात, मिकिनी जा सकते हो?
1: हाँ जी.
0: हुक्का शुक्का पसंद करते हो?
1: मिलेगा तो पक्का.
0: मिलेगा वाली बात नहीं, देखो $50 खर्च हो गए, 20 ऑफ मिलेंगे. अब ये ठीक है तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए.
1: नहीं नहीं जवाब मिलेगा आपको
0: जवाब मुझे मिलेगा, उसने दिया था एक बारी, आज तक याद है। अच्छा,
1: किसने?
0: हर चीज आपको बता दूंगा तो उसको क्या बताऊंगा। अच्छा अभिषेक भाई, नाम बताइए चलो क्रिकेटर का जिसका मैं बात कर रहा था। सर
1: सौरभ गांगुली।
0: सौरभ गांगुली कहते हैं अभिषेक जी, दूसरे नंबर पे कौन है मेरे साथ, करते हैं इनसे बात।
1: अच्छा
0: रेडियो का वॉल्यूम आपको कम करना पड़ेगा, अपना बढ़ाना पड़ेगा, तब हमारी बात होगी। कौन महाशेर या महाशेरनी बोल रही है? गुड इवनिंग
2: हेलो, दिस इज कृषानु।
0: कृषानु, कैसे हो?
2: बस बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं?
0: कृषानु का मतलब क्या होता है? एक बड़ी शायद पहले बताया आपने नहीं मुझे।
2: हाँ कृषानु है, KRISHANU। कृषानु का मतलब है फायर, आग।
0: अरे भाई वैसे ही बाहर इतनी लगी हुई है, तभी तो आप भी बाहर घूम रहे हो आज। कृषानु घर के अंदर जाओ यार, बहुत गर्मी कर रखी है। अच्छा अब बताओ क्रिकेटर का नाम जिसकी मैं बात कर रहा था।
2: क्रिकेटर का नाम तो सौरभ गांगुली है और मेरा घर उनके बिल्कुल अगला गली में है, कलकत्ता में।
0: सौरभ गांगुली? अच्छा जी, तो भाई मेरी तरफ से एक एरोप्लेन बना के फेंक देना कि दादा लव यू।
2: अभी अभी तो वो लंदन में रहते हैं, कभी
0: ओहो
2: मिलेगा तो बताएंगे।
0: चलो लंदन में तो मैं अमेरिका से इंडिया जाता हूँ, ऊपर से जहाज फेंक दूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा कृषानु कांग्रेचुलेशंस, यू वन योरसेल्फ दिस गिफ्ट व्हिच इज कमिंग फ्रॉम मिराज हुका लाउंज, $20 ऑफ योर $50 बिल। आई एम गोना टेक यू टू वन मोर ट्रैक। इस गाने के बाद ले रहे हैं छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर क्योंकि मोर मस्ती कमिंग अप।

0: दादा दादा दादा यानी कि सौरव गांगुली जी हाँ दैट्स हिज नेम एंड चंदीदास इज हिज मिडिल नेम यहाँ मार्विन दास वहाँ चंदीदास गांगुली सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे ही इज बॉर्न ऑन 8th of July 1972 मेरे से 12 साल बड़े एंड somebody who's got cricket did a lot of stuff for Indian cricket especially जब इन्होंने अपनी शर्ट उतारी थी ना भाई लॉर्ड्स में बड़े भाई मजा तो उसका आया था ऐसे गोल घुमाई एंड उस पर एक बायोपिक भी आ रही है आई एम एक्साइटेड फॉर दैट बट लेट्स फर्स्ट विश मिस्टर सौरव गांगुली अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे फ्रॉम द टीम हियर एट फनएशिया एंड फ्रॉम बंदा बिंदास लेट्स गो टू अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक मैं यूं गया बस वापस
1: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में सोना मसूरी राइस नानक पनीर पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सीरीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स HEB हियर एवरीथिंग इज बेटर
2: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस पोकर हो या ब्लैक जैक एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए लकी बन जाइए चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट एंटरटेनमेंट लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
3: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
4: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
5: Calculating route, rerouting.
4: अरे ये क्या? मुझे मेरे वाले grocery store में जाना है.
5: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
4: क्यों?
5: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के smart लोग जानते हैं. Daily groceries हो या Pooja essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
4: अच्छा. तो सीधा वही ले चलो
6: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
5: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
7: आर यू टायर्ड ऑफ द सेम आर्ग्यूमेंट्स रिएक्शंस एंड इमोशनल स्ट्रगल्स मे बी इट्स टाइम टू चेंज द पैटर्न आरती वेदुला अ सर्टिफाइड एंड अक्रेडिटेड कोच हैज हेल्प्ड कपल्स पेरेंट्स एंड इंडिविजुअल्स ब्रेक फ्री यूजिंग NLP EFT हिप्नोसिस टाइम टेक्निक्स एंड सोमैटिक माइंड बॉडी कनेक्शन कॉल 269-281-1099 और विजिट thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
8: Ye tera ghar, ye mera ghar.
9: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
10: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
9: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
11: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
12: समझ नहीं आ रही टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ
13: इट्स लॉसन
12: किससे बात करूँ सारी जानकारी कौन देगा
13: इट्स लॉसन
12: डैडी व्हाट इज द लॉ
14: इट्स लॉसन ट्रेवल्स फॉर ऑल योर ट्रेवल नीड्स गिव देम अ कॉल टुडे 214-631-2458 द ट्रेवल एक्सपर्ट्स लॉसन ट्रेवल
15: यार बॉस ने फिर से डांट दिया ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस
16: अरे रिलैक्स यू नीड अ कूल थेरेपी
15: थेरेपी वो तो बहुत महंगी है
16: नहीं कूल मतलब कूल चा थेरेपी
15: ये क्या होता
16: सिंपल चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन
6: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस
7: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन Available.
17: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा
18: बैठ जाऊं पक्का कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था
17: वो
4: थोड़ा ओवरहीटिंग था।
13: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
17: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
18: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
19: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
20: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
19: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
20: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
19: सच में सब संभालेंगे?
20: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
7: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.
21: Are you speaker sing?
22: Girl, you been on my mind all night. Let me wrap in my arms, make everything alright.
21: Shoggy!
22: Girl, you me one of my life. Let me wrap in my arms, make everything alright.

The King Mika Singh with that track alongside Shaggy. You know Shaggy? Son of Paul, Samay Kausalyan, Shaggy. तो शैगी बड़े कलाकार हैं जी तगड़े और बहुत सारा इंटरनेशनल म्यूजिक शैगी ने बनाया एंड आई लव सम ऑफ हिज ट्रैक्स लाइक थैंक यू फादर फॉर येट अनदर डे एज अ गो ऑन माय नीज एंड प्रे. सो उनके साथ ये कलेबोरेशन थी जी, वाज मीका सिंह एंड दिस वाज कॉल्ड बेली रिंग. यू आर लिसनिंग टू द इवनिंग ड्राइव टाइम शो. वेलकम बैक. इट्स 5:48 इन द स्टूडियो क्लॉक. आई एम गोना बी हियर टिल 7 o'clock लाइक एवरी अदर इवनिंग मंडे टू थर्सडे. यही सफर है जी हमारा साथ आपके. और ये वैसा वाला नहीं है जो आपको गाड़ी में उनके साथ करना पड़ता है, ये वो है जो आपको मेरे साथ करना पड़ता है. प्यार भरा सफर यार. दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय तंदूरी फ्लेम. जबरदस्त सा पंजाबी खाना खाना है तो वन प्लेस दैट यू नीड टू रिमेंबर इन गार्लैंड. स्पेशली जब आप गार्लैंड की साइड जाएं तो आपको वहां पे मिलेगा जी राइट एट द इंटरसेक्शन ऑफ शालो एंड जॉर्ज बुश विल बी तंदूरी फ्लेम कुकिंग अप सम लवली नॉर्थ इंडियन फूड. और उसके साथ साथ जो खाना बनाते हैं जी आपके लिए दैट इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट इन फ्लेवर बिकॉज होम स्टाइल टच ज्यादा है उस खाने का. गो चेक इट आउट. मेरी रिकमेंडेशन पे गोभी मंचूरियन वहां का नहीं ट्राई किया तो कुछ भी नहीं किया है दोस्त जिंदगी में. आई एम गोना प्ले अ ट्रैक एंड व्हाइल आई प्ले दिस आई वांट यू टू थिंक अबाउट द एक्ट्रेस दैट इज इन दिस मूवी. ये एक फिल्म आई थी सलमान खान साहब के साथ एंड दैट वाज इन द ईयर 1991. आपको बताना है कि इस लेडी का नाम क्या है हुज फीचर्ड इन दिस ट्रैक अलोंग विद आवर वेरी ओन सलू भैया.

क्या कि ब्यूटीफुल म्यूजिक, ब्यूटीफुल सॉन्ग. मैं बात कर रहा था कुछ कॉलर से कि कितना इनोसेंस थी ना दोनों की आवाज में. एंड दिस सॉन्ग इज एक्चुअली संग बाय के एस चित्रा जी विद बाला सुब्रमण्यन साहब. एंड आई थिंक बाला सुब्रमण्यन साहब की आवाज वैसे ही इतनी इतनी ब्यूटीफुल थी कि उसकी जो सिंप्लिसिटी थी वो स्टैंड आउट करती थी मेरे लिए हमेशा. एंड द वे के एस चित्रा जी सैंग दिस सॉन्ग, वो भी इतनी इनोसेंट सी आवाज लेके. एंड आई थिंक सर्टन पीपल वर वेरी इनोसेंट यार. आजकल के तो हमारे चालू जमाने में बहुत सारे चालू लोग हो गए हैं, बट देर आर सीरियसली अ लॉट ऑफ यू नो दे. आई थिंक थिंग्स वर पीपल वर सिंपलर बैक इन द टाइम. बट यस, वी वर टॉकिंग अबाउट रेवती, जिसके लिए बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल किया. द एक्ट्रेस नेम इज रेवती, एब्सोल्युटली उनका नाम रेवती है. और ये बहुत सारी फिल्मों में आई, स्पेशली साउथ एंड तमिल मलयालम सिनेमा में बहुत नाम है इनका. भरतनाट्यम डांसर है. 8th of July यानी कि आज ही के दिन शी वॉज बॉर्न इन 1966. बट यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उनका बर्थ नेम आशा केलुनी है. आशा केलुनी, एंड शी वॉज बॉर्न इन कोची केरला. आज 60th बर्थडे अपना सेलिब्रेट कर रही हैं. बहुत सारी फिल्में जैसे मैंने कहा, और बहुत सारे एक्लेड्स इंक्लूडिंग 3 नेशनल फिल्म अवार्ड, 7 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ, 2 तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड, अ केरला स्टेट फिल्म अवार्ड. एंड 1993 में उनको दिया गया द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, विच इज कॉल्ड द कलाइमा मानी. Today we are celebrating her, wishing her a very happy birthday from the team here at Funasia and from Banda Bandas. All right, with that, last week मैंने कुछ शेयर किया था आप लोगों के साथ, और आज फिर करता हूँ कि I am part of a fundraising that we are doing for the city of Denton. और इसमें fundraising में हम क्या कर रहे हैं कि हम जो homeless लोग हैं Denton के, उनको हम एक मौका दे रहे हैं कि दे गेट टू रीलिव अगैन, स्पेशली द वंस दैट आर वर्किंग विद वहाँ की जितने भी कम्युनिटी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जैसे कि होमलेस शेल्टर्स हैं, अदर वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज वेयर दीज होमलेस पीपल कम एंड वॉलंटियर देयर टाइम. हम उन लोगों को एक सेकेंड चांस देना चाहते हैं एट लिविंग. दिस इज बींग डन बाय मकैडम्स हेवन इन डेंटन अफोर्डेबल हाउसिंग कॉरपोरेशन. दिस इज द न्यूएस्ट परमानेंट सपोर्टिव हाउसिंग विच इज कॉल्ड PSH डेवलपमेंट, डिजाइन टू प्रोवाइड 84 फुली फर्निश्ड वन बेडरूम अपार्टमेंट्स फॉर इंडिविजुअल्स. लास्ट वीक जब मैंने इसके बारे में बात की थी, विद द हेल्प ऑफ यू एंड मी वी वर एबल टू डू $700. मेरा गोल $3,000 का है. इफ यू वुड लाइक टू डोनेट $50 और $100 प्लेज अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं, तो आप मुझे स्टूडियो की लाइन पे कॉल कर सकते हैं. वंस अगेन, दिस इज इन पार्टनरशिप विद डेंटन काउंटी. मैकएडम्स विल प्रोवाइड ऑन साइट सपोर्टिव सर्विसेज टेलर टू रेजिडेंट्स. और ये होमलेस लोगों के लिए हम घर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज 84 कंप्लीट हाउसेज. 3,000 इज माई पार्ट विच इज गिवन टू मी बाय द सिटी ऑफ डेंटन एंड मैकएडम्स. इफ यू वुड लाइक टू हेल्प मी रेज फंड्स फॉर पीपल हु आर होमलेस, गेट देम ऑफ द स्ट्रीट, गिव देम अनदर अपॉर्चुनिटी इन लाइफ. एक मौका जिंदगी में, कहते हैं ना, हर इंसान को मिलना चाहिए. एंड इफ वी कैन डू दैट विद द सिटी ऑफ डेंटन, चाहे वो किसी भी रेस से हो, किसी भी कंट्री से हो, आवर गोल इज टू मेक समबडीज लाइफ वंस अगेन. बहुत सारे टर्मोइल्स होते हैं. यू नो, लास्ट संडे, एक्चुअली दिस पास्ट संडे, आई वाज एट अ होमलेस शेल्टर इन डेंटन. और मैं वहां देख के हैरान था कि कई लोग आर सो ओल्ड, मे बी इन देयर 70s, मे बी इन देयर 80s, मे बी लेट 60s, एंड दे हैव गॉट अल्जाइमर्स, दे हैव गॉट मेमोरी लॉस प्रॉब्लम, और उनके बच्चे उनके साथ नहीं है. दे डोंट इवन नो वेयर टू गो. विद सिचुएशंस लाइक दिस योर हार्ट रियली ब्रेक्स. एंड इफ आई रियली एडमायर्ड, पहले मुझे लगता ही था कि हाँ यार, अमेरिका में बहुत अच्छा सिस्टम है फॉर दी होमलेस. बट टू सी वॉट दे डू, मतलब क्लोथिंग से लेके टूथपेस्ट, ब्रशेज, शैम्पूज, कंडीशनर्स, यू नेम इट, दे प्रोवाइडेड. एंड दैट्स ऑल डन बिकॉज ऑफ यू ऑल. तो इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट मी इन दिस कॉज, 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. एवरीथिंग विल बी सेंड टू यू थ्रू अ टेक्स्ट मैसेज. यू कैन वेरीफाई द डिटेल्स एंड ऑल्सो क्रॉस चेक विद द सिटी ऑफ डेंटन, विद दैट विद द काउंटी ऑफ डेंटन. विद दैट, इट इज टाइम फॉर अनदर ट्रैक. Let's take you there. And once again, wishing Revathi a very, very happy birthday from the team here at Funasia and from Banda Bindas Marvin Das. Let's go to this next track that is lined up for you. Request aayi thi mere paas. I have seen the movie. If you haven't seen the movie, go check it out. I think Alpha is doing things right. This is Alia Bhatt and Sharwari. And the acting, the action, the storyline, I loved it. Once again, if you'd like to donate to homeless people in Denton, get another opportunity at living by giving them houses, which the Denton County is raising funds for, the studio line is 972-235-5555.

एब्सोल्युटली बिंदास बोलो जी, नाम अरविंदास बोलो. वेलकम बैक टू योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो. इट्स 6:07 इन द स्टूडियो क्लॉक, 6:07. आई एम गोना बी विद यू टिल 7 o'clock लाइक एवरी अदर इवनिंग. बर्थडेज एनिवर्सरीज अगर आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं या वैसी खुश हैं जिंदगी को लेकर मेरी तरह, देन ऑल्सो यू कैन बी अ पार्ट ऑफ माई शो. गिव मी अ कॉल एट द स्टूडियो लाइन 972-235-5555. दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट यू बाई AG FinTechs. दे मेक श्योर दैट योर टैक्सेज आर डन राइट. दे मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड योर कैश फ्लो. दे मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड योर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एंड रेवेन्यू. They make sure that you understand tax planning. They make sure that you look after your retirement planning. And they are the people to go to. AGFinTax.com is that website. That's AGFinTax.com. For the ones that are tuning in right now, this is Funasia Radio, The Bindas Show, brought to you by our very own Banda Bindas, Marvin Das. Today marks the birthday of this wonderful artist. Mujhe inki acting aur inka style bachpan se hi pasand hai. Yes, I've been seeing her since I was a little kid. And even now, she recently did a movie, which is a beautiful movie. And I'll talk more about it. But pehle unke do gaane. Why? Because we are celebrating her today.

Yes, you all guessed it 100% right. It is Neetu Kapoor, born as Harneet Kaur. A lot of you might not know ki inka screen name jo Neetu Singh bana, usse pehle Harneet Kaur ke naam se jaani jati thi. Birth name was that. 8th of July 1958 she was born and Hindi filmon mein aana shuru hua 1960s se leke 70s and 80s tak. Uske baad abhi phir recently meri dadi ki shaadi is the name of the movie. I saw that movie. Usme Kapil Sharma saath hai and she's done a fantastic job. Agar inke career ki baat ki jaye to पहले तो इंडक्टेड इन द वॉक ऑफ स्टार्स एंड एंटरटेनमेंट हॉल ऑफ फेम एट बांद्रा बैंड स्टैंड इन मुंबई सिमिलर टू आर एलए सिचुएशन गोइंग ऑन देयर हर डेब्यू फिल्म वाज सूरज 1996 में आई थी एंड देयर आफ्टर प्लेड अ ड्यूअल रोल इन द रोमांटिक कॉमेडी दो कलियां 1968 एंड देन बिगन ट्रांजिशंस टू मच्योर रोल्स विद फिल्म्स लाइक रिक्शावाला 1973 नसीर हुसैन फिल्म जिसका नाम था यादों की बारात विच वॉज अनदर बिग हिट 1973 दीवार 1975 खेल खेल में इन अगैन 75 कभी कभी विच इज डेफिनेटली एन एपिक फिल्म अमर अकबर एंथनी धर्मवीर परवरिश जानी दुश्मन काला पत्थर याराना एंड मेनी मोर फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिला था उनको फॉर द मूवी काला पत्थर ऑफ कोर्स ऋषि कपूर साहब के साथ इनकी शादी हुई एंड टू चिल्ड्रन रणबीर कपूर एंड हर सिस्टर दैट इज रिधिमा कपूर आज हम इनको इनके जन्मदिन पे कर रहे हैं याद एंड ऑफ कोर्स आफ्टर हर यू नो इनिशियल रोल्स एज शी केम बैक टू सिनेमा लव आजकल में बहुत सालों बाद दिखाई दी 2009 में राइट आफ्टर 1983 उसके बाद नज़र ही नहीं आई थी तो 83 से आप लगा लें 2009 सो 93 एंड 2003 20 इयर्स एंड प्लस अनदर 26 इयर्स के बाद वापसी की देन फिल्म आई दो दुनी चार 2010 जी सिने अवार्ड मिला उनको द एक्शन फिल्म बेशरम 2013 जब तक है जान 2012 जुग जुग जियो 2022 एंड जस्ट नाउ रिसेंटली मेरी दादी की शादी विच इज़ अनदर फैंटास्टिक फिल्म नहीं देखी है तो ज़रूर आप जाइए देखिएगा मेरी तरफ से नीतू सिंह नीतू कपूर हरनीत कौर को जन्मदिन की बहुत मुबारक फ्रॉम द टीम हियर एट फन एशिया एंड फ्रॉम बंदा बंदास मारवन दास एक गाना और स्क्वीज़ इन करना चाहता हूँ उन्हीं की फिल्म का एंड आई होप कि ये गाना भी आप फुल एंजॉय करेंगे दिस इज योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो राइट हेयर ऑन 104.9 FM

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओह हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: जीनी हुकम मेरे अका, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
4: मिराज लाउंज चलिए मेरे अका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है।
5: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
4: नो प्रॉब्लम अका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
5: और एंटरटेनमेंट,
4: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में है।
5: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
4: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
2: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338। myfamilyhomeloan.com इज powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
6: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
7: Excuse me. It's called being loyal.
6: It's called being predictable.
7: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
6: And what's so special at Neon Cactus?
7: Went there with my office team last week.

0: Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
1: Not bad.
0: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
1: Okay, this I didn't expect from you.
0: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
2: वीकेंड का प्लान अभी तक नहीं बना? बस 90 मिनट्स नॉर्थ ऑफ डैलस चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट में हर विजिट बन जाता है एक विनिंग एक्सपीरियंस. पोकर हो या ब्लैक जैक, एक्साइटिंग स्लॉट्स हो या फिर 20 अमेजिंग रेस्टोरेंट्स में जबरदस्त डाइनिंग, और अगर ब्रेक चाहिए तो लग्जूरियस स्काई टावर और रिलैक्सिंग स्पा आपका इंतजार कर रहे हैं. तो सिर्फ लकी फील मत कीजिए, लकी बन जाइए. चौकटाउ कैसीनो एंड रिसॉर्ट ड्यूरेंट, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और एक्साइटमेंट सब एक ही डेस्टिनेशन में. Please play responsibly. Must be 21 years or older to game.
3: Zindagi ek safar hai suhana. Yahan kal kya ho, kisne jana?
4: Life ho ya health, kab kya ho jaye, pata nahi. 13 saal tak Texas Primary Care Clinic ne jeeta aapka trust. Aur ab wahi trusted care, urgent care services ke saath, naye Kaiserway location par. Lunoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Adults aur bachchon ke liye primary care, urgent care, x-ray, CT scan, heart testing aur med spa. Sab kuch ek hi roof ke niche. Lunoxy Medical Urgent Care. Open 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
5: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
6: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Umar Khwaja.
7: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
8: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
9: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday,
8: all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.

लेडीज लेडीज लेडीज लेडीज लेडीज, मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर आपसे कोई लेडीज ज्यादा बहस करे ना, कोई आपको तंग करे, तो आपने पता क्या करना है? कुछ नहीं, आपने सिर्फ लेडी को बोलना है कि लेडी तुम्हारे पास गाड़ी होगी, बंगला होगा, घर होगा, बैंक बैलेंस होगा, पर मेरे पास 20 साल पहले पहने हुए वो कपड़े हैं जो मुझे अब भी फिट आते हैं।

0: ठीक है ना, अब आप उनको वो जो मारती रहती ना ताने, कर दो उसको शांत। बोला हट, गाड़ी बंगला तेरा कहीं और रख, मेरे को अपने 20 साल पुराने कपड़े आज भी आते हैं लेडी। बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है, बंदा ये बिंदास है। अगर आप गर्मी से बहुत परेशान हैं तो इसमें मैं क्या करूं भाई, एसी उसी चलाओ। पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है, रस पीने की प्यास है, बंदा ये बिंदास है। अगर आपकी किस्मत का दरवाजा नहीं खुल रहा है तो मेरा कौन सा खुल रहा है यार। वेलकम बैक टू योर इवनिंग ड्राइव टाइम शो, 6:26 इन द स्टूडियो क्लॉक। मैं रहूंगा जी आपके साथ हमेशा की तरह इस शो के एंड तक, जो कि आता है 7 बजे एंड होता है इस शो का। बट एंड डजंट मीन खत्म, एंड मतलब होता है कि आज गया कल फिर आएगा। हाँ जी, मंडे टू थर्सडे 5 to 7 आई गिव यू कंपनी इन योर कार्स, इन योर होम्स, व्हेरेवर यू आर। अब आ चुका है जी फरमाइशी गीतों का दौर, और फरमाइशी गीतों के लिए आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा स्टूडियो की लाइन पे। बट फरमाइश का एक असूल है भाई मेरा, थके हुए गाने बिल्कुल नहीं, गाने नए हों या अच्छे हों, बीट उसकी मज़ेदार हो। लोग घर जा रहे हैं अपने अपने काम से, परेशान वैसी लाइफ में हो रखे हैं, और मैं लगा दूं कहीं दीप जले कहीं दिल, क्या फायदा होगा। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट यू बाय PMJ ज्वेलर्स, दे आर नाउ इन DFW राइट हियर इन फ्रिस्को, एंड इफ यू हैवंट बीन टू देयर स्टोर येट, वेल यू आर मिसिंग आउट। प्राउडली एसोसिएटेड विद महेश बाबू एंड एक और लेडी है जी सितारा गट्टामनेनी, एंड PMJ इज अ नेम ट्रस्टेड फॉर ओवर 60 years विद एक्सेलेंस इन ज्वेलरी एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप। गोल्ड हो, डायमंड हो, ब्राइडल कलेक्शन हो, या हो एंटीक टाइप ज्वेलरी, यूल फाइंड इट ऑल एट देयर स्टोर। सेलिब्रेट योर माइलस्टोन्स विद PMJ ज्वेल्स इन फ्रिस्को ऑन मेन स्ट्रीट, एंड डिस्कवर ज्वेलरी दैट टेल्स योर स्टोरी। फॉर नाउ इट इज अनदर लवली नंबर राइट हियर ऑन फन एशिया, दिस इज द बिंदास शो।
1: क्वीन विक्टोरिया,
2: क्वीन विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? आप तो वैसे ही लगेंगी। मलिका तिल फरिया।

मस्कारा लगाने की उम्र अभी आई नहीं है सितारा गटामनेनी की, क्योंकि सितारा गटामनेनी इज द डॉटर ऑफ बाबू महेश बाबू। क्योंकि मैं साउथ इंडियन से नहीं हूँ तो मुझे माफ कीजिए, मुझे लगा लेडी है, मतलब लड़की का नाम लिखा तो मैंने लेडी बोल दिया। जी अनु जी, थैंक यू सो मच फॉर करेक्टिंग, लेडी नहीं है, लेडी फ्यूचर में बनेगी, अभी गर्ल है। और गर्ल एक इन्फ्लुएंसर है, और कहते हैं कि जो आजकल के बच्चे हैं उनसे थोड़ी सी बेटर सिचुएशन में लगती हैं, देयर इनकल्केटेड वैल्यूज आर मोर इन सितारा। सो आई विश सितारा ऑल द गुड लक, एंड इफ यू वांट टू सपोर्ट सितारा एंड हर पापा इन देयर विजन ऑफ पीएमजे ज्वेलर्स, देन डेफिनेटली गो टू देयर स्टोर, देयर लोकेटेड इन फ्रिस्को, गो एंजॉय सम लवली ज्वेलरी कलेक्शन देयर। टुडे मार्क्स द बर्थडे ऑफ दिस कंट्री सिंगर, हु इज दैट, लेट्स प्ले हिम।

0: Will Smith's son is celebrating his birthday today as well. Jaden Smith, the movie actor that we first loved in The Pursuit of Happiness, agar aapne wo film dekhi hai, jisme there is a struggle of Will Smith, his real life father, becoming a big shot in the trading market, and that movie is fantastic. Agar aapne nahi dekhi hai, that's one movie I'll recommend for fathers and kids to watch together. The Pursuit of Happiness. Actor hai, dancer hai, rapper hai, who won an MTV award for his performance in that same movie, The Pursuit of Happiness, which I just mentioned. Born on today's date, July 8th, 1998. He's 28 years of age, born in Malibu, California. Co-starred with his father, Will Smith, in both the movies, jaise ki maine pehli movie ka naam liya, and the second one, which was the film After Earth. If you haven't seen After Earth, I recommend you watch that movie. Again, a family movie to watch together as a family. Co-starred with Jackie Chan in the 2010 remake of The Karate Kid. Now that's another film that I would recommend. If you've seen the original, you will love this one. And all of these three movies that I mentioned are worth seeing today. We are celebrating him as well, wishing Jaden Smith a very happy birthday from the team here at Funasia. And from Banda Bandas, Marvin Das, there's a series also that he got part to play roles in, The Get Down. And his character there is called Dizzy Kipling. With that, I am heading to a short commercial break. Don't go anywhere. The last segment of my show is still due. Picture abhi baki hai, mere dost.
1: सुनो, शादी के लिए ज्वेलरी भी देखनी है।
2: हाँ, देख लेंगे।
1: तो फिर इंडिया की टिकट कब करवाए?
2: अरे, तुम्हें ज्वेलरी देखनी है या रिश्तेदारों को?
3: One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. वही timeless craftsmanship, वही unmatched elegance और वही stunning bridal collections. Now on Main Street in Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
4: हेलो टेक्सास परिवार, क्या आपको पता है देर इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम अंडर फेनी एंड फ्रेडी फॉर कंफर्मिंग लोन्स दैट हेल्प्स यू टू गेट बेटर रेट्स बाय ऑलमोस्ट हाफ अ पॉइंट टू 1%. सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है. NMLS
5: 926641. आने वाले खाने में डोसा.
6: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर.
3: सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन, मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी. फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस.
6: विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 or Custer Junction.
3: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
7: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
8: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे.
9: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
6: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
8: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
10: You're earning well, but are you paying more taxes than you need to? If you are a business owner earning more than $200,000 annually, then this seminar is for you. Join AG FinTax for a free tax planning seminar and discover legal strategies that may help reduce your tax burden through smart planning. On July 10th, 6 p.m. onwards at Fun Pizza Kitchen, Frisco. And there's more. Attendees who register for the seminar will receive special gifts. Seats are limited, so reserve your spot today. AG FinTax. Plan smart, save more.
11: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
12: पंडित रामनाथ जी जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव.
6: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
13: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी.
14: गिव योर चिल्ड्रन द गिफ्ट ऑफ स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग एंड कल्चरल आइडेंटिटी थ्रू चिन्मया मिशन्स बालविहार प्रोग्राम. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balvihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

The Spice Girls are comprised of four females. Melanie Chisholm, who was, of course, from Britain. And unke saath saath, the second girl in that band was... Batata hoon ji. Gaane likhti Melanie thi. But Spice Girls were made up of four band members. Aur unka naam kya kya tha? One of them, I know, was married to David Beckham. Not was, but he is married to David Beckham. And it was Mel B, which was the Scary Spice. Melanie C, which was the Sporty Spice. Emma Bunton, Baby Spice, and Gary Halliwell, Ginger Spice. And Victoria Beckham, which was the Posh Spice. Today, we are celebrating the launch of their album that happened in the year 1996 on today's date, the 8th of July. Going back to the next track, it is a wonderful track. Ek hamare Taha sahab, I believe Taha sahab, he requested for an older song. And I usually don't have a problem playing older songs, but mera ek segment hota hai older songs ka, that is for two songs whenever we celebrate some older actor's birthday. But jaate jaate maine kaha ki aaj ek gana aisa lagaunga jo has the vibe of a new track, yet gives you the originality of the older days, and I think this is perfect for this time. Aap ye gana suniye. With that, it is me signing off with a promise that if God gives me another day tomorrow, main phir se shaam ko 5 se 7 hoonga aapke saath entertaining you all. You keep me in your prayers and I'll keep you in mine. Ek baat yaad rakhiyega, hum sari umar sirf yahi sochte rehte hain ki yaar log kya sochenge, वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा, वो क्या कहेगा, वॉट विल शी थिंक अबाउट मी, वॉट विल ही थिंक अबाउट मी. बट यू नो व्हेन इट्स ऑल डन, जब आप यहाँ से जाएंगे, विच हैज़ टू हैपन, एक दिन आएगा जिस दिन आप अपना लास्ट मील खाएंगे, एक दिन आएगा जब आप अपनी लास्ट फेवरेट चीज़ खाएंगे, एक दिन आएगा जब आप अपने लव्ड वन के साथ लास्ट टाइम बैठेंगे, लास्ट टाइम बात करेंगे, और धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब आपका नाम भी लास्ट टाइम लिया जाएगा. ये होना है. और ये जो लोग हैं ना, जो क्या कहेंगे, उनमें से कोई नहीं होगा. सो डोंट वरी अबाउट व्हाट पीपल आर गोना से, इट इज़ योर लाइफ, लिव इट द वे यू वांट, हैव रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, मेंटेन दैट, बट एट द एंड ऑफ द डे योर चॉइसेस आर योर चॉइसेस. एंड कहते हैं चॉइसेस आर हैफ चांसेस, सो डोंट गिव अप ऑन यू और द चांसेस दैट लाई अहेड ऑफ यू. रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द पर्सन इन द मिरर एंड दैट इज यू. हेल्थ, खाना पीना, सब कुछ सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप हैं. आफ्टर मी इट्स इपी द हिपी. विद दैट इट्स अ रैप.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
3: Calculating route, rerouting.
2: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
3: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
2: क्यों?
3: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
2: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो.
4: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
3: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
5: हे, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
6: लिया.
5: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
6: नहीं आया.
5: मुझे भी नहीं आया. आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है. इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू. होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्कड हार्ड फॉर. नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास. कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
4: Visit www.sanadainc.com today.
7: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
8: It's Lawson.
7: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
8: It's Lawson.
7: Daddy, what is the law?
9: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
10: 2026 में आप